0: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग एमवीसी रेडियो।
1: घड़ी मिला लीजिए, इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।

0: सुन लिया संक्षिप्त समाचार आपसे करुणा, नमस्कार आपको।
1: नमस्कार नीतू शाह, सभी को नमस्कार। कल नेशनल असेंबली के लंच रूम में बजट पूर्व स्टेक होल्डरों के साथ परामर्श समाप्त हुआ, जहां कई ट्रेड यूनियन इन परामर्श बैठकों में शामिल हुए। वहीं नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट किया। इस मंच से जुड़े यूनियनों का कहना था कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को करनी चाहिए थी, न कि जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी को। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। दोनों रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डरों के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। ऑसिनाल गवर्नमेंट स्कूल के 104 साल पूरे हो गए हैं। इसी संदर्भ में कल एक समारोह लगाया गया। इस मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता सशवी सागर राम गुलाम की उस दूरदर्शिता को याद दिलाया, जिसके तहत मुफ्त शिक्षा की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नागरिक शिक्षा पर केंद्रित नाइस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही। और विदेश में चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। साथ ही ईरान की उस प्रतिबद्धता की सराहना की कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा। और अब मौसम की रिपोर्ट। हमारे इलाके पर एक हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहेली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा से परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज के लिए सूर्योदय 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 6:45। तो पूरा समाचार बुलेटिन 6:30, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।
2: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.
3: NBC Astia Do Ulami.
4: ये है रेडियो मॉरिशस।

की बेला ताजगी भरी शुरुआत। भोर की बेला ताजगी भरी शुरुआत।

0: चलिए श्रोताओ, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। 6:03 हो चुके हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, आप सभी सुनने वालों को हम कहेंगे हमारा प्यार भरा नमस्कार और आदाब। गुरुवार का दिन है आज, और आज है 7 मई 2026। आपका हार्दिक अभिवादन करते हैं इस हिंदुस्तानी सभा में। तो चलिए, आज की नई सुबह हम आपके साथ जो है जुड़ चुके हैं। नई उम्मीदों और नया अवसर जो है आज का दिन आपके जीवन में ढेर सारे खुशियाँ लेकर आए। जो भी कार्य आप करें, आप सफलता पाए, बस हमारी यही कामना है। तो चलिए श्रोताओं, भोर की बेला इस कार्यक्रम की शुरुआत हम करने जा रहे हैं शुभ विचारों के साथ, और आप दिव्य दृष्टि कार्यक्रम सुन पाएंगे, और ये प्रोग्राम जो है आप आचार्य सकलानी जी से सुन पाएंगे।
1: आइए सुनिए सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।
2: ओम योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधरा स्वधाम्ना अन्यास्त हस्तचरण श्रवण त्वगादीन प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। दिव्य दृष्टि के समस्त श्रोताओं को आचार्य सकलानी का सादर अभिवादन। श्रोताओं, ये कार्यक्रम और इस सनातन धर्म टेम्पल फेडरेशन के तत्वावधान में प्रस्तुत किया जा रहा है सम्मान का दान। इस विषय में हम पिछले प्रसंग से चर्चा कर रहे थे। श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि विसृज्यस्य यमानान् स्वान् दृशं ब्रीडां च दैहिकीं प्रणमेद दण्डवद भूमाश्वाश्चाण्डाल खगोखरम्। कि सबको और साष्टांग प्रणाम करने से और पुण्य की प्राप्ति होती है, क्योंकि प्रत्येक प्राणी में भगवान का निवास है। यद्यपि ये उपदेश श्रोताओं देह दृष्टि से शून्य बीतरागी परम हंसों की स्थिति बतलाने वाला है, फिर भी इतना तो सभी को निश्चय कर लेना चाहिए कि अपमान पाने योग्य संसार में कोई नहीं है। इस नाते से छोटे बड़े सभी हमारे सम्मान के पात्र हैं। इस रहस्य को न समझने के कारण ही जाति, वर्ण, व्यवसाय, क्रिया, धन, रूप, बल, पद, विद्या आदि के अभिमानवश मनुष्य दूसरों को अपने से नीचा मान करके उसका अपमान करता है और उनकी अंतरात्मा पर भारी आघात पहुंचाता है। और श्रोताओं, इसके फलस्वरूप वो स्वयं नीच बन करके गुरुतर आघात का पात्र बन जाता है। हम लोगों से कुछ लोग बड़ों का सम्मान तो किसी भी हेतु से अथवा अभ्यास से करते भी हैं, परंतु अपने से छोटों का सम्मान करते हुए उनको बड़ा संकोच मालूम पड़ता है। कुछ लोग तो उनका अपमान कर बैठते हैं, यहाँ तक कि अपनी विवाहिता पत्नी का पति भाव के अभिमान में आकर के अपमान कर बैठते हैं। कुछ उदंड प्रकृति के मनुष्य तो गाली गलौच और मारपीट तक की नृशंसता करने में भी बिल्कुल हिचकते नहीं है। श्रोता, ये बड़ा पाप है। पति को परमेश्वर का सम्मान मान करके उनकी सेवा करने की आज्ञा शास्त्रों ने और स्त्रियों के लिए दी, और उन्हें उसके अनुसार तो करना ही चाहिए, परंतु पति अपने को परमेश्वर माने और पत्नी को दासी मान करके जबरदस्ती उनसे मनमानी दोषपूर्ण गुलामी कराए, ऐसी आज्ञा कहीं नहीं दी है श्रोताओं शास्त्र ने। फिर परमेश्वर के समान गुण होने पर कोई अपने को परमेश्वरवत भी मान ले तो किसी अंश में उसका बचाव हो सकता है। हम न मालूम परमेश्वर का कितना अपमान करते हैं, कितना उसे और भूले रहते हैं, परंतु श्रोताओं, वो हमारे अपार अपराधों की ओर ध्यान न दे करके हम सदा और हमारा कल्याण करने में ही लगे रहते हैं। ऐसी स्वाभाविक कल्याणकारिणी वृत्ति जिस पति की हो, वो यदि पत्नी को अपनी पूजा परमेश्वर की भांति करने के लिए कहे तो उसका ऐसा कहना उचित हो भी सकता है, परंतु ये ध्यान रहे श्रोताओं कि ऐसा पति सेवा सम्मान का भूखा ही क्यों होगा। इसलिए किसी भी पति को अपनी पत्नी का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, बल्कि स्वयं सदा सन्मार्ग पर आरूढ़ रह करके अपने स्वाभाविक उत्तम और सद्व्यवहार द्वारा उसके हृदय पर अधिकार करके उसे भी सदा सन्मार्ग पर चलाना चाहिए और मन ही मन उसको भगवान के प्रतिमूर्ति मान करके यथायोग्य क्रियाओं के द्वारा उसका सेवा सम्मान करना चाहिए। इसी प्रकार गुरु को शिष्य का, पिता को पुत्र का, उच्च वर्ण को अपने निम्न वर्ण का, धनी को निर्धन का, उच्च पदस्थ को और निम्न पदस्थ का, विद्वान को अविद्वान का, सास को वधू का, मालिक को और नौकर का सच्चे हृदय से यथायोग्य सम्मान करना चाहिए। इसका ये तात्पर्य नहीं है कि मोह

बस आसक्ति के कारण ही स्त्री पुरुष आदि के और शास्त्रोक्त व्यवहार में जो लोक परलोक दोनों में कल्याणकारी है, है ना, उच्छृंखलता पैदा कर ली जाए। श्रोताओं, अपने अधीनता में काम करने वाले किसी भी कर्मचारी, सेवक या मजदूर का मनवाणी या शरीर से कभी अपमान नहीं करना चाहिए। मन में किसी को नीचा समझना, शरीर से अनुचित वर्ताव करना या गर्वपूर्ण आकृति बना लेना और वाणी से किसी को अपमानजनक शब्द कहना, ये तो सर्वथा अनुचित है। ये उक्ति सदा याद रखनी चाहिए। श्रोताओं, की तलवार का घाव मिट जाता है पर जवान का घाव नहीं मिटता। मनु महाराज कहते हैं मनुस्मृति में, नारुदंतुदह स्यादार्थो पीन परद्रोह कर्मधी ययास्योद विजयते वाचा नालोक्या तामुदीरयेत। अत्यंत पीड़ित होने पर भी किसी को मर्म भेदी वचन न कहें दूसरे को, और जो दूसरे के और द्रोह के काम में बुद्धि को न लगावें, और जिस जबान से किसी को उद्वेग न हो, ऐसे स्वर्ग से भ्रष्ट करने वाली कड़वी जबान किसी से न कहें। हमेशा सबका भला चाहें, मीठी और हितकारी और वाणी बोलें और हंसमुख रहें। कुछ लोग अभिमान बस या बुरी आदत पड़ जाने के कारण अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से अथवा सेवक या मजदूरों से उनकी शक्ति से कहीं अधिक काम लेने में और अपनी बुद्धिमानी समझ बैठ जाते हैं, और उनसे बात करने में अपना अपमान समझते हैं। कभी बोलते भी हैं तो इशारे अथवा चेहरा बिगाड़ करके अपने बड़प्पन दिखाते हुए और बहुत ही रूखे शब्दों में झिड़कते हुए व्यंग भरा मजाक उड़ाते हैं, ताने मारते हुए वे, जिससे वे बेचारे दिल खोल करके अपना दुख रो करके सुना भी न सकें। कुछ लोग तो अहंकार बस यहाँ तक नीचता कर बैठते हैं कि बुरी बुरी गालियाँ दे करके अपने जवान और गंदी करने और हाथ पैर चला करके निर्दयता प्रकट करने में भी नहीं हिचकते हैं। उनकी और माँ बहनों पर कुविचार और कुदृष्टि करते हैं। ऐसे नीच प्रकृति के मनुष्य जो हैं श्रोताओं, सर्वभूत स्थित परमात्मा का ही अपमान कर रहे हैं, घोर अपराध कर रहे हैं, और परिणाम इस लोक और परलोक में भीषण यंत्रणाओं को भोगने के लिए बाध्य हो रहे हैं। इसलिए इस प्रकार की घृणित आदतों को तो सब प्रकार से हानिकारक समझ करके, और सभी जितने भी श्रोता लोग सुन रहे हैं, किसी में भी हो तुरंत छोड़ देना चाहिए श्रोताओं, बल्कि अपमानजनक कोई भी भाव नहीं आने देना चाहिए, है ना। श्रोताओं, कुछ लोग तो नौकर और मजदूरों के नाम से हैं और उसका सम्मानजनक शब्द का उच्चारण भी नहीं करते हैं, रे कह करके, है ना, और पुकारते हैं। ऐसा करने में मिथ्या अहंकार ही तो कारण होता है ना। श्रोताओं, इस अहंकार को छोड़ देना चाहिए किसी को भी, और अनुचित शब्द से कभी उनको और नहीं उनको उनसे बातचीत करनी चाहिए। ये समझ रखना चाहिए श्रोताओं कि कोई व्यक्ति शुद्ध आजीविका के लिए हमारे पास काम करके पैसा ले रहा है, इससे वो हम और हमसे नीचा नहीं हो गया है। जैसे हम हैं, अरे वैसे ही वो भी हैं। इस श्रोताओं, इसका ये अभिप्राय नहीं है कि नौकर या मजदूर किसी काम के लिए कहने में ही और उसका अपमान मान करके उसे आलसी प्रमादी और ऐसा बना दिया जाए, ये उसका सच्चा सम्मान नहीं होगा श्रोताओं। इसलिए और ये बात याद रखनी हमको चाहिए श्रोताओं कि अपमान करके मनुष्य वास्तव में अपने शत्रुओं की संख्या ही तो बढ़ाता है, क्योंकि आप जिसका अपमान करोगे वस्तुतः वो आपका शत्रु बनेगा, और इससे आप जो हैं और शत्रुओं की संख्या आपकी बढ़ेगी, और सम्मान करोगे तो आपके मित्रों की संख्या बढ़ेगी। ये भी निश्चित है श्रोताओं कि जिसके जितने ही शत्रु अधिक होंगे उसकी जीवन यात्रा उतने ही और कांटों भरी पड़े होगी।

0: अशांत असहाय और लक्ष्य तक पहुंचने में संदेह युक्त रहेगी। इसके विपरीत जिसके सच्चे मित्रों की संख्या जितनी ज्यादा होगी उतना ही उसका जीवन और विघ्न रहित शांत और सहायता से पूर्ण और स्वाभाविक ही सफलता युक्त रहेगी। मनुष्य अभिमान को छोड़ दे तो दुनिया भर को अपने पक्ष में ला सकता है। श्रोताओं, ये दुनिया वास्तव में आपके आपका विरोध इसीलिए करती है क्योंकि आपके अंदर में अहंकार है। बस जिस दिन आप अहंकार से दूर हो जाते हैं सारी दुनिया आपकी मित्र हो जाएगी। श्रोताओं, भगवान दीन बंधु हैं, पतित पावन हैं, अशरण शरण हैं, इसलिए उनकी भक्ति चाहने वाले को भी ऐसा ही बनाना चाहिए। माता अपने दीन बच्चे को विशेष प्यार करती है। माँ की गोद में धूल भरा बच्चा ही नहीं, गोद में और मलमूत्र त्याग करने वाला बच्चा भी बड़े स्नेह के साथ स्थान पाता है। श्रोताओ, माता उसका अनादर या तिरस्कार नहीं करती है, है ना, बड़े चाव से और उसे हृदय से लगाए रखती है। अपने हाथों उसका मलमूत्र धोने का भी जो है और सुख अनुभव करती है। इस प्रकार हम लोगों को स्वयं अमानी हो करके उन लोगों का विशेष करके चाव के साथ सम्मान करना चाहिए, उनका विशेष आदर करना चाहिए जिनका आदर सम्मान कोई नहीं कर रहा है या जिनका आदर कर सम्मान करने में लोग सकुचाते रहते हैं। महाप्रभु चैतन्य देव कहते हैं कि त्रिणादपि सुनीचे न तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीय सदा हरि ही। अपने को और राह में पड़े हुए एक तिनके से भी नीचा समझो, वृक्ष से बढ़कर के सहनशील बनो, अपने मान सम्मान की इच्छा बिल्कुल छोड़ करके दूसरों का सम्मान करो और ऐसा बन करके सदा श्री हरि का कीर्तन करो। श्रोताओ, सम्मान दो पर चाहो मत, ये शास्त्र का उपदेश है। मनु महाराज तो कहते हैं कि सम्मान से जहर के समान डरना चाहिए तथा अपमान की अमृत की भांति सदा और इच्छा करनी चाहिए। अपना कल्याण चाहने वाले के लिए यही सिद्धांत सर्वथा मानने योग्य है। मुक्त पुरुषों को छोड़कर के संसार में शेष तीन तरह के मनुष्य हैं श्रोताओं, पामर, विषयी और मुमुक्षु। मान न मान, मैं तेरा मेहमान कहावत को चरितार्थ करते हुए पामर प्राणी जबरदस्ती लाठी के जोर से मान प्राप्त करते हैं। श्रोताओं, इन सब चीजों से बचना चाहिए। आज यहीं पर समय समाप्त हुआ चला जा रहा है, इस प्रसंग को लेकर के पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए ओम शांति ही शांति ही शांति ही।
1: अभी आप सुन रहे थे सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की ओर से कार्यक्रम दिव्य दृष्टि।
2: KHz ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: जी। चलिए श्रोताओ, 6:18 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चंद विज्ञप्तियाँ सुनिए। जरूरी मरम्मत कार्यों की वजह से कई इलाकों में बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सबसे पहले विलबाग, पिचिजुली और ग्रां रोजाली के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे तक बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। फिर है सरफेनों के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है बुस्के रोड, कंपावे रोड, एबिस्कुस लेन 3 और 8, तानुजा लेन। सरफेनों के कुछ रहने वाले निवासियों को टिकलाल सुबल लेन, डॉक्टर मनीलाल एवेन्यू और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को शनिवार 9 मई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर शाम के 4 बजे के बीच। वक्वा के रहने वाले निवासों को, जिनमें है रुत ट्रांकिल, पावे दामू, रुत बनते के

0: कुछ भागों के रहने वाले निवासियों को रूट क्लेफो नुमरो अ ए नुमरो थ्रा, रूट वैंटा नुमरो अ नुमरो दो ए नुमरो थ्रा, मॉडर्न स्क्वेयर, रूट लिबर्टो के कुछ इलाकों में, रूट जु क्लब के कुछ भागों में, रूट जैक्सन, रूट लंबर्टी और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को रविवार 10 मई 2026 को सुबह 8:30 बजे से लेकर शाम के 5 बजे के बीच, तो अंत में ग्लेन पार्क के रहने वाले निवासों को, जिनमें है एनएचडीसी ग्लेन पार्क के कुछ रहने वाले निवासों को और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई 2026 को सुबह 9 बजे से लेकर दोपहर के 2 बजे के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से चयन विज्ञप्तियाँ सुन रहे थे, ये रेडियो मॉरिशस है। तो चलिए, बोर्ड की बिराइस हिंदुस्तानी सभा को हम आगे बढ़ाएंगे और महाराणा प्रताप दिवस के शुभ अवसर पर एक विशेष कार्यक्रम आपके लिए, ये कार्यक्रम पंडिता रामभोजन जी से आप सुन पाएंगे।
1: महाराणा प्रताप दिवस पर आइए सुनिए यह विशेष कार्यक्रम।

शनम अस्मे धेहि श्रवो वृत ओम शांति शांति शांति। आदरणीय श्रोताओं को पंडिता सरस्वती त्वरिया रामभोजन का सादर नमस्ते। गहलोत राजपूत महासभा की प्रस्तुति विशेष कार्यक्रम वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के शुभ अवसर पर आप सभी जनों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, क्षत्रिय इतिहास के उन अमर योद्धाओं का संकलन जिन्होंने युद्ध भूमि में अपने पराक्रम, रणनीति एवं आत्म बलिदान से अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए, इनमें से है एक महाराणा प्रताप। महान विभूति के जीवन से प्रेरणा लेकर आपके समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। वे केवल इतिहास के एक पात्र नहीं, बल्कि साहस, स्वाभिमान और अदम्य दृढ़ता के सजीव प्रतीक हैं। महाराणा प्रताप, उनकी दृढ़ता केवल युद्ध भूमि में दिखाई देने वाली वीरता नहीं थी, वह एक गहरी आंतरिक शक्ति थी, एक ऐसा अडिग संकल्प जिसने उन्हें हर परिस्थिति में अटल बनाए रखा। महाराणा प्रताप का सबसे बड़ा सिद्धांत था स्वतंत्रता सर्वोपरि। जब शक्तिशाली मुगल सम्राट अकबर पूरे भारत पर अपना अधिकार स्थापित कर रहा था, तब महाराणा प्रताप ने यह संकल्प लिया कि वे अपनी मातृभूमि मेवाड़ को कभी गुलाम नहीं बनने देंगे। यह वही भावना है जो वेदों में भी व्यक्त होती है, न पराधीनः सुखम भवति, अर्थात पराधीन व्यक्ति कभी सुखी नहीं हो सकता। महाराणा प्रताप ने कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। उन्होंने राजमहलों को छोड़ दिया, जंगलों में जीवन बिताया, घास की रोटियां खाई, लेकिन अपने स्वाभिमान को झुकने नहीं दिया। यह हमें यजुर्वेद की इस भावना की याद दिलाता है, तेजस्वी नावधीतमस्तु, अर्थात हमारा तेज और आत्मसम्मान सदैव बना रहे। धर्म और कर्तव्य जीवन का आधार है। महाराणा प्रताप का जीवन इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने अपने राजधर्म का

पूर्ण पालन किया। उसके लिए धर्म का अर्थ केवल पूजा पाठ नहीं था, अपनी प्रजा की रक्षा करना और न्याय स्थापित करना था। महाराणा प्रताप को अपने धर्म, कर्तव्य और मातृभूमि पर अटूट विश्वास था। उन्हें यह दृढ़ निश्चय था कि सत्य और स्वतंत्रता की राह पर चलना ही उनका धर्म है। यही आत्मविश्वास उन्हें हर कठिनाइयों में आगे बढ़ने की शक्ति देता था। महाराणा प्रताप का आत्मविश्वास उन्हें आत्मनिर्भर बनाता था। उन्होंने कभी किसी के सामने झुकना स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि सम्मान के साथ जीना ही सच्चा जीवन है, चाहे इसके लिए कितने ही कष्ट क्यों न सहने पड़े। अथर्ववेद का एक प्रेरणादायक वाक्य है, उत्तिष्ठथ जाग्रत प्राप्त्य वरान निबोधत, अर्थात उठो, जागो और अपने लक्ष्य को प्राप्त होने तक रुको मत। महाराणा प्रताप ने इस मंत्र को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपनाया। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, कभी झुके नहीं और धीरे धीरे अपने परिश्रम और दृढ़ता के बल पर मेवाड़ के अधिकांश भाग को पुनः स्वतंत्र कराया। श्रोताओं, महाराणा प्रताप का जीवन हमें अनेक गहन संदेश देता है, जैसे संकल्प की अधीनता। यदि लक्ष्य स्पष्ट है तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। स्वाभिमान का महत्व, जीवन में कभी भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं करना चाहिए। धैर्य और साहस, कठिन समय ही हमारी असली परीक्षा होती है। त्याग और समर्पण, महान लक्ष्य के लिए कभी कभी सुखों का त्याग करना पड़ता है। आत्मविश्वास, स्वयं पर विश्वास ही सफलता की पहली सीढ़ी है। ऋग्वेद में कहा गया है, नायमात्मा बलहीनेन लभ्यः। यह मंत्र बताता है कि आत्मबल और आत्मविश्वास के बिना कोई भी महान कार्य संभव नहीं है। महाराणा प्रताप इसका जीवंत उदाहरण है। श्रोताओं, महाराणा प्रताप ने अपने जीवन से यह सिद्ध किया कि सच्चा राजा वही है जो अपने प्रजा के सम्मान को अपने जीवन से भी ऊपर रखे। यह केवल एक वाक्य नहीं, उनके जीवन का जीवंत सत्य था। महाराणा प्रताप के लिए राजा होना केवल शासन करना नहीं था, बल्कि प्रजा की गरिमा की रक्षा करना था। उस समय अकबर की अधीनता स्वीकार करना आसान था, इससे राज्य सुरक्षित रहता, सुविधाएं मिलती, लेकिन इसका अर्थ होता कि उनकी प्रजा भी पराधीनता और अपमान का जीवन जीने को मजबूर हो जाती। इसलिए उन्होंने अपने व्यक्तिगत सुख को त्याग कर प्रजा के सम्मान को चुना। महाराणा प्रताप ने जंगलों में रहकर भूख और कठिनाइयों झेलकर जीवन बिताया, परंतु उन्होंने कभी यह नहीं चाहा कि उनकी प्रजा अपमानित जीवन जिए। वे चाहते थे कि कष्ट राजा सहे, पर प्रजा का सिर कभी न झुके। यही सच्चे नेतृत्व की पहचान है। श्रोताओं, हल्दी घाटी का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि प्रजा के सम्मान की रक्षा का प्रतीक था। महाराणा प्रताप जानते थे कि

0: शत्रु शक्तिशाली हैं, फिर भी उन्होंने युद्ध किया क्योंकि उनके लिए यह लड़ाई स्वाभिमान की थी, केवल सत्ता की नहीं। श्रोताओं, महान योद्धा राष्ट्रनायक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी की जयंती पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि। आपका नाम सदैव गर्व, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति का प्रतीक रहेगा। आपको सत सत नमन। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देती हूँ। ध्यान के लिए धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति।
1: अभी आप सुन रहे थे महाराणा प्रताप दिवस पर यह विशेष कार्यक्रम।
2: साढ़े छह बज चुके हैं। पेश है समाचार बुलेटिन। नमस्कार, सबसे पहले आज की सुर्खियां। नेशनल असेंबली के कल लंच बल्कि नेशनल असेंबली में कल लंच रूम में स्टेक होल्डरों के साथ बजट पूर्व परामर्श समाप्त हुआ। नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट किया। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती है। मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डर के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार के कुछ फैसले लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। और सिनाल गवर्नमेंट स्कूल के सालगिरह समारोह में डॉक्टर नवीन राम गुलाम निस प्रोग्राम फिर से शुरू करने की बात कही। और विदेश में चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। और अब समाचार विस्तार से। कल नेशनल असेंबली के लंच रूम में बजट पूर्व सलाह मशवरे स्टेक होल्डरों के साथ समाप्त हुआ, जहां कई ट्रेड यूनियन इन परामर्श बैठकों में शामिल हुए। वहीं नेशनल ट्रेड यूनियन कॉन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट कर दिया। इस मंच से जुड़े यूनियनों का कहना था कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को करनी चाहिए थी, न कि जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी को। नरेंद्र नाथ गोपी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बैठक शुरू होने के कुछ मिनट बाद ही बाहर निकलने का फैसला किया। उनका आरोप था कि ये वन वे कंसल्टेशन थी और एक जूनियर मंत्री बजट से जुड़े अहम सवालों का जवाब देने की स्थिति में नहीं है। कल सिर्फ यूनियन ही नहीं बल्कि युवाओं, कलाकारों और एनजीओ के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बातें रखी। चर्चा में एनजीओ फंडिंग, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और बच्चों के लिए एक उच्च सचिवालय की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल रहे। मेधावी छात्रों को देश लौटने के लिए प्रोत्साहन, खाद्य अपव्यय कम करने के उपाय, कलाकारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक की मांग प्रस्तावों में शामिल रही। बैठक के अंत में धनेश्वर दामरी ने कहा कि किसी भी प्रस्ताव का अध्ययन किया जाएगा, सभी प्रस्तावों का अध्ययन किया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। अगला चरण मंत्रालयों के साथ परामर्श का होगा। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। दोनों रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर मंत्री धनेश्वर डामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डरों के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। वे 4 मई को प्रकाशित मूडीज की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद बजट सुधार में ठोस प्रगति का उल्लेख किया गया। रिपोर्ट में विशेष रूप से शागोस सॉवरेनिटी डिस्प्यूट समझौते की विफलता और मध्य पूर्व युद्ध से जुड़ी मुद्रास्फीति के दबाव का भी जिक्र है। धनेश्वर दामले ने कहा कि मॉरिशस अब भी दो प्रकार के जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। उनको सुनते हैं, उनसे बात की लवीना सूफी ने।
3: Toutefois, nous sommes toujours vulnérables à des risques. Et nos deux qualités risques. Un, c'est un choc externe, la guerre, prix fret, par exemple. Et deuxième, c'est un choc interne. Donc, un choc externe, il est en dehors de nos contrôles. Nous ne sommes pas capables de faire grandes affaires. Nous devons prendre une mesure temporaire pour mitiger les effets de un choc externe. Par contre, un risque interne, il est dans nos contrôles. Et ce que les deux rapports préconisaient, c'est qu'il nous faisait réduire la dette, amener à un niveau soutenable, nous faisons réduire le déficit budgétaire et nous faisons relance l'économie. Ça, c'est dans nos armées. Et si nous réussissons à ça, nous redressons l'économie, nous relançons l'économie, et c'est là qui nous crée l'emploi et nous amène le progrès inclusif.
2: ऑसिनल गवर्नमेंट स्कूल के 104 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसी संदर्भ में कल एक समारोह लगाया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने राष्ट्रपिता शशि सागर राम गुलाम की उस दूरदर्शिता को याद किया जिसके तहत मुफ्त शिक्षा की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री ने युवाओं के लिए नागरिक शिक्षा पर केंद्रित निस कार्यक्रम को फिर से शुरू करने की बात कही। विस्तार।
4: देश के उत्तर में असेनाल गांव की मुख्य सड़क पर स्थित ये सरकारी पाठशाला अपने इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण का जश्न मना रही है। इस साल इसकी 104वीं वर्षगांठ है। बहुत पहले ये एक सैन्य अस्पताल थी। 1922 में इमारत को एक पाठशाला में बदल दिया गया। स्कूल की मुख्य अध्यापिका सरदा नागा कहती हैं,
5: De la maternelle jusqu'au grade 6. Vous êtes le cœur de cette école. N'oubliez jamais que l'éducation ne se limite pas aux connaissances académiques, mais englobe également des valeurs essentielles telles que le respect, la discipline, la gentillesse et la persévérance.
4: शिक्षा मंत्री ने इस साल पिसाक में स्कूल के परफॉर्मेंस की सराहना की। 2024 में सफलता दर 45% थी और 2025 में 77%। मंत्री महेन गंगा प्रसाद कहते हैं,
6: Quand finalement changement de 2024, ce gouvernement là finalement sa deuxième sens pour banzeler Pessac. Pas seulement de N matière, de deux ou trois matières si je pas réussi de premier, nous n'amène sa réussite là. Nous donne à peu près 200-300 enfants l'occasion. Pareil comme dans le collège, à travers Foundation Programme, 2500 enfants nous peuvent sauver chaque année.
4: प्रधानमंत्री ने कहा कि शिक्षा जीवन में सफलता की कुंजी है। डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नाइस प्रोग्राम फिर से लागू करने के बारे में बात की जो नौजवानों के लिए नागरिक शिक्षा पर आधारित है।
7: Parce que c'est d'autres qui font nous. Moi, je dis aux francs, vous pensez que vous venez, vous venez pas seulement là comme mon papa peut me tourner dans la case. Mais maintenant, enseignant comme je gagne, pour les droits de la vie. C'est pourquoi je fais ici de tout, la rectrice spécialement. Mais les enseignants, mon staff et mon étudiant. Parce qu'il les faut, quand on réussit, quand on gagne sa chiffre de 77% là, c'est pas un Djimoun, c'est pas deux Djimoun, c'est l'équipe. Il n'y a pas comme une équipe de football, ça. Tout Djimoun, ils travaillent ensemble.
4: प्रधानमंत्री ने पिछले साल पिसाक परीक्षा में सफल हुए छात्रों को ट्रॉफियां दी। स्कूल की एक पत्रिका की लॉन्चिंग की गई और एक स्मारक पथ का अनावरण भी किया गया। असेनाल सरकारी पाठशाला में 210 छात्र हैं।
2: विपक्ष नेता जूली जोंगो ने स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और विदेशी आपूर्तिकर्ता सहारा एनर्जी रिसोर्स लिमिटेड के बीच कच्चे तेल आपूर्ति समझौते पर सवाल उठाए हैं। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट को एक और वर्ष के लिए दोहराए जाने की शर्तों पर चिंता जताई। साथ ही लगभग 1 बिलियन रुपये की प्रीमियम राशि के भुगतान को लेकर भी सवाल किए। उनको सुनते हैं,
8: qu'on a la guerre là, hein, dans Moyen-Orient, en décembre. Là. Et c'est sa compagne Sahara, un

0: Energy Resources Limited qui gagne sa contrat. Et qui arrive quand on get premium avec DMCC là, qui était dans le contrat avant, premium, sorti 69,8 $ par métrique tonne et livine à peu près 97,9 $ par métrique tonne, c'est-à-dire une augmentation de presque 40%. Et l'eau, ça, consignment qui se fait commander là, il fait une augmentation d'1 milliard d'euros.
1: वहीं वाणिज्य मंत्री माइकल सिक्यूएन ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर स्थिति स्पष्ट की जाएगी। उनके अनुसार प्रीमियम राशि में कोई बदलाव नहीं लाया गया है। उनको सुनते हैं।
2: Me trouve un diolaison gars qui l'est perdu. Il n'est pas connu qui appelle premium. Il n'est pas connu qui appelle prix plate. Et moi capable de dire qui facture qui CEB gagné avec la STC. Nous ne respectons le contrat qui la STC et CEB signé. Et moi dire bien, ça agrément là fin signé quand l'itiministe. Et aujourd'hui, il va être d'accord sur l'agrément. Et mon cas, dire où le prix premium il reste pareil. Donc, si jamais il y a une augmentation de prix, c'est prix plate qui est augmenté. Prix plate, c'est le prix mondial du jour. Quand nous prenons nos cargaisons de l'huile lourde, c'est ça prix-là qui est facturé.
1: Bobasse ki jail mein kuch hi dinon ke bhitar Jeff Axel Perrin ki maut ke baad ek dusra mamla samne aaya hai. Is baar 32 saal ke Jian Somi ki maut सिर में फ्रैक्चर के कारण हुई, जैसा कि पुलिस के मुख्य फोरेंसिक डॉक्टर सुदेश कुमार गंगाजीन द्वारा की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है। अपनी रिपोर्ट में उन्होंने गहन जांच की सिफारिश की है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी इस मामले पर नजर रख रहा है। प्रिजन प्रशासन की एक विज्ञप्ति के अनुसार ज्ञान सोमी को अपनी यूनिट के परिसर में मिर्गी का दौरा पड़ा। उन्हें तुरंत बोबासें प्रिजन के अस्पताल में भर्ती कराया गया। निरीक्षण के दौरान उन्हें दूसरा दौरा पड़ा। प्रिजन के अनुसार आपातकालीन चिकित्सा प्रोटोकॉल तुरंत लागू किए गए और स्वास्थ्य कर्मियों ने बिना देरी हस्तक्षेप किया। बाद में प्रिजन के डॉक्टर द्वारा जांच के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल स्थानांतरित किया गया ताकि उपचार दिया जा सके। हालांकि अस्पताल पहुँचने पर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं रही और उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। इस मामले में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने जांच शुरू कर दी है। नेशनल प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डिवीजन के अधिकारी बोबासे प्रिजन पहुंचे, जहां जांच की प्रक्रिया जारी है। और हाल ही में बोबासे जेल में हुई दो मौतों के मामले में इस चरण पर किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार के निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए कोई ठोस तत्व उपलब्ध नहीं है। ये नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल का बयान है। उन्होंने अपील की कि जांच जारी रहने के दौरान किसी भी प्रकार की अटकलों से बचा जाए। पूर्व डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने यह भी याद दिलाया कि नेशनल प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डिवीजन, जो कि टॉर्चर के खिलाफ कन्वेंशन के तहत स्थापित किया गया है, का उद्देश्य कैदियों के अधिकारों की रक्षा करना और किसी भी अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार को रोकना है। उनको सुनते हैं।
3: Pour l'instant, jusqu'à présent, jusqu'à ce que l'enquête termine, nous n'avons aucune raison de croire que finira quelconque abus de droit. Mais je dis ça avec beaucoup de réserve parce que nous attendons qu'il nous ait le rapport de l'enquête pour être capable de prononcer moi. Sur les circonstances de Salamola. Mais seulement, nous disons, dans le cas de Perrine, me dire que la famille, la maman qui vient à la commission, est tout à fait légitime pour une maman en vie connue. Donc, qui circonstances ces enfants de mort pendant qu'il est ici et servir une sentence de prison?
1: Satyajit Bulil ne ye bayan patrakar Santana Posino Kudia ek prashikshan satra ke baad जो मीडिया ट्रस्ट द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आयोजित किया गया था। इसका विषय था शांतिपूर्ण भविष्य के लिए जिम्मेदार और स्वतंत्र मीडिया। कैनाबिस पर नाडक के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप की बैठक काटोबोन के गोल्डक्रेस्ट होटल में कल लगाई गई। बैठक में एनजीओ, सरकारी प्रतिनिधि और विशेषज्ञ शामिल हुए। बढ़ती सिंथेटिक ड्रग्स के बीच मौजूदा नीतियों पर पुनर्विचार की जरूरत पर जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने स्वास्थ्य, अपराध, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक संभावनाओं पर विचार साझा किया। अब जनता से सुझाव लेने के

0: लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय परामर्श होंगे। अंतिम रिपोर्ट नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन को सौंपी जाएगी जो कि नीति तय करेगी। विस्तार।
1: गांजे को वैध बनाने के मुद्दे पर चर्चाएं अलग रहकर नहीं किया जा सकता है, यही इस पहली परामर्श बैठक का निष्कर्ष रहा, खासकर ऐसे समय में जब देश में सिंथेटिक ड्रग्स का प्रसार बढ़ रहा है। शुरुआत में कुणाल नायक ने इस बात पर जोर दिया कि कैनबिस पर हो रही बहस खुले सोच के साथ की जानी चाहिए। दुनिया आगे बढ़ रही है और वास्तविकता देखना जरूरी है। 50-60 साल पहले की नीतियां अब जायज नहीं
2: हैं।
1: चर्चाएं कई पहलुओं पर केंद्रित रहीं, जिनमें अपराध, सार्वजनिक स्वास्थ्य और उन समुदायों की स्थिति शामिल हैं जो मौजूदा नीतियों के प्रभावों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। हम उन कानूनों का समर्थन कर रहे हैं जो ग्राहकों के पक्ष में और अपराध के विरुद्ध हो। नाजुक वर्ग के लिए कट का महत्व ज्यादा है, ऐसे कानूनों को नहीं भुलाना चाहिए जो ऐसे लोगों के हक में
3: है।
1: प्रतिभागियों ने चिकित्सा कारणों से कैनबिस के प्रयोग तथा आर्थिक प्रभावों और औद्योगिक संभावनाओं पर भी विचार विमर्श किया। मानवाधिकार आयोग में हम मेडिकल कैनाबिस के प्रयोग पर बल दे रहे हैं। इलाज और सम्मान के साथ मृत्यु प्राप्त करने की बात आज हम कर रहे हैं। ड्रग्स देने वाले व्यक्ति को जेल में डाल रहे हैं जबकि वास्तव में उसे इलाज की जरूरत है। जनता की राय जानने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा अंतिम रिपोर्ट तैयार करने से पहले क्षेत्रीय परामर्श भी आयोजित किए जाएंगे। ये रिपोर्ट NEDC के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप द्वारा तैयार की जाएगी और बाद में इसे प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन को प्रस्तुत किया जाएगा जो आगे की दिशा तय करेगा।
0: मॉरिशस में कीटनाशकों का उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। सरकार अब अपने कानूनी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में कदम उठा रही है। पोर्टिस में बुधवार को आयोजित एक कार्यशाला के बाद यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट के तहत 3 नए नियमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया जारी है। इस बैठक में सरकारी अधिकारी, किसान और विशेषज्ञ शामिल हुए। उद्देश्य है कृषि रसायनों के उपयोग, भंडारण और निपटान को अधिक सख्ती से नियंत्रित करना, साथ ही खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना। कृषि उद्योग मंत्री ने अधिक सख्त लेकिन आधुनिक कृषि नीति की वकालत की। उनका संदेश स्पष्ट था, जो हम खाते हैं उसे पैदा करें और जो हम पैदा करते हैं उसे खाएं। डॉक्टर कृषि मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल को सुनते हैं।
4: Là côte, le planteur est le même acteur principal. Il y a un suivi pour faire, une mesure d'accompagnement là, parce que l'agriculture traditionnelle est consolidée. Et ce qu'on appelle responsible agricultural activity.
0: विदेशी स्तर पर चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। साथ ही ईरान की उस प्रतिबद्धता की सराहना की कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल की उसके अधिकार की पैरवी की। युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की प्रमुख मांग है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे। खबरों के अंत में मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवा पाई जा रही है। अनुमान है कि मौसम सुहाना रहेगा। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम 17 से 19, अधिकतम 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के बीच। साहिली इलाकों में न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम

29 से 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। प्रवाह रेखा के परे समंदर चंचल रहेगा। लहरें 2 मीटर तक हो सकती हैं। आज सूर्योदय हुआ 6:28 पर, सूर्यास्त होगा 6:15।

0: खबरों के अंत में सुर्खियां एक बार फिर से। नेशनल असेंबली में कल लंच रूम में स्टेक होल्डरों के साथ बजट पूर्व परामर्श समाप्त हुआ। नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट किया। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर मंत्री धनेश्वर दामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डरों के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार के कुछ फैसले अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन उनका मकसद अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। और सिनाल गवर्नमेंट स्कूल के सालगिरह समारोह में डॉक्टर नवीन राम गुलाम ने नाइस प्रोग्राम फिर से शुरू करने की बात कही। और विदेश में चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। 6:51 हो चुके हैं। ये बुलेटिन आप तक पहुंचाया जा रहा है यूसुफ सोमराती के सहयोग से। जुड़े रहिए हमारे साथ कुछ ही समय बाद शोक समाचार।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.TV, NBC Radio.TV.

रिजर्वा रोड ग्रांबे में 80 साल की 80-year-old श्रीमती पुष्मावती गोपी पैदाशी नाम नाइहोल की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2:30 बजे इनके मकान रिजर्वा रोड ग्रांबे से उठाकर दास अंतिम संस्कार के लिए कापमालोगे की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। फिनरल टुडे एट 2:30 PM। शिवाला गली पचित खत में 78 साल के 78-year-old श्री हरिचंद रामकिशोर जो तोचान से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती गायत्री रामकिशोर के मकान शिवाला रोड पचित खत से उठाकर दाह संस्कार के लिए लावांचुया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डी आर्ट 2 PM। एवेन्यू उस्मान सैंपल में 64 साल के 64-year-old श्री नारायण दत्त माओवा जो बोबी से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकी पत्नी श्रीमती अमृता देवी माओवा के मकान एवेन्यू उस्मान सैंपल से उठाकर दाह संस्कार के लिए आले ब्रियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टूडे एट नून। एम्पास खाली थ्रेफ्लोरोज हिल में 50 साल की 50-year-old श्रीमती रोशनी महादेव जो मैडाम सतालफिन से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनके मकान एम्पास खाली थ्रेफ्लोरोज हिल से उठाकर दाह संस्कार के लिए गांधी क्रिमेशन ग्राउंड पालमा काठबोन ले जाया जाएगा। क्रिमेशन टुडे आफ्टरनून। नेहरू लेन लावांचे में 78 साल की 78-year-old श्रीमती वेदवंती छतरधारी पैदाशी नाम बंधु जो चंद्रावती से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुबह 9 बजे इनके मकान नेहरू गली लावांचुआ से उठाकर दाह संस्कार के लिए मेदीन कौरी मास्क की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9 AM। स्कूल लेन लावेनियस सैंपियर में 47 साल के 47-year-old श्री खेमराज पेयटुब जो विशाल से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकी माँ ललिता पे

मोताई ओगी गवर्नमेंट स्कूल में कैटी का काम करते थे कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10:30 बजे इनके मकान रल रोड मोताई ओगी मौका से उठाकर दाह संस्कार के लिए सियाकोस्ताओं सैंपिया की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। इन्फॉर्मेशन टू दिया था 10 AM। रोश रोड पोंब्लॉ फ्लैक में 56 साल की 56-year-old श्रीमती देवरानी सी गुलाम, श्रीमती देवरानी सी गुलाम जो सुनीता से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई हैं। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनकी बेटी श्रीमती अश्वीरा सिंह के मकान रोश रोड पोंब्लॉ फ्लैक से उठाकर दाह संस्कार के लिए कौडेमास के की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डिया था 9:30। रोट रॉयल प्लैन डे रोश में 55 साल के 55-year-old श्री राजकुमार रामेसर, श्री राजकुमार रामेसर जो दीपक से जाने जाते थे और पहले NIU विभाग में चीफ पुलिस इंस्पेक्टर थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकी पत्नी श्रीमती सुलक्षणा रामेसर के मकान गुटवायाल प्लैन डे रोश से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लैन डे रोश की ही स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 10 AM। एवेन्यू पालमिये तेरासों पॉइंट साबल में 67 साल की 67-year-old श्रीमती शास्त्री कुपुसामी जो पामेला से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे श्री शांडिगेन परासुरामन के मकान एवेन्यू पालमिये तेरासों पॉइंटो साबल से उठाकर दाह संस्कार के लिए शिबल की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। बारामिये गली कालबास में 76 साल के 76-year-old श्री धनीलाल घनश्याम जो सुरेश से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन के 12:30 बजे इनके मकान बारामिये गली कालबास से उठाकर दाह संस्कार के लिए बुआ मौशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डेथ 9:30। जगाना रोड रिश्मा फ्लाक में 83 साल की 83-year-old श्रीमती फुलवंती दुर्गा पैदाश नाम सुकन जो फुलवंती से जानी जाती थी कि मृत्यु हो गई है। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनके बेटे श्री आनंद दुर्गा के मकान जगाना गली रिश्मा फ्लाक से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टू डे 11 AM। शोकग्रस्त इन सभी परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: स्पोर्ट्स न्यूज़। सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भरा नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। चैंपियंस लीग का डिफेंडिंग चैंपियन अपना टाइटल डिफेंड करने आएगा। फाइनल होगा आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच। बायर्न म्यूनिख के अलियंस अरेना में मैच ड्रॉ गया 1-1। मैच के तीसरे मिनट में ही जॉर्जिया का जीनियस विक्टर बारास्केलिया के अद्भुत क्रॉस पर डेम्बेले ने पेरिस सेंट जर्मेन को आगे भेजा। बायर्न म्यूनिख ने मैच में वापस आने के लिए भरसक कोशिश की, पर पेरिस सेंट जर्मेन का लीडर मार्किनोस चट्टान बन के सामने था। इंजुरी टाइम में जाके केन ने इक्वलाइज किया। फर्स्ट लेग में 5-4 की जीत, ऑन एग्रीगेट 6-5 से पेरिस सेंट जर्मेन फाइनल में। फाइनल 30 मई को बुडापेस्ट में आर्सेनल वर्सेस पेरिस सेंट जर्मेन। पेरिस सेंट जर्मेन एक कंप्लीट पैकेज वाली टीम है। लुइस एनरिके ने इस टीम को जिस तरह से खड़ा किया,

मिले तारीफ है। पहले पेरिस सेंट जर्मेन में सुपरस्टार खिलाड़ियों का ईगो घमंड था। लुइस एनरिके नाम का स्ट्रेटजिस्ट, इंस्पिरेशनल फुटबॉलिंग आर्किटेक्ट आया, फुटबॉल का चाणक्य जिसने सुपरस्टार खिलाड़ियों के ईगो की राख से बनी टीम को उठाया। लियोनेल मेसी, किलियान एम्बापे, नेमार सब आए पर टीम नहीं बनी। एनरिके ने खिलाड़ियों को अपने ईगो को बाहर रखने को कहा, स्टार खिलाड़ी नहीं बल्कि सुपरस्टार टीम बनाया, मास्टरमाइंड लुइस एनरिके। आज यूरोपा लीग और कॉन्फ्रेंस लीग के फाइनल में जाने के लिए टिकट दिए जाएंगे। शत प्रतिशत बरतानी मुकाबला एस्टन विला और नॉटिंघम फॉरेस्ट के बीच। फर्स्ट लेग में नॉटिंघम फॉरेस्ट की जीत हुई थी 1-0 से। एस्टन विला अपने विला पार्क में होगा। वीकेंड में कई फर्स्ट टीम खिलाड़ियों को बचा के रखा था कोच उनई एमरी ने। एमरी को यूरोपा स्पेशलिस्ट कहा जाता है। एस्टन विला अपने विला पार्क में सभी 6 यूरोपियन मैच जीत पाया है, पर नॉटिंघम फॉरेस्ट को पिछले 10 मैचों में कोई नहीं हरा पाया। कुछ दिन पहले चेल्सी के मैदान में 3-1 की जीत एक प्रमाण है कि नॉटिंघम फॉरेस्ट टॉप फॉर्म में है। टीम न्यूज, एस्टन विला का मिडफील्डर अमादू ओनाना इंजुरी के कारण नहीं खेल पाएगा, पर कप्तान जॉन मैकगेन इंजुरी के बाद वापस आ रहा है। नॉटिंघम फॉरेस्ट में स्टार खिलाड़ी मोर्गन गिब्स व्हाइट को चेल्सी के खिलाफ चेहरे पर चोट लगी थी। अभी तक कंफर्म नहीं है कि वो खेलेगा या नहीं। जो भी हो, प्रीमियर लीग की एक टीम फाइनल में जाएगी। दूसरा सेमीफाइनल है फ्रीबर्ग और ब्रागा के बीच। ब्रागा 2-1 से आगे है, फ्रीबर्ग के लिए होम एडवांटेज। कॉन्फ्रेंस लीग में क्रिस्टल पैलेस का एक पैर पहले से फाइनल में है। फर्स्ट लेग में 3-1 की जीत हुई थी शक्ता दुनियस्क पर, और आज अपने मैदान में फाइनल का टिकट बुक करने की में ज्यादा कठिनाई नहीं होगी, पर फुटबॉल है, क्रिस्टल पैलेस को बच के रहना होगा। दूसरा सेमीफाइनल स्ट्रासबुर्ग और रायो वालेकानो के बीच। अभी रायो वालेकानो 1-0 से आगे हैं। इंडियन सुपर लीग में कल पंजाब की टीम ने चेन्नई को 1-0 से हराया। सऊदी प्रो लीग में इवो टोनी का हैट्रिक। अल आली टीम ने 3-1 से फतेह टीम पर फतेह हासिल की। क्रिकेट, आईपीएल 2026 के ग्रुप स्टेज में कल नया लीडर बना सनराइजर्स हैदराबाद। हैदराबाद की टीम ने 33 रनों से पंजाब किंग्स को हराया। पंजाब किंग्स के लिए कूपर कोनोली का 107 रन नॉट आउट काफी नहीं रहा। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से है। अभी स्टेबल में सनराइजर्स हैदराबाद 11 मैच खेलने के बाद उसके पास है 14 अंक। पंजाब किंग्स ने एक मैच कम खेला है, उसके पास है 13 अंक। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस, इनके पास है 12-12 अंक। स्विमिंग यानी तैराकी के अफ्रीकन चैंपियनशिप में मॉरिशस के लिए सिल्वर मेडल अनिष्ठा तिलक के नाम। अल्जीरिया में अनिष्ठा ने 200 मीटर बैक स्ट्रोक में सिल्वर मेडल जीता। 100 मीटर ब्रास में आइडन लीइंग फिन भी जीत पाया वाइस चैंपियन यानी सिल्वर मेडल। अलिसिया कोक्शुन ब्रॉन्ज मेडल जीत पाई। और लोकल फुटबॉल में एमएफए कप के फाइनल में आईएसपीएल डेमिल का मुकाबला लैक्यो वेव से होगा। कोदो में फाइनल खेला जाएगा इसी रविवार को, इसी संडे को। सेमीफाइनल में लैक्यो वेव्स ने सेक्ल दे जोआकिम को 2-1 से हराया। तो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही, आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। चलते चलते प्रमुख खबर आपको फिर से बता दें। चैंपियंस लीग का फाइनल आर्सेनल और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच होगा 30 मई को। कल बायर्न म्यूनिख और पेरिस सेंट जर्मेन के बीच मैच ड्रॉ गया 1-1 ऑन एग्रीगेट। 6-5 से पेरिस की टीम क्वालिफाई। नमस्कार, आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।

नु थावाई नु लावे नियर तो हर खातिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलल जुलल सहयोग से पेश करल जात बा सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्रशेस एंड पेंट आइलैंड ब्रश कंपनी लिमिटेड जिन बो प्लातो रोड सैंट एंटोइन गुडलैंड्स में है खोजाता एगो जूनियर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जे डिप्लोमा या डिग्री होल्डर है साथ में चला फैक्ट्री वर्कर जे एससी ले पढ़ ले बा या तो फिर कम से कम फॉर्म थ्वा ले एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिया बाय मेल rh@ibrush.mu या admin@ibrush.mu ई पर सकबजा आप लोग अपन सीवी विदा करें मेल द्वारा और या तो फिर आप कभी भी सकबजा ऑफिस जाए एगो वॉकिंग इंटरव्यू खातिन पता है आइलैंड ब्रश कंपनी लिमिटेड बु प्लातो रोड सैंट एंटोइन गुडलैंड्स और अर्जी भेजे की आखिरी तारीख है 21 मई 2026। सेक्टर ट्रेड चार ट्रेड लिमिटेड जो मोती लापे न्यूवेल फ्रांस में है खोजा तो वंजा 21 गो मेल डिलीवरी हेल्पर जेकर कम से कम एक बरिस के लिख्स पे यौंस बा एप्लीकेशन खातर बन सीवी विदा करिया मेल द्वारा recruitment@shawthurs.mu अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 15 मई 2026। सेक्टर लैंडस्केप केयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज प्रो लैंड केयर लिमिटेड जो नोवेल यूजीन मंगल खां फ्लोरियाल में है खोजता 25 गो गार्डनर जे सिपे और फोम थाले पहाड़ लेबा 10 गो ऑपरेटर जे फॉर्म थ्वा या कम से कम से पे ले पहाड़ लेबा और 5 को सुपरवाइजर जे फॉर्म साइकिल पहाड़ लेबा एप्लीकेशन खातिर कॉल करिया सिसनेफ एन एन एन एन एन या तो फिर 54 89 11 11 पर या तो फिर अपन सीवी विदा करिया मेल द्वारा kejav@polandcare.mu या तो फिर कभी भी ऑफिस जाइया लैंडस्केप केयर एंड मेंटेनेंस सर्विसेज में जो प्रो लैंड केयर लिमिटेड है नोवेल यूजीन मंगल खां फ्लोरियाल में अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 30 जून 2026। सेक्टर रिटेल सेल सोसिएटे वे मुलू ब्रदर्स एंड कंपनी जनरल रोड रोजबेल में है खोजाता 4 गो सेल्स पर्सन जे एच एस सी ले पहले बा साथ में दुबर स्किल एक्सपीरियंस बा और चाहेला 2 गो मेल हेल्पर जे ग्रेड 8 या 10 ले पहले लेबा एप्लीकेशन खातिर कभी भी ऑफिस जाइया सोसिएटे वे मुलू ब्रदर्स एंड कंपनी लिमिटेड जनरल रोड रोजबेल में है अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 6 मई 2026। सेक्टर रेंटिंग ऑफ टेंट्स राज बिहारी एंटरप्राइज लिमिटेड जो लालजी लेन महिजानी रोजबेल में है खोजाता 40 गो मेल टेंट डेकोरेटर 10 गो मेल कुक 6 गो मेल लॉरी ड्राइवर 10 गो मेल हेल्पर 3 गो मेल एयर कंडीशनर टेक्नीशियन 3 गो मेल प्लम्बर 3 गो मेल इलेक्ट्रिशियन और 3 गो मेल वेल्डर एप्लीकेशन खातिर फोन करिए 62 75 504 पर या तो फिर 52 52 33 39 पर या 52 52 68 46 पर अर्जी भेजी के आखिरी तारीख 15 मई 2026। सेक्टर टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी हिल्टन मॉरिशस रिजॉर्ट एंड स्पा वुलमोर फ्लिकॉन फ्लैक में जो है खोजा तो मंजा 2 गो स्टीवर्ड 1 गो चीफ स्टीवर्ड 5 गो लॉन्ड्री अटेंडेंट 5 गो रूम या पब्लिक एरिया अटेंडेंट 3 गो लॉन्ड्री सुपरवाइजर जे एच एस सी ले पहाड़ लेबा 5 गो हाउस कीपिंग सुपरवाइजर जे एच एस सी ले पहाड़ लेबा किचन कोऑर्डिनेटर 1 गो चाहेला रेलेवेंट कोर्स इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट 2 गो शेफ दिपाची 2 गो थाई शेफ दिपाची 2 गो कुक 2 गो थाई कुक 1 गो असिस्टेंट यानी कि एडमिन असिस्टेंट इंजीनियरिंग और 3 गो काफेताया के लिए शेफ दिपाची एप्लीकेशन खातिर अपन सीवी विदा करिया mauritius.recruitment@hilton.com अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 21 मई 2026। सेक्टर होलसेल लकी जेड डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड जिन पावे रोड रिविएरा जुहां पर में हक हो जाता व्हीकल असिस्टेंट या लॉरी अटेंडेंट 2 गो मेल और एकर खातिर द्वारा चला 3 बरिस के एक्सपीरियंस आपकी खासो खातिर फोन करिए 52 52 52 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 11 मई 2026। सेक्टर होलसेल सेफ मार्ट ट्रेडिंग लिमिटेड जिन मोते ला पेरे नोवेल फ्रांस में है खोजतवंजा चेकआउट ऑपरेटर या एप्लीकेशन करिया काम खातिन फोन द्वारा कॉल करिया 677-1212 या 58 05 52 41 अर्जी भेजी की आखिरी तारीख है 31 मई 2026। सेक्टर होलसेल सेव मॉट ट्रेडिंग लिमिटेड मोतेला प्रे नोवेल फ्रांस में जो है खोजता चेकआउट ऑपरेटर और एक खातिन एप्लीकेशन खातिन कॉल करिया 67 71 212 या 58 05 52 40 पर अर्जी भेजे की आखिरी तारीख 31 मई 2026।
private household be dekhila ja vacancy ba housemaid khatin jun rivière du rempart ke région ba hua par khojat hovanja ego maid or jun kanjita ba ke chala 6 mahina ke experience rahe ke application khatin phone kar ya rivière du rempart EIC 412-62-2951 और प्लान मायों रेजियन खातिन हाउस मेड चाहला और एप्लीकेशन खातिन आप लोग फोन करिए माईबू के ईआईसी नंबर है 631-95-18 या 630-04-01 तो हर खातिन नू ट्रावाई नू लावेनिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस साथ में एमबीसी के मिलन जुलन सहयोग से

0: 819 किलोहर्ट्ज, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: सुबह के 7:12 हुए हैं। स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बोबासा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू पेरावाल, एवेन्यू डेसन, एवेन्यू अबे लागेल, एवेन्यू जी बोवेन, रू फ्रांकोआ, अपार्टमेंट बेल कांटो और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 मई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर सपहर के 3:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। ये रेडियो मॉरिशस है, तो चलिए आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मीडियम वेव 819 के लहज पे हमारा प्रसारण हो रहा है।
2: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर

0: गुरुवार का दिन है आज और 7 मई 2024। इस हिंदुस्तानी सभा में आप सभी श्रोताओं का हम हार्दिक अभिवादन करते हैं। जी हाँ श्रोताओं, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह 6 बजे से इस समय तक। वैसे एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र हम साथ मिलकर सजाने वाले हैं और ये सुहाना सफ़र दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं और आज का दिन आपके लिए बेहद ही शुभ हो। वैसे आज का मौसम जो है सुहाना है, सुबह की हर किरण आपके जीवन में नए खुशियां लेकर आए, हर दिन आपका बेहतर बने और हर सपना आपका पूरा हो जाए। तो चलिए इसी सोच के साथ इस हिंदुस्तानी सभा की शुरुआत जो है हम चिंतन के साथ करेंगे, चिंतन डॉक्टर जमन जी की प्रस्तुति में।
1: सदाचार और आत्मिक संतुलन का संगम चिंतन, जहां विचारों में मिठास और मन में शांति। आइए सुनते हैं आज का चिंतन।
2: यदि आप पैसे का उपयोग करना जानते हैं तो वह आपका दास है, परंतु यदि आप उसका उपयोग करना नहीं जानते हैं तो वह आपका स्वामी है।

0: तो चलिए श्रोताओ, इस समय आप सुन रहे हैं सुबह का नज़ाना कार्यक्रम। आपके लिए चंद पुराने गाने, चंद पॉपुलर गाने। 8 बजे भोजपुरी में समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद चंद द्वैस गाने आपके लिए। 8:50 पर आप हमारी धरोहर कार्यक्रम सुन सकेंगे। ये कार्यक्रम किरण जानकी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे और इसके साथ ही आप एक भोजपुरी गीत सुन पाएंगे। 9 बजे समाचार पढ़े जाएंगे। समाचारों के बाद आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा के साथ। और दिन के 10 बजे फिर से आप समाचार सुन सकेंगे। और इसके बाद होने वाला है भक्ति धारा कार्यक्रम। और 11 बजे समाचार पढ़े जाएंगे। उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में 11:03 पर तेलुगु भाषा में कार्यक्रम गिरिशानी के साथ। दिन के 12 बजे 12:30 तमिल भाषा में कार्यक्रम आरसी की प्रस्तुति में। मराठी भाषा में कार्यक्रम प्रीति के साथ आप दिन के 1:30 सुन पाएंगे। दोपहर के 2 बजे आपके लिए मंडारिन में कार्यक्रम जिनके साथ। गुजराती कार्यक्रम अमिता की प्रस्तुति में रंगारंग, ये कार्यक्रम 2:30। 2:45 पर आपकी पसंद कार्यक्रम सुमिता की प्रस्तुति में। समाचार दोपहर के 3 बजे और इसके बाद आपकी पसंद कार्यक्रम को जारी रखा जाएगा। भक्ति सागर, ये कार्यक्रम जो है शाम के 4 बजे आप सुन पाएंगे। और इस कार्यक्रम के अंतर्गत पीयूष धारा कार्यक्रम आप की सेवा में। और ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर महावीर जी की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। चंद पुराने गाने, सदाबहार गीत पूनम के साथ शाम के 5 बजे। 6 बजे पूरा समाचार बुलेटिन आप सुन पाएंगे। इसके बाद चंद फिल्मी गाने, 6:30 दाविद के साथ मंदारिन में कार्यक्रम, तमिल भाषा में कार्यक्रम पुवाना के साथ रात्रि के 7 बजे, 7:30 आपके लिए तेलुगु भाषा में कार्यक्रम वर्षा के साथ। शिरीष लेकर आएंगे मराठी भाषा में कार्यक्रम रात्रि के 7:50 पर। 8:10 पर भजले प्रभु का नाम, ये कार्यक्रम देवीना की प्रस्तुति में आप सुन पाएंगे। समीर लेकर आएंगे रात्रि के 8:40 पर महफिले शब, ये कार्यक्रम जो है उर्दू भाषा में आप सुन पाएंगे। भोजपुरी तड़का, ये कार्यक्रम किरण की प्रस्तुति में आप रात्रि के 9 बजे सुन पाएंगे। और रात्रि के 11 बजे सुनहरे पल, ये कार्यक्रम गिनिशा की प्रस्तुति में आप सुन सकेंगे। और रात्रि के 12 बजे से लेकर कल सुबह के 6 बजे तक आपके लिए चंद प्यारे प्यारे गीत। तो हमारे रेडियो कार्यक्रमों की रूपरेखा झलकियाँ।
1: रेडियो मॉरिशस,
2: रेडियो मॉरिशस,
1: झलकियाँ,
2: झलकियाँ,
3: रेडियो मॉरिशस।
4: दिल की बहार, सुबह का नजराना, रेडियो मॉरिशस पर।

कदम से कदम आप हमारे साथ चल रहे हैं श्रोताओं, सुबह सवेरे 6 बजे से। चलिए, हम आपके शुक्रगुजार हैं। जिंदगी एक सुंदर यात्रा है जिसमें सुख और दुख दोनों साथ चलते हैं। हर अनुभव हमें कुछ नया सिखाता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा भी हमें प्राप्त होता है। सुबह का नजाना कार्यक्रम इस समय हम सजा रहे हैं रेडियो मॉरिशस पे। तो चलिए आपके लिए चंद सदाबहार गीत, अगली भेंट में मोहम्मद रफी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत जो है। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें फ़ोन कर रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस भेज रहे हैं, हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे।

बेकरार दिल का करार सिर्फ और सिर्फ रेडियो मॉरिशस पे। वैसे श्रोताओं, पुराने गीत बीते हुए सुनहरे पलों की याद दिलाते हैं। पुराने गीतों का जादू कभी कम नहीं होता। समय बदल जाता है, लेकिन इन गीतों की लोकप्रियता हमेशा बनी रहती है।

श्रुतियों पुराने गीत हर मौसम हर एहसास को खास बना देती है। हर गीत किसी न किसी कहानी को बयां करता है। इसी कारण लोग आज भी पुराने गीतों को बहुत ही प्रेम के साथ सुनती है। 7:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में। यह है सुबह का नजाना कार्यक्रम चंद सदाबहार गीत आपकी सेवा में।

0: श्रोताओं, हर इंसान अपनी किस्मत का जादूगर खुद है। जैसी सोच वैसी जादू की छड़ी। तो चलिए, गीतों का एक खूबसूरत सफ़र इसे हम आगे बढ़ाएंगे। ये है सुबह का नज़ाना कार्यक्रम आपकी सेवा में। तो चलिए, ये कार्यक्रम जो है 8 बजे तक चलने वाला है और अगली भेंट में लव इन टोक्यो फिल्म से लिया गया गीत है। ये सदाबहार गीत आप लता मंगेशकर की आवाज़ में सुन पाएंगे।
1: दिल की बहार सुबह का नजराना रेडियो मॉरिशस पर।

तो चलिए श्रोताओं, फिल्म गाइड का ये सदाबहार गीत आपको बेहद ही पसंद आया होगा। तो चलिए, कहते हैं ना, सच्ची जिंदगी वही है जिसमें प्रेम हो, प्यार हो, अपनापन हो, दूसरों के लिए सम्मान, रिश्तों की मिठास और सबसे अहम बात, अच्छे कर्म जीवन को खुशहाल बना देते हैं। तो चलिए श्रोताओं, 8 बजे भोजपुरी में आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के उस पार हम वापस आएंगे सुबह का नजराना कार्यक्रम के दूसरे हिस्से को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

8 बजेल बा पेश बा भोजपुरी समाचार। सब लोगन के नमस्ते। भोजपुरी समाचार में तो हर स्वागत बाते मुडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के रिपोर्ट मॉरिशस के अर्थव्यवस्था के लिए के गो समान निष्कर्ष पर पहुंचल बा। डूनर रिपोर्ट के अनुसार मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ता। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डर संगे बैठक के बाद प्रेस संगे ये बात कहलन। 4 मई के प्रकाशित मुडीज के प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देलन जेकर में कठिन वैश्विक परिस्थिति के बावजूद बजट सुधार में ठोस प्रगति के उल्लेख करल गल बा। रिपोर्ट में खास रूप से शागो सॉवरेंटी डिस्प्यूट समझौता के विफलता और मध्य पूर्व युद्ध से

0: अप्रैल मुद्रा स्फीति के दबाव के भी जिक्र आते। धनेश्वर दामरी बुल्लन के मॉरिशस अब भी दो प्रकार के जोखिम के प्रति संवेदनशील बनल बाते। काल नेशनल असेंबली के लंच रूम में बजट पूर्व सलाह मशवरा स्टेक होल्डर लोग संगे समाप्त हो गल, जहां कईन गो ट्रेड यूनियन ई परामर्श बैठक में शामिल होलन। जा हौज परी नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के प्रतिनिधि बैठक से वॉकआउट करलन। जा ई मंच से जुड़ल यूनियन बुलन जा कि बैठक के अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम के करे के चाहत, न कि जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी के। काल खाली ट्रेड यूनियन ही नहीं बल्कि युवा कलाकार और एनजीओ के प्रतिनिधि भी अपन बात रखलन जा। चर्चा में एनजीओ फंडिंग, खाद्य सुरक्षा, खाद्य संकट और लयिका खातिर एगो उच्च सचिवालय के स्थापना जैसन मुद्दा शामिल रहल। बैठक के अंत में धनेश्वर डामरी बुल्लन की सब प्रस्ताव के अध्ययन करल जाए और उकड़ा प्रधानमंत्री के सौंपल जाए। आवत चरण मंत्रालय संगे परामर्श रही। और सिनाल गवर्नमेंट स्कूल के 104 बरिस पूरा हो गल बा। डॉक्टर नवीन राम गुलाम के उपस्थिति में आयोजित सालगिरह समारोह में प्रधानमंत्री स्कूल के नवीनीकरण की घोषणा करलन। अपन भाषण में उस शिक्षा से जुड़ल कईन गो मुद्दा पर बात करलन और मॉरिशस में मुफ्त शिक्षा के महत्व के याद दिलैलन। प्रधानमंत्री ये भी बोलन कि कुछ लोग के पास डिग्री तबाती बकिर जरूरी नहीं है कि लोग के पास शिक्षा भी हुई। प्रधानमंत्री कोहोस के देवल गल 675 मिलियन रुपया के ऋण के भी जिक्र करलन। उनकर अनुसार ये ऋण सरकारी जमीन के गारंटी पर देवल गरहल और उस समय के प्रधानमंत्री प्रवीण जगनाथ द्वारा मंजूर करल गरहल। वो आरोप लगेलन कि कंपनी दिवालिया घोषित होला से अक्ते ये ऋण वापस नहीं करलक। प्रधानमंत्री भी स्वीकार करलन कि सरकार के कुछ फैसला अलोकप्रिय हो सके, बकेर उकर उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार आने के है। उनकर अनुसार बिना कोनो रणनीति से पैसा बांटे के जैसे कि गल शासन में होल रहल, आज उकर परिणाम देश के भुगते के पड़ेता। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम बोलन कि गल शासन के क्षति के ठीक करे खातिर एगो नवा जनादेश के आवश्यकता रही। जबकि शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ऑसिनाल गवर्नमेंट स्कूल के प्रगति की सराहना करलन। वो बोलन कि स्कूल के सफलता दर 44% से बढ़ के 77% हो गल बा। वो उम्मीद जतैलन कि ई स्कूल एगो आदर्श बनी और अपन प्रगति जारी रखी। और सेनाल गवर्नमेंट स्कूल के हेडमिस्ट्रेस शारदा नागा बोलन की शैक्षणिक परिणाम से बढ़ के स्कूल पर्यावरण संरक्षण और नागरिक जिम्मेदारी पर भी जोर देवता। स्कूल में सफाई खातिर बारिश के जल संचयन प्रणाली यानी कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्थापित करल गलबा। साथ ही छात्र लोग रिसाइकलिंग कार्यक्रम में सक्रिय रूप से भाग ले लन जा। उनका अनुसार खाली पढ़ाई ही नहीं बल्कि प्रकृति के रक्षा करे के भी उतना ही महत्व देवल जाला। विपक्ष नेता जूली शोंगा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन और विदेशी आपूर्तिकर्ता सहारा एनर्जी रिसोर्स लिमिटेड के बीच कच्चा तेल आपूर्ति समझौता पर सवाल उठैले हमन। काल गो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो ई कॉन्ट्रैक्ट के और एक बरिस खातिर दोहराइला जाइला के शर्त पर चिंता जतैलन। साथ ही लगभग 1 बिलियन रुपया के प्रीमियम राशि के भुगतान के लिए के भी सवाल करलन। उधर वाणिज्य मंत्री माइकल सिकियन ई आरोप के खारिज कर दिलन। वो बोलन कि जल्द ही एगो प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके स्थिति पर स्पष्ट करण देवल जाए। उनकर अनुसार प्रीमियम राशि में कोनो बदलाव नहीं आने लगल बा। बोबासे के जेल में कुछ ही दिन के भीतर जेफ अक्सल पेगिन के मौत के बाद एगो दूसर का मामला सामने आल। इस बार 32 बरिस के जियान सोमी के मौत सिर में फ्रैक्चर के कारण होल, जैसा कि पुलिस के मुख्य फोरेंसिक डॉक्टर सुदेश कुमार गंगाधीन द्वारा करल गल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बतावल गल बा। अपन रिपोर्ट में वो बोलन कि गहन जांच करे के चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भी ये मामला पर नजर रखता। हाल ही में बोबासे जेल में होल दुगो मौत के मामला में इस चरण पर कोनो प्रकार के दुर्व्यवहार के निष्कर्ष पर पहुँचे खातिर कोनो ठोस तत्व उपलब्ध नहीं बाते। ये बात नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के अध्यक्ष सत्यजीत बुलेल बुलन उ अपील करलन कि जांच जारी रहला बजी कोनो प्रकार के अटकल से बचे के चाहिए। पूर्व डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूशन ये भी याद दिलैलन कि नेशनल प्रिवेंटिव मैकेनिज्म डिवीजन जिनकी टोचा के खिलाफ कन्वेंशन के तहत स्थापित करल गलबा के उद्देश्य कैदी के अधिकार के रक्षा करे के और कोनो भी अमानवीय या अपमानजनक व्यवहार के रोके के हम। कैनाबिस पर नाडक के टेक्निकल वर्किंग ग्रुप के बैठक काठमांडू के गोल्ड क्रस्ट होटल में का लगावल गल। बैठक में एनजीओ, सरकारी प्रतिनिधि और विशेषज्ञ लोग शामिल होलन जा। बरहल सिंथेटिक ड्रग्स के बीच मौजूदा नीति पर फिर से विचार करे के आवश्यकता पर जोर देवल गल। विशेषज्ञ लोग स्वास्थ्य, अपराध, अर्थव्यवस्था और औद्योगिक संभावना पर विचार साझा करलन जा। अब जनता से सुझाव ले खातिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और क्षेत्रीय परामर्श हुई। अंतिम रिपोर्ट नेशनल ड्रग कंट्रोल कमीशन के सौंपल जाए जिनकी आगे की नीति निर्धारित करी। मॉरिशस में कीटनाशक के उपाय सार्वजनिक स्वास्थ्य और कृषि उत्पादन से जुड़ल एगो बड़ा मुद्दा बनल बाते। सरकार अब अपन कानूनी ढांचा के और मजबूत करे के दिशा में कदम उठावता। पोटली में कल आयोजित एगो कार्यशाला के बाद यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स एक्ट के तहत तीन गुनावा नियम के अंतिम रूप दे के प्रक्रिया जारी बाती। बैठक में सरकारी अधिकारी, किसान और विशेषज्ञ शामिल होलन जा। उद्देश्य रहल कृषि रसायन के उपयोग, भंडारण और निपटान के जस्ती सख्ती से नियंत्रित करे के साथ ही खाद्य सुरक्षा के मजबूत करे के। और दूसरे देश के समाचार में चीन बुध के ईरान से आग्रह कर रहा कि वो जितना जल्दी हो सके होमो स्ट्रेट के फिर से खोल दे के। साथ ही ईरान के वो प्रतिबद्धता की सराहना कर लें कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करी बकेर परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल खातिर उकर अधिकार के पैरवी भी कर रन। युद्ध समाप्त करे खातिर ट्रंप के प्रमुख मांग है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित नहीं करी। एक संगे भोजपुरी समाचार समाप्त भल। आप लोग के ध्यान खातिर बहुत ही धन्यवाद।
1: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
0: शोक समाचार सुना जा। बासन रोड काठोबोन में 75 बरिस के श्वासन कैदों के मरियम बीबी जगू, मरियम बीबी जगू पैदाइश नाम जीवन जिनकरा लोग मरियम से जानत रहन जा इंतकाल कर गल हवन। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनकर मकान बासन रोड काठोबोन से उठा के फिनिक्स दफनाए खातिर फिनिक्स के कब्रिस्तान ले जाल जाए। बुआ दुआजो रोड प्लेनमानियों में 68 बरिस के स्वासौतवीतों के श्री शिवराज नायको, श्री शिवराज नायको जिनकरा लोग कवि से जानत रहन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के आज सांझ के 3 बजे इनकर माँ श्रीमती शांति नायको के मकान बुआ दुआजो रोड प्लेनमानियों से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लेनमानियों के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। जगाना गली ग्रीष्म फ्लाक में 83 बरिस के काथवाजों के श्रीमती फुलवंती दुर्गा, श्रीमती फुलवंती दुर्गा पैदाइश नाम सुकन जिनकरा लोग फुलवंती से जानत रहन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन की 11 बजे इनकर बेटा आनंद दुर्गा के मकान जगाना रोड ग्रीष्म फ्लाक से उठा के दाह संस्कार खातिर बुशों के शमशान भूमि ले जाल जाए। बादामी रोड कालबास में 76 बरिस के श्वासन सेजों के श्री धनीलाल घनश्याम, श्री धनीलाल घनश्याम जिनकरा लोग सुरेश से जानत रहन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12:30 इनकर मकान बादामी रोड कालबास से उठा के दाह संस्कार खातिर बुआ मौसों के शमशान भूमि ले जाल जाए। आवेन्यू पालमिये तेरासों पॉइंट साबल में 67 बरिस के श्वासन सेतों के श्रीमती कुमारी शास्त्री कुपुसामी, कुमारी शास्त्री कुपुसामी जिनकरा लोग पामेला से जानत रहन जा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी जनबाते आज दिन के 12:30 इनकर बहनोई शांदिरन परासुरामेन के मकान आविन्यू पालमिये तेरासों पॉइंट साबल से उठा के दास अंतिम संस्कार खातिर शेबेल के शमशान भूमि ले जाल जाए। रोट रॉयल प्लेन दे रोश में 55 बरिस के सेकंड सैकों के श्री राजकुमार रामेसर, श्री राजकुमार रामेसर जिनका रालोक दीपक से जानत रलंजा, जिनकी चीफ इंस्पेक्टर, चीफ पुलिस इंस्पेक्टर रहलन और एनआईयू विभाग में काम करत रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर पत्नी श्रीमती सुलक्षणा रामेसर के मकान होटवायाल प्लेन दे रोश से उठा के दाह संस्कार खातिर प्लेन दे रोश के ही शमशान भूमि ले जाल जाए। रोश रोड पोब्लॉ फ्लाक में 56 बरिस के सेकंड सीजों के श्रीमती देवरानी सी गुलाम, श्रीमती देवरानी सी गुलाम जिनका रालोक सुनीता से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बज के आधान कर बेटी अश्वेरा सिंह के मकान होश रोड पोब्लॉ फ्लाक से उठा के दाह संस्कार खातिर कौदे मास्क के शमशान भूमि ले जाल जाए। रॉयल रोड मोटाए ओगी मोका में 78 बरिस के श्वासन जिजवीतों के श्री पूरन डुबा, श्री पूरन डुबा जिनकी अक्ति मोटाए ओगी गवर्नमेंट स्कूल के केयरटेकर रहलन के मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बज के आधा इनकर मकान रॉयल रोड मोटाए ओगी मोका से उठा के दाह संस्कार खातिर सियाकोस्तों सैपिया के शमशान भूमि ले जाल जाए। स्कूल लेन लाविनिया सैपिया में 47 बरिस के कारण से तो के श्री खेमराज पेयटूब, श्री खेमराज पेयटूब जिनका रालोक विशाल से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गल बा। अर्थी आज दिन के 10 बजे इनकर माँ श्रीमती ललिता पेयटूब के मकान स्कूल लेन लाविनिया सैपिया से उठा के दाह संस्कार खातिर सियाकोस्तों सैपिया के शमशान भूमि ले जाल जाए। नेहरू लेन लावाचुआ में 78 बरिस के श्वासन जिजवीतों के श्रीमती वेदवंती चतरधारी, श्रीमती वेदवंती चतरधारी पैदाशी नाम बंधु जिनका रालोक चंद्रावती से जानत रलिंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज फजीरे 9 बजे इनकर मकान नेहरू लेन लावाचुआ से उठा के दाह संस्कार खातिर में जिन कौरे मास्क के शमशान भूमि ले जाल जाए। ऐ पास खाली ट्रैफल रोज हिल में 50 बरिस के सैकौतों के श्रीमती रोशनी महादेव, श्रीमती रोशनी महादेव जिनका रालोक मैडम सुतेल्फिन से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर मकान ऐ पास खाली ट्रैफल रोज हिल से उठा के दाह संस्कार खातिर गांधी कुर्मी, गांधी पालमा काठबोन के शमशान भूमि ले जाल जाए। अविनी उस्मान सैंपोल में 64 बरिस के श्वासन कातों के श्री नारायण दत्त माओवा, श्री नारायण दत्त माओवा जिनका रालोक बोबी से जानत रलंजा की मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 12 बजे इनकर पत्नी श्रीमती अमृता देवी माओवा के मकान अविनी उस्मान सैंपोल से उठा के दाह संस्कार खातिर आले ब्रियों के शमशान भूमि ले जाल जाए। शिवाला गली पचित खत खत में 78 बरिस के श्वासन जिजवीतों के श्री हरिचंद राम किशोर, श्री हरिचंद राम किशोर जिनका रालोक टोंचान से जानत रलिंजा के मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बजे इनकर पत्नी श्रीमती गायत्री राम किशोर के मकान शिवाला गली पचित खत खत से उठा के दाह संस्कार खातिर लावाचुआ के शमशान भूमि ले जाल जाए। और वी रिजर्वा गली घावे में 80 बरिस के कातोवैंजों के श्रीमती पुष्मावती गोपी, श्रीमती पुष्मावती गोपी पैदाइशी नाम निहोल जिनके मृत्यु हो गलबा। अर्थी आज दिन के 2 बज के आधा इनकर मकान रिजर्वा गली घावे से उठा के अंतिम संस्कार खातिर कापमाले के शमशान भूमि ले जाल जाए। शोक में डूबल इस सब परिवार लोगन के प्रति हमने के दिली हमदर्दी बातें।

0: बर्ड्स, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: 8:20 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। श्रोताओं, आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से ये विज्ञप्ति सुनिए। बोबासा के रहने वाले निवासियों को, जिनमें है एवेन्यू पेरावाल, एवेन्यू डिसेन, एवेन्यू आबे अगेल, एवेन्यू जे बोवेन, रू फ्रांकोआ, अपार्टमेंट बेल कांटो और आसपास की गलियों के रहने वाले निवासियों को सूचित किया जाता है कि गुरुवार 7 मई 2026 को सुबह 8:30 से लेकर दोपहर के 3:30 के बीच बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। इस असुविधा के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है और बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई सामान्य पर लाई जाएगी। तो श्रोताओं, अभी आप सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तरफ से एक विज्ञप्ति सुन रहे थे। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुबह का नजारा कार्यक्रम के दूसरे हिस्से में। आप सभी सुनने वालों का हार्दिक अभिवादन करते हैं। तो चलिए, इस समय से लेकर 8:50 पर हम आपके लाए हैं चंद द्वैत गाने और कार्यक्रम की पहली द्वैत में फिल्म ताल का ये प्यारा सा गीत आप सुन सकेंगे। अनुराधा श्रीराम और साथ में है सुजाता की आवाज़ों में।

इश्क बिना क्या जीना यारो, पंक्ति प्रेम के महत्व को बहुत ही सरल ढंग से सुंदर तरीके से व्यक्त किया गया है। इस गीत का संगीत और गायकी हमें एक अलग ही एहसास में ले जाती है। तो चलिए, इस गीत के जरिए हमें पता चलता है कि प्यार के बिना जिंदगी अधूरी है। तो श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 8 बज चुके हैं, जी हाँ, 8:30 बज चुके हैं, और इस समय हम चला रहे हैं चंद डुएट्स गाने, और अगली डुएट की ओर हम बढ़ेंगे किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है हाथी मेरे साथी।

तो चलिए श्रोताओ, 70s का वाइब आपके लिए। इस गाने की खासियत ये है कि समय के साथ पुराना नहीं पड़ता।

अखियों की झड़ोखों से एक बेहद ही भावुक और दिल को छू लेने वाली हिंदी फिल्म है। ये फिल्म सादगी, प्रेम और रिश्तों की खूबसूरती को बहुत ही शांत और मधुर अंदाज में प्रस्तुत करती है। फिल्म की कहानी दो दिलों के मासूम प्यार और जीवन की भावनात्मक सच्चाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। तो चलिए श्रोताओं, इस समय आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेडियो मॉरिशस है, मीडियम वेव 119 किलोहर्ट्ज़ पे हमारा प्रसारण हो रहा है। तो चलिए, ये अगला गीत जो है फिल्म अजनबी से लिया गया। ये मूवी 1974 की है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की मीठी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत फिल्म अजनबी से लिया गया। वैसे फिल्म अजनबी ये संदेश देती है, हर चमत्कारी चीज़ पर भरोसा करना सही नहीं होता, क्योंकि कभी कभी अपने ही अजनबी बन जाती है। तो चलिए श्रोताओं, एक अंतिम डुएट आपके लिए उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाज़ों में। फिल्म का नाम है कसूर।

0: छुट्टियाओ फिल्म कसूर साल 2001 की बनी मूवी एक ट्रीरा रोमांटिक मूवी रही जो काफ़ी हिट रहे और आज भी उनके गाने लोग बेहद ही पसंद करते हैं। तो चलिए 8:50 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, हम बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर हमारी धरोहर किरण जानकी की प्रस्तुति में।
1: हमारी धरोहर किरण जानकी के साथ। हमारी धरोहर
2: नमस्ते, हमारी धरोहर में आपके स्वागत बा। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिवस 7 मई के मनावल जाला और रविंद्रनाथ टैगोर अपन पीछे जो विरासत छोड़ के गलहवन खाली भारत खातिर नहीं बल्कि दुनिया भर खातिर, उ वजह से उनकर जयंती दुनिया भर में मनावल जाला। रविंद्रनाथ टैगोर के जन्मदिन पर उनकर जीवन से जुड़ल कुछ महत्वपूर्ण और रोचक बात पर ध्यान देव जा। रविंद्रनाथ टैगोर भारतीय राष्ट्रगान के रचना करले हवन और संगीत साहित्य सम्राट रविंद्रनाथ टैगोर के उपलब्धि कमती नहीं बा। रविंद्रनाथ टैगोर अपन जीवन में 2200 से भी जस्ती गीत लिखले हवन। उनकर जीवन से ऐसन कितने बात बा जो बहुत कोई नहीं जानेला। 7 मई 1861 के कोलकाता में देवेंद्रनाथ टैगोर और शारदा देवी के घरे एगो लड़का जन्म लेलक जेकर नाम रखल गल रविंद्रनाथ। उनकरा प्यार से बचपन में रवि बोलल जात रहल। 13 भाई बहिन में रविंद्रनाथ सबसे छोटा लड़का रहल जेकर जीवन साहित्यिक माहौल में गुजरल। यही खातिर साहित्य से उनकर लगाव बहुत रहल। रविंद्रनाथ टैगोर बैरिस्टर बने चाहत रहलन। 1878 में वो इंग्लैंड के ब्रिजस्टोन पब्लिक स्कूल में पढ़ाई शुरू करलन। फिर लंदन के यूनिवर्सिटी में कानून के पढ़ाई करके 1880 में वापस अलन। बहुमुखी प्रतिभा रहल उनकर। 8 बरिस के उम्र से ही वो कविता लिखे के शुरू करलन। 16 बरिस में वो भानु सिंह कविता संग्रह जारी रखलन और वो भारत के ही नहीं बल्कि एशिया के पहला ऐसा व्यक्ति रहलन जिनकरा साहित्य खातिर 1913 में अपन रचना गीतांजलि खातिर नोबेल पुरस्कार से सम्मानित करल गल। आज भी रविंद्र संगीत बांग्ला संस्कृति के अभिन्न अंग मानल जाला। रविंद्रनाथ टैगोर एगो प्रतिष्ठित कवि, नाटककार, निबंधकार समेत साहित्य के कितने विधा में निपुण हवन। टैगोर दुनिया के शायद एकमात्र कवि हवन जिनकर रचना के 2 गो देश अपन राष्ट्रगान बनेले हवन सा। भारत के राष्ट्रगान जनगणमन और बांग्लादेश के राष्ट्रगान आमार सोनाट बांग्ला, टैगोर के ही ई दोनों रचना है। बोलल जाला कि श्रीलंका के राष्ट्रगान के एगो हिस्सा भी इनकर कविता से ही प्रेरित होलबा। टैगोर पहला गैर यूरोपीय हवन जिनकरा साहित्य खातिर नोबेल पुरस्कार मिलल बा। इनकरा ब्रिटिश सरकार नाइटहुड यानी स के उपाधि से भी सम्मानित करले रहल 1919 में और जलियांवाला बाग कांड के बाद टैगोर ई उपाधि वापस लौटा दिलन। जलियांवाला बाग के बारे में तो आप सुनले ही रला, कुछ समय पहले एकर पर

0: हमारी धरोहर।
1: आठ बजकर 55 मिनट हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में। ठीक 9 बजे आप समाचार सुन सकेंगे। श्रोताओं, समाचारों के उस पार आपके लिए आज की चर्चा कार्यक्रम अनुराधा की प्रस्तुति में। तो वापस मिलेंगे 10 बजे भक्ति धारा कार्यक्रम को लेकर। आप सभी को हम कहेंगे शुभ दिवस।

0: समय सुबह के ठीक 9 बजे हैं। डीजे करुणा से समाचार सुनिए। नमस्कार करुणा।
1: नमस्कार अनुराधा, सभी को नमस्कार। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्टें मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंचती हैं। दोनों रिपोर्टों के अनुसार मॉरिशस सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहा है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डर के साथ बैठक के बाद प्रेस से ये बात कही। वे 4 मई को प्रकाशित मूडीज की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दे रहे थे, जिसमें कठिन वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद बजट सुधार में ठोस प्रगति का उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट में विशेष रूप से शागो सवरेंटी डिस्प्यूट समझौते की विफलता, मध्यपूर्व युद्ध से जुड़ी मुद्रास्फीति के दबाव का भी जिक्र है। धनेश्वर दामरी ने कहा कि मॉरिशस अब भी 2 प्रकार के जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है। स्टेक होल्डरों के साथ बजट पूर्व सलाह मशवरे समाप्त हुए, जहां कई ट्रेड यूनियन इन परामर्श बैठकों में शामिल हुए।

0: वहीं नेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के प्रतिनिधियों ने बैठक से वॉकआउट किया। इस मंच से जुड़े यूनियनों का कहना था कि बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम को करनी चाहिए थी, न कि जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर डामरी को। कल सिर्फ यूनियन ही नहीं बल्कि युवाओं, कलाकारों और एनजीओज के प्रतिनिधियों ने भी अपनी बात सामने रखी। चर्चा में एनजीओ फंडिंग, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा संकट और बच्चों के लिए एक उच्च सचिवालय की स्थापना जैसे मुद्दे शामिल रहे। बैठक के अंत में धनेश्वर डामरे ने कहा कि सभी प्रस्तावों का अध्ययन किया जाएगा और उन्हें प्रधानमंत्री को सौंपा जाएगा। अगला चरण मंत्रालयों के साथ परामर्श का होगा। और सिनाल गवर्नमेंट स्कूल के 1400 वर्ष पूरे हो गए हैं। डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में आयोजित सालगिरह समारोह में प्रधानमंत्री ने स्कूल के नवीनीकरण की घोषणा की। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और मॉरिशस में मुफ्त शिक्षा के महत्व को याद दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के पास डिग्री तो होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पास शिक्षा भी हो। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार के कुछ फैसले अलोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। उनके अनुसार बिना किसी रणनीति के पैसे बांटना, जैसे कि पिछले शासन में हुआ, आज उसके परिणाम देश को भुगतने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का कहना है कि पिछले शासन की क्षति को ठीक करने के लिए एक नए जनादेश की आवश्यकता होगी। जबकि शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने भी ऑसिनल गवर्नमेंट स्कूल की प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि स्कूल की सफलता दर 44% से बढ़कर 77% हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये स्कूल एक आदर्श बनेगा और अपनी प्रगति जारी रखेगा। और विदेशी स्तर पर चीन ने बुधवार को ईरान से आग्रह किया कि वो जितनी जल्दी हो सके होर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोल दे। साथ ही ईरान की उस प्रतिबद्धता की सराहना की कि वो परमाणु हथियार विकसित नहीं करेगा, लेकिन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए उसके अधिकार की पैरवी भी की। युद्ध समाप्त करने के लिए ट्रंप की प्रमुख मांग है कि ईरान परमाणु हथियार विकसित न करे। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद। नमस्कार।
1: News on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

0: आज की चर्चा।
1: सभी को नमस्कार और आदाब। आज की चर्चा, इस प्रोग्राम में आप सबों का हार्दिक स्वागत हम करते हैं और बेशक ये प्रोग्राम चलेगा दिन के 10 बजे तक। और आज हमारे साथ हैं टेक्निक पर फैजन, हमारी जो प्रोडक्शन सहायिका हैं उरुसा, और ये प्रोग्राम रितेश महाबिया द्वारा निर्मित किया गया है और ये प्रोग्राम आप तक पहुंचा रहे हैं रेडियो और टेलीविज़न के ज़रिए। श्रोताओं और दर्शकन, आपको ये जानना है कि आज किस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वैसे तो आज की चर्चा का विषय है प्लास्टिक प्रदूषण का रोडमैप। आप में से कितनों को याद होगा कि इस विषय को लेकर के शायद 23 अप्रैल को हमने इस पर चर्चा की थी, और आज इस प्रोग्राम यानी कि आज के चर्चा प्रोग्राम को हम जारी रखेंगे इसी विषय को लेकर, यानी कि एक पार्ट टू, एक दूसरे भाग में हम ये प्रोग्राम जारी रखेंगे। प्लास्टिक आज हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा तो बन चुका है, लेकिन यही सुविधा अब हमारे पर्यावरण के लिए एक गंभीर खतरा बन गई है। समुद्रों में बढ़ता प्लास्टिक कचरा, जानवरों की मौत और स्वास्थ्य पर असर, ये सभी चिंताजनक संकेत हैं। और पर्यावरण मंत्रालय से आए हुए हमारे दो जाने माने अतिथि आज हैं स्टूडियो में, अभी आप देख भी सकते हैं। और डॉक्टर राजेंद्र कुमार फुलमन जी और श्री किरण कुमार बलक जी, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं। नमस्कार, और हमारे इस प्रोग्राम में भाग लेने के लिए, अपना कीमती समय निकाल कर इस प्रोग्राम में आने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हम बोल ली जा कि ये हमने के प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है, तो हाँ, तो हमने के पिछला प्रोग्राम में बात कर ली जा प्लास्टिक के उपयोग का है चाहेला घटाए के, तो सब हमने के श्रोता दर्शक लोग खातिर एगो रिकैप करें। डॉक्टर फुलमान जी,
2: धन्यवाद। सब श्रोता लोग के नमस्कार। जैसे कि तू बोला कुमार में कि रिकैप कर दे जा, तो हमने के जैसे बोला कि हमने के यहाँ प्लास्टिक जो बा हमने के जीवन में कुमार जया नहीं सकब जा रहे बिन प्लास्टिक के, तो चाहना जाने के काहे एक इतना उपयोग होला है। और दिब्बत है कैसे गलहला बजारी जरा सीखते हैं, देखबा फॉर एग्जाम्पल सीखते हैं मेजिकाल में, तो कैसे देखबा सेरेंग यूटिलाइज कैला जा, एक रीजन काहे आगे तो हमने यूटिलाइज करते नहीं चाह बुतेई के सेरेंग, अब तो यूटिलाइज होला जब से हाई प्रॉब्लम कोविड आल बा, तो जस्टिक मजा स्ट्रिक्ट रहला सर जिसमें कैसे ओके बोला सर सिंगल यूज यानी कि एक ही हला सेविंग करके सकबा ओके बिग डे, तो ईगो एगो ऐप होता हाँ पर उसकी ईजैन करके चाहे ला करेगी हाई सब चीज वह। तो देखबा जब से एक बार जब प्लास्टिक इन्वेंटे होल काहे इन्वेंटे कर लें जा साइंटिस्ट लोग, जिसमें कि आदमी की हमने की सुविधा बनाई, यानी कि देखबा आगे हमने तब बुते थी सेवे करते नहीं जा हाउ जब जब बासों गाजेज किने बुटीक में तब बुते रहल आगे, तो वो सकी एक भाई रहल दिजम उ सकी ठोकर लग के फूट जाए हाँ, और थ्वाजियम को मजे उतना अब फूट जाए तो अब
1: मतलब हाँ, के
2: चोट लगी इमें हाँ, और तब थोड़ा भी हानि हो जाए हाँ वो खातिन, तो क्यों हम प्लास्टिक का इलाज बूते प्लास्टिक से हाई गो प्रॉब्लम है। दिजम दिख आगे हम इतने टॉन्स बाजार लेवर तो नहीं जाना, तो अब जस्ती कौन चीज सक प्लास्टिक से भी खेला सक प्लास्टिक के कैसे मजे बुलब जाए जेका सेवी कर लेता वो प्लोई करके सब पुष में डाल देता निक मजे कैसे मजे उनको ब्रांड बोला सर नहीं सक नहीं रहेला, मैं सकबा के लेके इस्तेमाल करे जहाँ जेबा सकबा लेके मजे के इस्तेमाल माल करी हाँ। और जब ठीक कर ले बता समय धो के फिर से सब सेवी करी, तो ई खातिन मजे हमने की सुविधा खातिन को मजे बोलिन जा ढेर सिक्तिया में हेल गबा दिखा गल में गलला बोलिन सा फॉर एग्जांपल सिक्तिया लिबा ऑटोमोबाइल ऑटोमोबाइल यानी कि जब जहाँ व्हीकल बनाई ला जा फॉर एग्जांपल वहाँ पर ओकर बुफो देखबा अब आज प्लास्टिक हो गलबा बहुत चीज को मजे रिप्लेस होता है, मैम देखबा अवियो में कोनो पहुंची प्लास्टिक से कोई रेम्प्लेस कर दिए वन सका है बस कि ओके बोले सा लाइट वेट लाइट वेट सा कि कमती
1: वजन
2: वजन कमती है और जब वह कमती वजन से भी करब तो कमती और जो फ्यूल बा वो भी कमती से भी
1: हाँ।
2: तब तो देखा जाए एक सुविधा के बैठे नहीं जा तब जब सुविधा जब हो गल तब अनी जा कौन कौन प्रॉब्लम होला प्लास्टिक से काहे के मजे आज के विषय जिससे किते करते हैं जा प्लास्टिक पोल्यूशन प्लास्टिक हाँ। तो हमारे भाई किरण एक पर रोशनी डालिए
1: हाँ भाई बलक जी तनी बताओ
0: तो प्लास्टिक के सबसे बड़ा समस्या कि प्रॉब्लम है कि प्लास्टिक सड़ेला नहीं
1: हाँ
0: और वो तो बहुत बहुत वर्ष लेवेला डिग्रेडे हो के बहुत बहुत वर्ष फॉर एग्जाम्पल लेब एक बुते प्लास्टिक तो पानी पी लेब तो पी के जब अगर पुबे में देख बिग देबा तो ठीक बा लेकिन जब समस्या हो जब वो बुझे प्लास्टिक अपने लॉबुलमा में जाए तो वो एक बहुत बहुत समय लेवल दिखा दे फॉर एग्जाम्पल 500 वर्ष लेवल दिखा दे हो के एक दूसरा एग्जाम्पल देवा पाइप पाइप जब पीती पाइप है तो एक जी किन पी ले दो मिनट में तीन मिनट में तो उसमें वर्मा में बिक देव तो वो तो 200 वर्ष
1: ले कंपोजे
0: हो के एक टेक अवे भी फॉर एग्जाम्पल 500 लेवेला वर्ष डिकम्पोजे हुए के तो ऐसे जब सब वर्मा में जाए अक्यूमिनेट हो जाए तो कौन चीज़ हो पोमेंस आफे एगो आइसो बन जाए जैसे बोल
1: रहे
0: टूरिस्ट में कितना आवेला हमने के देश में तो ऐसे नहीं अच्छा है ऐसे जहाँ पे जाए तब प्लास्टिक के ऐसे पोल्यूशन देख
1: कि हमने अपन धरती के चाहे रखिए
0: और दूसरा क्या कौन चीज हो फॉर एग्जाम्पल टिकवे में टिकवे आगे तो टिकवे प्लास्टिक रह टिकवे में एक खाना खाइए तब थोड़ा का खाना बच गल तो लॉ वर्मा में बिक देव तो कौन चीज़ हो तो कुत्ता चूहा सब आश्चर्य हो और उसे कौन चीज़ हो तो मलाजी पैदा करी ओके और एक दूसरा एक तीसरा चीज़ कौन चीज़ है जब प्लास्टिक तो पानी चीनी करेला अब जैसे बिक देव तो वर्षा हो पानी अकेले तो
1: मुझे
0: पोलिब्रेशन हो ऐसे बहुत बहुत तरीके अब एक चीज होला जब प्लास्टिक जब डिकम्पोज होला तो पीटी पीटी टूटेला पीटी पीटी टूट के तो उसके बोलते हैं माइक्रो प्लास्टिक या तो नानो प्लास्टिक जो आंख से डिफिसिल तो तब हमने अब फॉर एग्जाम्पल लेयर रेस्पिरेटर था तो उसमें नैनो प्लास्टिक है तो रेस्पिरेटर था हम सब हमने के
1: शरीर में जाता
0: अब कुछ खाइब तो फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जला तब जब वो नदी में जाए फॉर एग्जाम्पल नदी से जब लामे में जाए तब मछलियाँ लोग खाए थे तो हमने वो मछली के खाप से तो एज एक हमने भी प्लास्टिक खाते सर एक कोजे बना जैसे करनी वैसे भरनी तो आप कौन सी कर ला एक प्लास्टिक एनवायरनमेंट में इरेस्पॉन्सिबल से दिखलेगा और भगवान कौन सी वो ही प्लास्टिक अब तू भी खाओ ये प्रॉब्लम है और जाने ना आगे अब तो इतना समस्या नहीं है आगे तो जब कमर्शियल दी जैसे बोल रहा मिला कि इस मौके जी की पासी हुई तो नहीं पासी हुई तो कौन सी गलत
1: ऐसा शिकायत ढेर मिला बा कि जिन जिन दिन में उन लोग के चाहे कचरा उठावे के थे उ दिन वा नहीं आवे लन जा और कबो कबो ये भी मिलल शिकायत के उन जो डस्टबिन रहेला उन लोग लेके फेंक देवेला जल्दी टूट जाला अब उन लोग के जो मतलब हमनी के पास नहीं बा अब डस्टबिन की कमी बढ़ गल बा
0: तो कुछ करब सर तो एगो सालते के काम जो पास में होल पीछे जाके सब सालते के जलावत सर तो उसमें तो अगर प्लास्टिक के पोजी है तो ये जलावत है तो उसमें गैस जो टॉक्सिक गैस है उसके नाम है फ्यूरान एन डाइऑक्सिन तो उसे जब रेस्पिरे कर तो कौन से पैदा करेगा देख ला ना तो इतना बहुत बहुत समस्या है फॉर एग्जाम्पल जाने ला तो एक पोलवी में एक 5-6 साल पहले तो एक फ्लडिंग जहाँ पे लिचित करने से इन्वेस्टिगेशन करने से तो देखल था कि रिस्पॉन्सिबल प्लास्टिक सब प्लास्टिक सब दृह के भूसे कर दिलक तब इसी से ऐसे सब पानी सगरो पर गल तब इसी तो देखे इसे बहुत बहुत समस्या हो रहा
1: तो प्लास्टिक के सामान भाई फुलमान जी था उसका वस्तु जो खास करके मेडिकल जो नबी बोलो मेडिकल की सेवी होला तो एक डिस्पोजल कैसे होला कहाँ होला
2: डिस्पोजल होला इंसिनरेशन से डिस्पोजल सर्टू बन जितना दिख बा मेडिकल वेस्ट है लापी पर जितन लो के हॉस्पिटल में इंसिनरेशन है तो ऊपर में से ला इंसिनरी करेंगे इंसिनरेशन का एक मजे ने सब जाके ओके हमने के तो एक गो सेंट एनफुइसमेंट बा यानी कि मार्शिकोस बा वहाँ सब चीज जाके दलाला तो वहाँ कहीं जाके दाइला जा बस कि है एक गो प्रमिस अफेयर एक जो स्पेस मजा मेडिकल के जितना वेस्ट है उकर कूड़ा करकट मेडिकल है तो इस की कॉन्टामिने कर दे तो हमने क्या जे ओके हमने के सेंट एनफुइसमेंट डाल अब जा तो वो देजा कॉन्टामिने बा तो उस की हमने के जो पानी जो नेती बा सब कॉन्टामिने करे तो एक कटन चाहला ओके इंसिनरेशन करेंगे यानी कि जराई के और ओकर सर्टेन टेम्परेचर है जो सकी हो जो जितना लिफ्ट कैसे हार्मफुल बा सकी ओके न्यूट्रलाइज करे ओके न्यूट्रलाइज करे मैम कैसे ताले हुआ हमने हमारे भाई बोलन फ्यूरान और डाइऑक्सिन जो गैस निकलेला ओकर भी कंट्रोल होला हाउ सब देख बता सॉरी देख बता दूसरे पे फॉर एग्जाम्पल सिंगापुर ले बा सिंगापुर उ लोग हमने के जितना मजे कूड़ा करकट बा मजे उ लोग के कूड़ा करकट मजे जैसे सिक मजे सेक सकप से बोली यहाँ कि सुखल कहे पास कि उ लोग अपन बायोडिग्रेडेबल सेपारे कर दे बोला जब बायोडिग्रेडेबल देखा मोरिस में भी सकी से हो बायोडिग्रेडेबल के सेपारे कर दे बा अब जैसे हमने के देख बा कूड़ा करकट हमने के जितना बा आप 60% एक में डेजा जो

0: দেশে বিউ দেখা দা বা ইয়ানি কি দেখা কাছে সর জালা পক জব দেখা লিগিং কে ছিলকা বা ধর লাকু মিনি টয়াই করবা জিতনাক মাঝে ঘাস বা ইতি বা ই সব কামিও সালতে মে ডাল দিলা যা মে হাইলা সে সকবক মাঝে কম্পোস্ট বানাই আপি প্রি 60% দি কিলা যা সকবক যা একর সে নিকাল দি তাব যা হল দে রিজন 40% তা উচ কে বলে সা সুখল সুখল কোরা করকত তা ওকে সিঙ্গাপুর ওকে জরাবিলা জানি কি incinération mais d'ailleurs c'est barak c'est amni que c'est là bhai bolan khali pad dal de banai lo que condition ha contrôlé car que pas si contrôlé différent que c'est que tu bolan au car gaz nickel la gaz et au car traitement bio là et c'est nikaba khali di kal ke bike même au car jabo panique ma je dikli et jono que botsal dikli dikli au car bi traitement voilà tu que ma je sap que di sub consideration le que tab hai se traitement hola ta singapour e kar mein aage ba aur log ego ego lil apal singapour bhi hum dit uta jaisi mori se chota ta okar ego lil ba ego lil ba wahan par jahan par sab apan ko kar kar bida ke la wahan par ta wahan par jarawe len ja dekha samajh la kaisi situation
1: ta ye jo disposal de nabi puch li hai medical saman ta humni maurice mein ta rodrigue mein bhi aise hi system hola
0: ha rodrigue mein bhi aise ego system hola tani ulab tani kam maja পাচ্ছে ওয়ান যা হামনি সে মেসেল মো হাই সিস্টেম অফ মাজে ফলো করে থাবেন যা তামনি পচাতে নি যাক মাজে জাস্তি ও নিবো ইন্টারন্যাশনাল কি কোন চি হলবে কারমা তে দেখো জানি যা কি প্লাস্টিক অন রিজুমে মে প্লাস্টিক সুবিধা দেবেলা মে মালেরোজমান জব দেখবা এগো এগো কেসি ব্যালেন্স মে দল বা তোকে তল বা তা দেখবা কি ওকর জিতনা ওকর এফি নেগেটিভ বা জাস্তি বাই কারমে তা জানি কি দেখা हमने हमने जनता भी एक मजा जनता जब बोलते हैं जनता सा जैक सिर्फ मॉरिशस में नहीं है बल्कि दुनिया में है बोला था तो हमने के फासों जन को मजा ओके इस्तेमाल करके बिगी ला जा हाई ला चाला जैसे एक पर काम कर बस ये देखा जाए इस्तेमाल करके एक मजा की देखा मजा इस्तेमाल कर दिले गुजाफिया ओके अपन को अति है पुबेल में डाल दिला तो ऊ जाके एक मजा एगो एगो रिसिक्लास हो जाए तो भाई प्रॉब्लम नहीं कोजे करी मैं एक प्रॉब्लम जब कौन प्रॉब्लम हो जो कि निमन से नहीं डिस्पोज कर पा तब जाके प्रॉब्लम होला और एक एक जाफे बहुत ही इस्तेमाल जब इस्तेमाल भी होला कोनो चीज देखा कोनो कोनो कैसे बुटे प्लास्टिक वाला गला एग्जांपल दे रही जब घाम में कोई एक्सपोजे कर दे बते कर मैं सहते हाँ प्रोड्यूस शिमिक बाइकर में तो प्रोड्यूस शिमिक बाइकर में जब घाम से एक्सपोजिशन होला तो प्रोड्यूस शिमिक निकल के और प्लास्टिक का में निकल के हाउ लिक्विडा में जाए यानी कि तो पानी में जाए तब ऊ जब पीबा तो ई हाँ एकदम को से कला जनता लोग की याद हुई एगो तेचिन रहल आगे तेचिन ओके ऑपेसे कर लें सर मोरिस में कहे ऑपेसे कर लें सर बस कि वो एगो ऐसा सिप्सेंस होकर मेरा हल जब लाइकवा जब दूध पिएता होकर में तो हाउ हाउ सिप्सेंस वाला निकल के हाउ कर दूधा में आवता तो दूधा में आई तब जब लाइकवा जब पिएता होकर लिखो मिल जाता देखिए उनसे ये जाके ओके हानिकारक करता है पिटी को लासांती अफेक्ट करता तो समझ लें तब ये सब जब चीज देखनी सर डिवो इंटरनेशनल बोलिए सर हाई सब पेई एगो पेई नहीं बात जो वहाँ पर प्लास्टिक ने से भी हुआ भारतीय दुनिया के संसार में जितना पेई बस सब लोग प्लास्टिक से भी हुआ और हमने सब बोले मोई समते नहीं आवास में है सब ताले एक अपर ऑप्शन है
1: बिल्कुल तो हुए हमने इस सब चर्चा कर दी जा पिछला प्रोग्राम में अब तो प्लास्टिक के इस्तेमाल खत्म हुए के खातिर सरकार मिनिस्टर कैसन रोड मैप अपना होता পিছটাও শুরু করলি যা দু
0: গলা শুরু শুরু করি সে তেল মার বাজায় কে নেতা নেই মিলাল হ্যাঁ তো জব হামনি দেখনি সা কিতনা ইতনা প্রবলেম হতা তা বলি যা নাই চলা যা এগো এগো প্ল্যান বানাই যা জোন সকাপ সব প্লাস্টিক কো মাঝে কে ঘটাইলে যাই গতে গতে এক এক উতনে সব রং প্লাস্টিক করি না এক এক উতনে সব রং প্লাস্টিক করি বস কি জব হাই জব হামনি জব হাই হাই জোন কদম উঠাওয়া থে যা एक ही बोलने से एक रोड मैप कौन चीज है यानी कि बोलबा कब कौन चीज कर पा बस कि एक ही कुछ नहीं सकबा कैसे तो बोलते हैं घर बनाए के बाद
1: समाधान खाते ऐसे जल्दी जल्दी जैसे जल्दी नहीं सब करे कैसे जांच पड़ताल कर लेके
0: कैसे कैसे तोरा को घर बनाए के बाद एक एक कुछ ताके पेजे के लिए घर वाले पागे तो उतर सकल अलादीन के हो ऑप्शन में
1: अच्छा रहा जी ऐसा नमकीन में एक चिराग रही था हम
0: हाँ बड़ी अच्छा रहा तब आगे कर फाउंडेशन करबा तब कर मोती करबा कर ब्लॉक मोती करबा तो यानी कि हर एगो कदम में तो हाइये के नाम बाई गो रोड मैप यानी कि कौन ची करबा तो सरकार अभी हला एगो आले गो रोड मैप करेंगे ओके शुरू करनी सा है और हाई कैसे गलत को रहा बोल रहे नहीं लुसियन एंजे में मॉरिशस टापू पहला देश बा जो ऐसा नहीं गो कदम उठाएला का
1: बहुत अच्छा बात
0: बहुत अच्छा बात और मैम एगो सकबा बोले एक मजा निवो लाफ्रिक में हमने ऑन अवान संसाई सा प्रॉब्लम एगो पेई बाज लाफ्रिक में जो के बोल सा रुवांडा रुवांडा एगो पेई है लाफ्रिक में उ भी तनी अवान्स बा तनी आगे बा उ तब हमने सकबा बोले देश में पेई मजा सकबा बोले लाफ्रिक में मजा ढेर चीज देख सकबा जितना जितना पेई बा देखा लाफ्रिक तनी गो पेई कैसे बोल अब जा लाफ्रिक पो पेई लाफ्रिक पो हो जा तो उ लोग के हाईवे के पैसा नहीं बता लोग कौन सी करियन जा देखा अब एगो तोरा बोल दे वे एगो चीज पैरेंथेस है देखा एगो पेई में जनबा ओकर खाए के नहीं मिला था तो ओके बोलबा देखा जस्ती गांची प्लांटे कर ओके बोलबा श्रॉबो ने से भी करके तो ओके चला श्रॉबो में से भी कर लकड़ी जरा के तब ओके पड़ी खाए के पकाए के तो यहाँ पर मॉरिशस सामने के कैसे बोल अब चा
1: लकी है जहाँ कि
0: हमने की तो गैस बा ना गैस से हमने जरावत है जा यानी कि तो प्रदूषण नहीं होता जहाँ से कम ती प्रदूषण होता नहीं बोला कम प्रदूषण नहीं बा कम ती प्रदूषण बा कंपाय कर बा जब लकड़ी जरे बा तब आ जब लकड़ी बा जरावत हुआ तो जो गैस निकलता ये जाके श्रम क्लिमाटिक करता तो जना तो ना
1: एगो लिए
0: बासा करो मजे एगो प्रॉब्लम सोल्व कर बा दूसरा प्रॉब्लम निकाला तो बा समझ लो ना तब लाफिक में जाके बोलबे गो पे ही में कैसे एक मजा ले फैक्ट मजे एगो इगो पे अब हम एटी सुजेसी में नहीं करते हैं पॉक्सम इगो पे ही पॉक्सम ले सुडान इगो पे ही देबा लाफिक के सुडान वहाँ पर जाके बोलबे देखा सेवी गाज पास सेवी जीवा तब पौधे का पैसा रही कि नहीं कि गाज हुआ तब ना और का जी गाज हुआ बाव कर ला कि नहीं बा और देखा है जहाँ पर जितना जब चीज हमने तो सब चीज आए पोते करते हैं जाना थे जा तो हाई प्रॉब्लम जो होता
1: हावे
0: हावे
1: तब इतना महंगा हो जाए बा अब तब बोले जब गाज नहीं सेवी करके अब तब जुप्पा से अधिक करके अब तब यहाँ वहाँ करना
0: चाहिए नहीं तो एक समस्या एक समस्या हो जाए बुक तो है इनको तो निकाली सा तो रोटमा पर बचा था तब हमने की तब सरकार बोला नहीं चला जा पर उसकी हाई हमने की बहुत अफेक्टे करा था तो हमने की जब जितना हमने प्लास्टिक सेवी करे थे जा प्लास्टिक जितना सेवी करे थे जा इस एकर से रेजा हानिकारक होता और क्योंकि हमने गो टापू हैं सा तो दूसरों बगल के जो जो कोरा करकट बा बाहर के भी मॉरिशस के आवता ओकर लागों में आवता लागों में आवता मैम ओकर हाईसी में बा हुआ पर भी आवता तो इस सब के गो समस्या हमने बोली जा इस समस्या के जाने गो हल ढूंढे के तो हे खातिर हम गो रोड मैप बनेंगे
1: तो इस प्रोग्राम को थोड़ी देर के लिए हम जारी रखेंगे फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं और इस प्रोग्राम को जारी रखेंगे और हमारे श्रोताओं और दर्शकों से भी मांग करते हैं अगर आपके पास कोई सवाल हो या फिर आप कोई विचार आपके राय हम लोग जानना चाहेंगे 4028085 पर वैसे आप भी हमें बता सकते हैं कि क्या आपने कभी प्लास्टिक कम करने की कोशिश की ये भी हम जानना चाहेंगे तो बेशक अभी फैजान से गुजारिश है कि एक गाना अभी के लिए चलाएं
2: आज की

0: आज स्टूडियो में उपस्थित हैं पर्यावरण मंत्रालय से डॉक्टर राजेंद्र कुमार फुलमान जी और श्री किरण कुमार बलक जी। और जैसे कि हमने बोल लीजा, आज हमने जिन सरकार द्वारा जिन मतलब एको एको महोदासियों कर ले बाकी कुछ चाइना करे के प्लास्टिक घटाएगी, तो बलक जी जिन जिन कदम पिछला प्रोग्राम में हमने चर्चा कर लीजा एक पर जस्ती खुलासा दिए।
1: ये पर्यावरण मंत्रालय और सब स्टेक होल्डर के साथ

0: सहायत से तैयार कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि प्राइवेट सेक्टर रहल, NGOs, यूनिवर्सिटीज और अनेक अनेक मंत्रालय के कोलाबोरेशन से यानी कि मिलजुल के ये तैयार कर रहे बा। काहे ऐप उतर रहल कि सब स्टेक होल्डर्स के इन्वॉल्व करके, क्योंकि प्लास्टिक पोल्यूशन से निपटे के लिए सब इंस्टीट्यूशन के एक रोल ऐप होता बा। सिर्फ गवर्नमेंट सिर्फ सरकार
1: नहीं
0: सकी, तो प्राइवेट सेक्टर NGO सबके ऐप होता
1: है, सबके राय ले लेके तब एक सिचुएशन में
0: एग्जैक्ट। हाँ तो और ये रोड मैप एक जैसे बोला 10 ईयर प्लान है।
1: अच्छा
0: 10 वर्ष के प्लान है और उसमें 11 लक्ष्य यानी कि 11 टारगेट बा और अप्रे 60 गतिविधि या 7 एक्टिविटी बा एक्टिविटी और 7 एक्टिविटी जैसे डॉक्टर सुलमान जी बोलक कि समय समय पर एक्टिविटी इम्प्लीमेंटे करब सर। फॉर एग्जाम्पल कोनो एक्टिविटी बा एक या दो वर्ष में लागू हो बोला शॉर्ट टर्म मेजर्स, कोनो एक्टिविटी बा 3 से 5 साल तक लागू जैसे बोले लागू हो मीडियम मेजर्स मीडियम टर्म मेजर्स और कोनो बा लॉन्ग टर्म यानी कि 5 से 10 साल तक। फॉर एग्जाम्पल एगो प्रीमियर एक्टिविटी है यानी कि एक्टिविटी है कि एगो डेटाबेस डेवलपे करब सर। अभी के लिए अभी डेटाबेस नहीं बा। फॉर एग्जाम्पल आप से पूछब कि मॉरिशस में एक साल में कितना प्लास्टिक एपोते करे सर, कितना बोल प्लास्टिक या कप प्लास्टिक एपोते करे सर, तो बोल सर शिफा नहीं बा। तो बोलब कि काम करेगा शिफा नहीं जाने ला, तो इसलिए एपोत हाँ एगो डेटाबेस प्रोमियम एगो डेटाबेस डेवलपे करे के और इस डेटाबेस से हमने जानब सर कितना प्लास्टिक फॉर एग्जाम्पल मॉरिशस में आवेला, कितना प्लास्टिक मॉरिशस में बनावेला सर, कौन कौन प्रोजेक्ट प्लास्टिक में आवेला और कौन कौन डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक भी आवेला, क्योंकि सब प्लास्टिक रिसाइकले हो प्लास्टिक सकेला रिसाइकले हो कोनो नहीं सकेला। तो एगो डिसीजन लेब सर कि अब 50% रिसाइकल करब सर मॉरिशस में, तो एगो बात दुनिया चाहेला जाना सर कितना वॉल्यूम प्लास्टिक आवेला, तो ये सब एपोतो है। और गवर्नमेंट भी एक कोनो भी डिसीजन ले कोनो भी पॉलिसी मेजर ले सर तो एगो बात दोनों को स्टैटिस्टिक चाहेला, तो स्टैटिस्टिक नहीं बा। तो इसीलिए पहला कदम है कि एगो बात दोनों
1: काम सब करी।
0: अब दूसरा एक्टिविटी है कि एगो नुवो लालवा प्लास्टिक पर एतोजो करब सर, उसका नाम है प्लास्टिक गवर्नेंस एंड कंट्रोल एक्ट।
1: ओके
0: कहे कि क्योंकि अभी देखब तो प्लास्टिक डिफरेंट ऑथोरिटी के डिफरेंट रोल बा, प्लास्टिक पोल्यूशन के कंट्रोले प्लास्टिक के समस्या के प्लास्टिक के एपोटेशन से डिफरेंट रोल बा। ओके फॉर एग्जाम्पल पर्यावरण मंत्रालय के हमने के दुगो रेगुलेशन बा, एगो बा सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट रेगुलेशन और दूसरा बा प्लास्टिक बैग। प्लास्टिक बैग जो प्लास्टिक प्लास्टिक जैसे कि एम्पोटेशन के कंट्रोल के बान और कंट्रोल करेला सर, और दूसरा सिंगल यूज यानी एक ही सिंगल यूज प्लास्टिक प्रोडक्ट यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुए फू से कप टेके हुए इसे आपके कंट्रोल करेला। और दूसरा एग्जाम्पल ले बता एगो लालवा बा वेस्ट मैनेजमेंट एंड रिकवरी एक्ट, वो कौन सी करेला फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक जब एगो वेस्ट हो जाएगा उसे कंट्रोल करेला, वे कहाँ पे जाए सब पेमी देवेला पेमी कर्कज के ट्रांसपोर्टे करेगा देवेला। फॉर एग्जाम्पल एगो कंपनी एगो कंपनी वो प्लास्टिक के रिसाइकले करी, तो इस लालवा में इस जैसे बोल लिया वेस्ट मैनेजमेंट रिकवरी एक्ट से कंट्रोल करेला। और फॉर एग्जाम्पल सब प्लास्टिक के एपोटेशन तो MOA करेला कंट्रोल करेला, तो देख ला प्लास्टिक के संगत डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में कंट्रोल करेला। तो इसीलिए तो एगो सब कंबाइन करके एगो एक लालवा बना सर, जब सब प्लास्टिक के स्थिति हो तब सब प्लास्टिक वही लालवा में से कंट्रोल कर। और एगो तीसरा एक्टिविटी क्या है

0: उसका नाम है, इसके वो है सेट फेज वाइज रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक पैकेजिंग कंसम्पशन बाय 2035। अभी
1: जय बाद 2026 है
0: बाय
1: 2035 तक।
0: हाँ, चाहे अगर अभी जाएगा को या तो बुटीक में जाएगा, सुपर मार्केट में जाएगा, एक प्रोड्यू कि एक प्रोड्यू तो देखा तो बहुत प्रोड्यू में वह पैकेजिंग है। एक एग्जाम्पल है एक बिस्कुट जब खरीद एक बिस्कुट देखो तो एक प्लास्टिक के प्लास्टिक पैकेजिंग है। अब उसे खोल अंदर भी देखो तो पीटी पीटी पैकेजिंग और बाहर पैकेजिंग
1: बोला जाला
0: तो इसे लैप होता ना है एक देखा एक प्लास्टिक में बा और दूसरे भी और प्लास्टिक बा तो इसके ऐप होता रहा इतना प्लास्टिक क्योंकि ओवर पैकेजिंग हो तो इसके क्या रिजल्ट है तो बहुत पैकेज बहुत पोल्यूशन प्लास्टिक पोल्यूशन के इंक्रीज कर
1: हमने के अच्छा लगे रहा छोटा छोटा पैकेट का है कि एक गो लेकर के कब लड़का के देवेला एक गो प्लास्टिक में ऐसे सोच
0: हाँ ऐसे सोच रहा बस जैसे भाजी बोल तो एक बैलेंस ऐसा करे के लैपा कौन चीज है बाद में खा ले तो बिक दे तो लैपा कौन चीज है जैसे एग्जाम्पल बोल रहा कि लड़का के दूसरा ऑप्शन बा बिस्कुआ लेके एक कंटेनर जो लॉन्ग लास्टिंग बा मैं डाल दी बा तो शान के फिर से धो दे ये सोल्यूशन बा तो अभी फैसिलिटी देखे ला अभी फैसिलिटी तो खोल के पैका के डायरेक्टली दे देव तो हाँ फैसिलिटी हाँ जैसे भाई जी बोल प्लास्टिक जब एवंटे होल तो वो आदमी बोल रहा कि भगवान के रूप लेके वो आदमी प्लास्टिक क्योंकि के एवंटे कर रहा है बहुत सुविधा लेकिन तो लैपाक दिन ब दिन लैपाक लैपाक और प्लास्टिक कौन प्रॉब्लम है कौन समस्या से मेन समस्या है कि हमने अब्यूसिव यूज़ कर लिया सर ये प्रॉब्लम है। याद बार जब मैं छोटा था एक मेरे दादी लोग पर दादी तो क्या करते थे वो प्लास्टिक जब यूज करते हो सर तो उसे धो के सूखे के डाल सर तो अभी के जनरेशन करी ऐसे एक ही यूज करके बिक दे तो इसीलिए इसलिए अक्यूमिले तो ऐसे तो देखा तो सब प्रोजी में पैकेजिंग ओवर पैकेजिंग आवता ओके तो हमने एक कमिटी सेटअप कर मिनिस्ट्री में जहाँ पे एक डिज़ाइन पर काम कर डिज़ाइन पैकेजिंग के डिज़ाइन पर या तो फॉर एग्जाम्पल लिटिल बहुत कम पैकेजिंग के एप्रोचों का इस्तेमाल कर या तो पैकेजिंग कर तो वो जैसे है प्लास्टिक जो जो रिसिकले सकता हो क्योंकि सब प्लास्टिक नहीं सकता रिसिकले तो पैकेजिंग कर तो ऐसे तो वो पैकेजिंग जो सकता रिसिकले हो इसके इस्तेमाल कर सकता कर
2: हम तरीको तालेवा बोला हमने कि 2035 लेकिन ताले कैसे इनके भाई बालक बोलन एगो कमिटी इटाब्ली कर कमिटी में सिर्फ मंत्रालय नहीं रखना जिस खाली सेक्टर गवर्नमेंट नहीं रही बस सीकर में एम्पोताते भी अनियन तालब से सब कोई के जितना कोई मजे कौन बहाय से तो लोग वो कमिटी करब सब बस की क्या है हमारी बोलने से देखा हमारा लक्ष्य बा कि हम के चलावें 2035 में हमने की जो पैकेजिंग बा चाइना को माजिया कमती कर देके तब जब बोले हम कमती करब तो कैसे कमती करब तो एक हम बताते हैं कि हम बोल दिए अब देखा काल से हाई तेल फौजुआ नहीं चला आने के तो वो इससे कुछ कौन सी सकी करें स्वाइगो जिस जो लीजिंग जो लोग फौजुए कर सब पैकेजिंग बा ओके बोल दिए अब काल से आगे थे तो जितना कम करो बा कौन सी करी हो जितना कमान बा ओके कौन सी करी हो तो ये खातिर हमने बोला सा कमिटी वा क्रिए करब सर जिसमें सेकेंड के और पॉइंट ऑफ व्यू लेके तब भाई बोला सब बहुत देखा हमने अला ऐसे करब सर पहला हैला ऐसे करब सर दीजिए हम तब भाई करब सर जिसमें सब कोई के मजे लेके जिसमें कोई आफेक्ति नहीं हुई अब आफेक्ति भी आसू आफेक्ति हुई अंजा मैं मजे पर्यावरण के दिमाग में रखते हुए कैसे कौन कदम करब जा कि जिसमें सकियन जा मजे जिसका बैंक से
1: समाधान चाहे निकाले के
2: एक पक्ष में गुस्सा देखा काले हम जम्बो अब एगो एगो एगो एगो मॉल गए शॉपिंग मॉल देख बा अब कौन सी दिखा दी से हाउ बनाना आगे दिन सब कोई बनाना ऐसे बेचता है ना तब बनाना दिखाता है ट्रे डल्ले वन सर ओकर पर बनान

0: que tabouker mig en balance plastique de l'homme. C'est ce qui est nécessaire là-dedans. Pour femme, n'est-ce pas? Bon, côté esthétique, à tchabaham. Mais ce qui est nécessaire là-dedans. Damni ki chanab sochi ki wala ki dekha aaj hamni khojab sa jimini kare ki packaging ta bhai sab majhe chanla gradual ma eliminate kare ki khatin thaila bulab sa ha bhai la zui lagaya dekhi ki ha iske liye chini se se pochi kochi karba
1: aur hamke yaad ba ego shopping mall ke parking mein purana total electroménager television computer ke l'écran jama karke ek recyclage kar jala aur sab majhe shopping mall wa mein alag alag cheez jaise bottle chahe rakhe ki hai mein hai to ye aise na acha baat hai
0: ha एकर कैसे गलरक अनौंस कर लीजा कि सरकार काम करता कि हमने के तीन गो डिफरेंट कूड़ादान बोल सकते डिफरेंट कूड़ादान डेवलप सा तीन गो है ई गोवा में जो जितना मजे देशी बीव देखा था आप कैसे बोल सकते कैसे लेगीम के छल का तो लाकू में जितना मजे वे जितना मजे लेती है जो सकी सरी को मजे सरी लंसा है ई गो जाए दिशा में जितना चीज से कि रिसाइकल हुई हाउला में जाए फॉर एग्जांपल देखा पापिया से कि रिसाइकल हुई मेटल बा ऊ रिसाइकल हुई कैसे प्लास्टिक बा ऊ से कि रिसाइकल हुई सब ऊ दिशम कूड़ादान में जाए और थर्डम कूड़ादान में जो नहीं सकबा प्रथम कूड़ादान दिशम कूड़ादान में नहीं जाए तो थर्डम में जाए तो भाई जब ऐसा सुविधा जब करब जा तो प्लीज अभाव जितना हाउ जितना बायोडिग्रेडेबल यानी कि हाउ छल का लुक सब ओके जाके विदा करब से कंपोस्ट करी बनाई कंपोस्ट बनाओ अब साउ कर से हैला पहला अब हाउ जो डीजेम पुबेलो आबा ओकर में से निकाल के एगो सौत ओके बोला से सौत दो ट्रियाज में जाए जहाँ पर ओके ट्रिए कर अब जा बो हैला प्लास्टिक है ओके प्लास्टिक निकाल दियो अब सा हैला मेटल बा है मेटल निकाल दियो अब जा और हैला
1: और मेटल वा से सुने रहन जा कि वो लोग कुर्सी मेज दरवाजा ये सब बनावे जब रिसाइकल
0: तब भाई से को के सेपारे कर दे बा तब रिसाइकल जोन बा देखा अब मजे आप कैसे रिसाइकल बा प्लास्टिक वा के प्लास्टिक वा के रिसाइकल वा वा के लेके अपन लीजिन जाए यानी के समझे देखो सब जब एक एक्शन को जिनी बा को मजे एक घर में तब ऐसे तब तलवा भाई बोलता हमने कि चाहे को बास दे दोनी अभी बास दे दोनी नहीं बा जब बास दे दोनी को मजे ऐसे बनाए लगा चाहे सब मजे रमास के हो मिल गया हमने के दुनिया तब से कब से जाने बहुत देखा हमने के इतना प्लास्टिक प्रोड्यूस होता इतना प्लास्टिक बा एक चाना रिसाइकल करके अब रिसाइकल के खातिन चाना अब फेक मजे दोलबा एक ही गोलीजिन बा एक ही गोलीजिन नहीं सके इतना सब प्लास्टिक रिसाइकल करी तब कौन सी कर अब जा ते गो इंसेंटिव दे अब जा जिमें कि दिजम त्रोजियम लीजिन सकी बने समझ लेना तो एक ही बोला सा कैपेसिटी बिल्डिंग हाई ईगो
1: एको परमिटिंग
0: एको परमि हाउ जोन बा हां हाई लेगो परमि बा तो ऐसे समझ ले रहा ऐसे गति गति के मजे कर ले जाप सब अब एको दूसरा चीज बा मजे देखा अब हम नहीं बोलब जा अब तलेवा हम बच्चे नहीं चला ग्रेजुअलमेंट एक एक उतना ही ग्रेजुअलमेंट हम नहीं जिमिनी करे लगा जा जोन प्लास्टिक ओकर इस्तेमाल करे खातिन फॉर एग्जांपल देखा एको सिंपल एग्जांपल दे होते हैं हमने के जो सैक प्लास्टिक जो बा एक बोला सर जब अभी तो रेम्प्लेस कर दें जैसा सैक प्लास्टिक बायोडिग्रेडेबल से तो आप देखा थे जब बायोडिग्रेडेबल में हाई में भी देखा थे जब अब आगे जब कलियर नहीं से तो उतना इंफॉर्मेशन नहीं रहा अब जब देखा थे जब जब रिसर्च भी होता तो देखा थे जब मैम हाउ बायोडिग्रेडेबल में एक भी हानिकारक बा को चीज बस कि तलवा कैसे भाई बोलन हाई बायोडिग्रेडेबल जो बा उकर में सिर्फ खाली बायोडिग्रेडेबल डलबा तो वो प्लास्टिक वाने से चीनी करे तो एक में चला एडिटिव्स डाले के जब एडिटिव्स डाला तक मजे सकवा जब पकड़ बज में चला सक देखे को रुचि तो फट जाए समझ ला ना तो खाली मजे बायोडिग्रेडेबल से कौन सी बोलन से एक कोनो फौजी माई से भी कर लन से माई मकई
1: मकई
0: कोनो फौजी के मजे कसावा कैसे बोल सर व्योलेट व्योलेट स्वाइटी से भी खेलन सर हाँ ओकर थी हाँ से भी खेलन सर ओ बिया कोनो सेकेंड चक मजे स्टार्च स्टार्च जो से भी खेलन सर कैसे हमने की बोम देते हैं ओकर में बस स्टार्च हाउ सब से भी ओके सगला साग भी वेरी गादा बनाए तो सिर्फ खाली हाउ ला 100% से भी कर बात तो साकवा ने चीनी करी समझ लेना पर ओकर में कैसे बोल सर स्ट्रेंथ ओकर नहीं सकी चीनी करे गो पा दल बत जिमें सकी पा चीनी करे एक में दूसर चीज मिलौजी हो। अब जब अब रिसर्च होता तो लगल हमने के जाने अब जान में आल कि हाउ जो एडिटिव्स जो डालत हुआ सा इस सकी हानिकारक करे पर सिकर में थोड़ा प्रोड्यूस सीमिक बा जो कि सकी मजे ओके चीनी कराए अब हाई भी समझ ला ना हाई भी एगो समस्या कर ले
1: एगो दूसर ऑप्शन
0: हाँ ऑप्शन समझ ला ना तब एगो ऑप्शन अब चला मजे अब आपको बाज दी दुनिया उतना नहीं बा तो अज बाज दी दुनिया जैसे क्रिए हो जाए हमने के तब से कब से जाने देखा हाउ जो प्लास्टिक बा ओकर लिपे से कब सा वो बाउते कर दे एक गोल एग्जाम्प दे होते नहीं बोलते कि हाई चाप से कर ले एक गोल एग्जाम्प हम सब को ले पैसे वो माउते कर दे बस एक कैसे एक मजे दूसरे जन पेई में होता ओकर ले पैसे वो माउते कर दे बा तो हाउ सक प्लास्टिक हुआ से जन प्लास में एक एक कुछ सेविंग करके बिक दे बा तो कि दे तो आकुछ सक बस सेविंग करे समझ लेना तब एक गोल एग्जाम्प फॉर एग्जाम्प एक दूसरा एग्जाम्प दे होते कैसे कोनो बुल बा टपरवेयर फॉर एग्जाम्प बोली लें जा टपरवेयर वो ड्यूरेबल है वो सेविंग तो ओके ओकर में खाई की डाल बा ओके अथी जब सेविंग कर ले बा तो कि धो के सब बार फिर से सेविंग कर तो एक ही बोले सा रियूज हाँ रियूज तो हमने के गो दूसर रोड मैप जान बोले जब जो के बोले सा इकोनॉमी सर्कुलर हाँ इकोनॉमी सर्कुलर कौन सी है यानी कि जितना चीज प्रोड्यूस करे तो ओके सब बार फिर से इस्तेमाल करे।
1: अच्छा
0: समझ ला ना अब देखा फॉर एग्जाम्पल एक सैंपल एग्जाम्पल दे हुआ था कैसे अब तो हमारा एगो बिसिक्लेट बा हम बिसिक्लेट वाने से भी करते हैं ओकर में एगो चीफ फ्रेंस बा ओकर पेडल टूट गल बा हम बोले ए
1: फेंक दे
0: ओके वीडियो पर तो नहीं एक मजे एगो सका भी एगो प्लेटफॉर्म क्रिएट करे एक मजे ऑनलाइन अब दे सब कोई चपो तब से भी कहता सब कोई ऑनलाइन बा देखा मामू ने इनके बिस्किट से के नौ भी पा वो बोले ए मोविन प्रॉन ली हाउ कब ले ली वो लेके तो कौन चीज को बना के फिर से भी करी यानी कि देखा जो जात है ला हमने की जो मार्शी को जात मजे बिगात वहाँ पर ते को दूसरा जना से भी करता देखा पगजो
1: कोनो कोनो हवे बाइसिकल वा लेके एक दूसर चीज बना के घर में डाले रन सर एक दूसर फासों बना के
0: मैं मेरे को डेकोरेशन
1: डेकोरेशन के रूप में स्टैंड इस सब
0: एक नामक मजे इकोनॉमी सर्कुलर समझे हमने की जो प्लास्टिक जो रोड मैप बा वो en étroite collaboration kam karta hisabe economy circulaire khatim te talewa bhai ji bolte ne guzafi ki hamne ke utna information nahi ba ab hamne ke chana analyze kare ke jo jitna plastic jo na moris mein helata kon plastic sakba ko majhe okar mein se recycle kare aur kon plastic nahi sakla recycle hoy
1: ta ekar par kam hoy ta kaise ab ati janta ke janai ba is sab cheez kaise ulo ke ja ko
0: hai ego dusra hamne ke kadam ba ekar me ba sensibilisation ego voli très important sensibilisation yani ki hamne ke plusieurs medium se bhi karab ja मैम लगा जेत मैम देखे कैसे आज बचाते हैं जा एम बी सी में मैम से कि बन शोध वीडियो को मजे बना जा तब जा मजे ओके टेलीविजन में डाल जा ओके फेसबुक पर डाल जा और जितना मजे कैसे सोशल मीडिया बा इंस्टाग्राम
1: फुलमन आपके देखे मैं कैसे ने को एक विषय स्कूल में नहीं सकेला शुरू करे के मजा वो लोग छोटा से प्रीमियर से वो लोग के जनाए के तब ये आगे चल करके जैसे 2035 ले सा कब से को
0: कैसे बोला हमारे मुंह के बात छीन ले ली यानी कि हाई सब प्रोग्राम में बा हाई सब प्रोग्राम में बा यानी कि कली करिकुलम ओके एटी करब जा चेंजे करब सिर्फ खाली लड़का लोग के नहीं मजे कैसे प्रीमियर के नहीं मेन प्री प्रीमियर से शुरू करब जा क्योंकि प्री प्रीमियर से शुरू होला सब चीज ला बिजी और देखा प्री प्रीमियर आई प्रीमियर तब आई सेकेंडरी मेन टर्शियर और हाउ जोन वीडियो भी बना आप जा एक मजे कैसे मैम पारों लोग के मजे लोग के भी जना कॉन्शियंटाइज करे कि बेकम तो कह हम ही फॉर एग्जाम्पल आज हम मंत्रालय में नहीं काम करते हमने जानते प्लास्टिक की कौन प्रॉब्लम बा समझ ला ना तो अब भाई सब के चालक मजे एक गो को नहीं चला छोड़े के सब कोई के चालक मजे सब निवो के
1: नॉलेज वा चाहे दूसर दूसर संगे बढ़ाई के
0: अरे को सरल भाषा में चला मजे जिमे की सब कोई समझी पर जब हम थोड़ा से बोलब देखा हम बोलब से डिफरेंट टाइप प्लास्टिक बा पॉलीमर बा कैसे पीवीटी बा पीवीसी बा पीएच बा
1: हम ने समझ में नहीं आई कौन सी कौन सी बोली
0: खाली हम भाई और भाई जी समझ अब समझ ला ना तो एक खतनी में एगो लौगाज में मजे हाई सब हाई बा हाईला में और देखा था इस समय में बहुत कमती
1: बहुत कमती बा
0: तो एगो एगो दैनीय बोल दे होता है कि रिसर्च भी एगो सोच बहुत इम्पोर्टेंट तलो हम थोड़ा बोलते हैं कि हमने के चैनल remplacer quelque plastique. Tu continues à remplacer quand même. Il y a plastique qui calque d'autres plastiques qui sont remplacés. Et quand par chance là, il y a alternative, il y a une alternative pour remplacer quelque.

The alternative, अजी बरासिया नब ते जस्टिम के मंगा कुती होई. तो कहीं नहीं हमने अल्टरनेटिव मॉरिस में निकाला अब जा. यानी कि जितना हमने कि देखा, फॉर एग्जांपल रिसर्च होता है यूनिवर्सिटी मॉरिस में बना

0: समझला ना तो ऐसा नहीं कि जना बहुत रिसर्च करके तो एक कहते नहीं एगो दूसरा लम्फाज एगो बने एक्शन हो जना जो प्रमोट करके रिसर्च एंड
1: बहुत बढ़िया चीज। तो समय उतना नहीं रह गया है लेकिन आप लोगों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे इन सारी जानकारियों के लिए और साथ में जितने श्रोताओं और दर्शकों ने हम लोगों को सुना ध्यान से जो संदेश जो मैसेज हम लोगों की ओर से उन लोगों तक पहुँचना चाहें शायद उन लोगों को मिल गया होगा। तो फैजन रितेश और उरुसा को धन्यवाद देते हुए हम आपसे आज्ञा चाहेंगे। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर फुरमान जी और डॉक्टर श्री बलक जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार और आदाब।

0: Musty, the latest news and the greatest mix of music.
1: Radio Musty.
0: Feel the Musty.
2: सुबह के 10 बजे हैं। जी सुनते हैं संक्षिप्त समाचार। आपसे करुणा जी नमस्कार।
3: नमस्कार नीलमणि, सभी को नमस्कार। मूडीज और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की रिपोर्ट मॉरिशस की अर्थव्यवस्था को लेकर एक समान निष्कर्ष पर पहुंची है। मॉरिशस सही दिशा में आगे बढ़ रहा है। जूनियर वित्त मंत्री धनेश्वर दामरी ने बजट परामर्श के तहत स्टेक होल्डर के साथ बैठक के बाद प्रेस को ये बात कही। ऑसिनल गवर्नमेंट स्कूल के 104 वर्ष पूरे हो गए डॉक्टर नवीन राम गुलाम की उपस्थिति में आयोजित सालगिरह समारोह में प्रधानमंत्री ने स्कूल के नवीनीकरण की घोषणा की। अपने भाषण में उन्होंने शिक्षा से जुड़े कई मुद्दों पर बात की और मॉरिशस में मुफ्त शिक्षा के महत्व को याद दिलाया। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों के पास डिग्री तो होती है लेकिन ज़रूरी नहीं कि उनके पास शिक्षा भी हो। प्रधानमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार के कुछ फैसले अलोकप्रिय हो सकते हैं लेकिन उनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था में सुधार लाना है। उनके अनुसार बिना किसी रणनीति के पैसे बांटना जैसा कि पिछले शासन में हुआ आज उसके परिणाम देश को भुगतने पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन राम गुलाम का कहना है कि पिछले शासन की क्षति को ठीक करने के लिए एक नए जनादेश की आवश्यकता होगी। शिक्षा मंत्री महेंद्र गंगा प्रसाद ने भी ऑसिनाल गवर्नमेंट स्कूल की प्रगति की सराहना की। उन्होंने बताया कि स्कूल की सफलता दर 44% से बढ़कर 77% हो गई है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये स्कूल एक आदर्श बने और अपनी प्रगति जारी रखे।

0: थी। विदेश में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रोजेक्ट फ्रीडम को अस्थायी रूप से रोकने के फैसले ने तेल बाजारों को राहत दी। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज़ों को सुरक्षित निकालने के लिए शुरू की गई इस अल्पकालिक योजना को रोकते हुए ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ पूर्ण और अंतिम समझौते की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। दूसरी तरफ इसराइल ने बेरूत पर युद्ध विराम समझौते के बाद पहली बार हमला किया, जो हिजबुल्ला के साथ संघर्ष रोकने के लिए किया गया था। इस हमले ने पहले से ही नाजुक संघर्ष विराम समझौते पर और दबाव बढ़ा दिया, जो अब तक हिंसा को पूरी तरह रोकने में विफल रहा है। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार। बासन रोड काथोबोन में 75 साल की 75-year-old बीबी मरियम जगू पैदाइशी नाम जीवन, जो मरियम से जानी जाती थी, इंतकाल कर गई हैं। जनाजा आज दिन के 11 बजे इनके मकान बासन रोड काथोबोन से निकाल कर दफनाने के लिए फिनिक्स का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुडे एट 11 AM। और बुआडवाजो रोड प्लानमानियों में 68 साल की 68-year-old श्री शिवराज नायको जो कवि से जाने जाते थे, की मृत्यु हो गई है। अर्थी आज सुपहर 3 बजे इनकी माँ श्रीमती शांति नायको के मकान बुआडवाजो रोड प्लानमानियों से उठाकर दाह संस्कार के लिए प्लानमानियों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 3 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी गहरी सहानुभूति।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

10:04 हुए हैं स्टूडियो की घड़ी में श्रोताओ, इस समय से लेकर दिन के 11 बजे तक हम आपका साथ देने वाले हैं। कार्यक्रम है भक्ति धारा, भक्ति की धारा बहने जा रही है आपके मनपसंद रेडियो चैनल पे। तो चलिए श्रोताओ, कहते हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि वह टूटे हुए मन को भी संभाल लेती है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत जो है हम भगवान गणेश जी का नाम लेकर करेंगे। भगवान गणेश जो है जितने भी विघ्न होते हैं हमारी ज़िंदगी में वह सब दूर करते हैं।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, भक्ति मन को शांति देती है और जीवन को सही दिशा दिखाती है। जब इंसान का साथ कोई नहीं देता, तब ईश्वर उसका हाथ जरूर पकड़ लेती है।

लेती है ताकि हमें हमारी ताकत का एहसास हो सके। मंदिर की घंटियों से ज्यादा भगवान को इंसानियत की आवाज़ प्रिय होती है। श्रोताओं, आज है गुरुवार। गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान विष्णु का, साथ में माँ लक्ष्मी का। और आपको पता है कि माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप होते हैं और हर रूप का एक अपना महत्व है। तो चलिए, भक्ति धारा इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हम आपके लाए हैं अष्टलक्ष्मी स्तोत्रम, आपके लिए रेडियो मॉरिशस पे।

श्रोताओं, भक्ति का अर्थ केवल मांगना नहीं होता, बल्कि हर परिस्थिति को स्वीकार करना भी होता है। जिसके पास आस्था है, उसके पास उम्मीद हमेशा बनाए रहती है।

श्रोताओं, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो भक्ति केवल धर्म नहीं बल्कि जीवन जीने का एक सुंदर मार्ग है। आइए हम सभी अपने जीवन में प्रेम, विश्वास और भक्ति को अपनाएं।

चलिए श्रोताओं, 10:40 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिन के 11 बजे तक ये कार्यक्रम जो है चलने वाला है और बहुत ही श्रद्धा भाव के साथ आप हमारा साथ निभा रही है। तो चलिए अगले भक्ति गान की ओर हम बढ़ेंगे। वैसे गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान विष्णु का, और भगवान विष्णु का एक और स्वरूप है, वो है भगवान कृष्ण। तो चलिए, अगर आप आस्था रखते हैं तो इस गीत को आप ज़रूर गाइए, गुनगुनाइए हमारे साथ। ये गीत आपको बेहद ही पसंद आएगा।

0: भक्तिमय कार्यक्रम भक्ति धारा रेडियो मॉरिशस पर।
1: श्रोताओं, भक्ति वह संगीत है जो आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। जब मन शांत होता है तब भगवान की आवाज सुनाई देती है। तो चलिए, गुरुवार का दिन समर्पित है भगवान साईं बाबा को भी, तो चलिए उनके नाम पे ये अगला भक्ति गान अनूप जलोटा के स्वर में हम सुन पाएंगे।

श्रोताओं, ईश्वर हर जगह है, प्रकृति में, प्रेम में और मानवता में। भक्ति हमें सिखाता है कि हमें धैर्यपूर्वक, प्यारपूर्वक और मधुरता से लोगों से मिलना चाहिए। भक्ति हमें ये भी सिखाता है, प्रेम का पाठ जो है हमें आपस में बांटना चाहिए। जिसके मन में भगवान बसते हैं, उसके जीवन में सकारात्मकता बनी रहती है। तो चलिए श्रोताओं, भक्ति धारा कार्यक्रम का समापन जो है हम एक आरती के साथ करेंगे। सुबह सवेरे 6 बजे से इस समय तक आप लोगों का साथ रहा, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही घड़ी में 11 बजने वाले हैं और आप समाचार सुनेंगे। समाचारों के बाद उर्दू कार्यक्रम सायदा की पेशकश में। तो हमारी तरफ से आप सभी को नमस्कार, शुभ दिन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: मौजिला गुजरात नो रंग रंगारंग एमबीसी रेडियो पर गुजराती गीतों नो प्रोग्राम रंगारंग रंगारंग।

0: थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर मन मोर बानी थन गाट कर मारू मन
1: मोर बानी थन गाट कर मन।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: आपकी पसंद। गुरुवार 7 मई दिन के 2:45 बज चुके हैं और आप सबका फेवरेट, आप सबका पसंदीदा प्रोग्राम आपकी पसंद लेकर हम आ गए हैं आपका साथ देने के लिए। गुरुवार का दिन है, कैसे हैं आप सभी? अच्छे तो है ना? ऐसे आज गर्मी थोड़ी ज़्यादा है ना, पर मौसम बाहर का चाहे जैसा भी हो, यहाँ पर आपकी पसंद इस प्रोग्राम में ये जो मौसम है सुरीला होने वाला है, अच्छे अच्छे गानों से भरा होने वाला है, तो देर किस बात की है। जल्दी जल्दी हमारे साथ जुड़ जाइए, अपनी फरमाइश अपने रिक्वेस्ट तक पहुंचाइए। 4028085 है नंबर हमारा, या तो आजकल ढेर सारे लोग मैसेज भी करते हैं तो 5251700005 पर आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। भूलिएगा नहीं, रेडियो मॉरिशस का टिकटॉक का पेज भी है जहां पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं अवतार फिल्म के इस खूबसूरत गीत के साथ।

0: आपकी पसंद।
1: अजी अभी यहाँ देखने की नहीं बल्कि सुनने की बारी है, वो भी आपके पसंदीदा गाने जो आपके लिए हम चला रहे हैं। चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। लिस्कालिया से इंद्राणी जी हमारा साथ दे रही है और अगला जो तराना है

ये रात फिर ना आएगी फिल्म का गीत है, आशा जी की आवाज़ है, गाना जाता है उनके पति मनोहर के नाम, यशना है, संजना है, अक्षय है, वर्धनी, नीरव, गर्व, पूरे परिवार के लिए जो इस समय हमें सुन रहे हैं।

जी हाँ, यही वो जगह है, यही वो फिजा। और यहाँ पर वो कौन थी फिल्म का ये अगला गाना चल पड़ा है, बौशेरी से धनी जी आपके नाम हम करते हैं। यही गाना आपकी ओर से यश और हेमिश के लिए, और इसी गीत के साथ हम बढ़ेंगे 3 बजे के समाचार की ओर।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: देश विदेश की खबरों के साथ स्टूडियो में आ गई है पूजा। आपको नमस्कार।
2: नमस्कार परी, सभी को मेरा नमस्कार। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशकों, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर भी है। मॉरिशस और अमरीका के कार्यवाहक और इस कार्यक्रम के आयोजक कॉर्पोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका के सीईओ ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है। ये बात पुलिस आयुक्त ने मॉरिशस और रीयूनियन टापू के बीच संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप समिति के उद्घाटन के दौरान कही। दोनों टापुओं के प्रतिनिधि की मुलाकात आज लाइन बैरक्स में हुई। इस सहयोग की बदौलत रीयूनियन और मॉरिशस की सुरक्षा बल अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। विदेश में ओशन वाइड एक्सपेडिशन ऑपरेटर ने कहा है कि दो लोग जो हंटावायरस क्रूज जहाज में गंभीर हालत में निकाले गए थे, इलाज के लिए नेदरलैंड्स पहुंच गए हैं। ऑपरेटर ने बताया कि तीसरे यात्री जो स्थिर हालत में है, एक उड़ान में था जो देर से रवाना हुई। एमवी होनियस अब स्पेन के कैनरी द्वीपों की ओर जा रही हैं, जहां पहले ये तीन दिन तक वेस्ट अफ्रीका के तट के पास स्थित कापवेदी के पास लंगर डाले हुए थे। तो इन्हीं खबरों के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय में शोक समाचार। Mon serment sagittaire, golf roundabout, mon choisi mais. Basat Salaki, 62 years old, Shri Satyadev Dhanukdhari, jinhe log Danish naam se jante the ki mrityu ho gayi hai. Ve pehle Kapural, SMF Kapural the aur Kaikairi, Darsh ke malik bhi inki arthi. Kal din ke 11 baje, inki patni Asha Devi Dhanukdhari ke makan, मुसलमान साजिटेर गोल्फ राउंड अबाउट मुशवाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए कारवा कासिया को तेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। मिशन क्रॉस रोड घंट बाफू लालमाटी में 63 साल के 63 years old श्री जगदीश रामदनी, जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती सावित्री रामधनी के मकान मिशन क्रॉस रोड घंट बाफू लालमाटी से उठाकर लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 10 AM। सेनेक रोड रिवरवॉक लेन प्लेन दे होश में 58 साल की 58 years old श्रीमती संगीता रामनियाल, श्रीमती संगीता रामनियाल पैदाशी नाम इंदर नारायण और जिन्हें लोग सुनीता नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान सेनेक रोड रिवरवॉक लेन प्लेन दे होश से उठाकर पीतों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 11 AM। और कोंकाहोल किनिया प्लेन मायो में 80 साल के 80 years old श्रीमती मती गणेश पैदाशी नाम कुनू और जिन्हें लोग सती नाम से जानते थे, की मृत्यु हो गई है। वे बोनेस्वर रोड रिविया दे खोल की रहने वाली थी। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी बेटी छाया मुरुलाई के मकान कंकाहोल किनिया प्लेन मायो से उठाकर वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो 10 AM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।
3: On NBC Play.

Radio.tv. MBC Radio.tv. 819 kilohertz. ये है रेडियो मॉरिशस. आपकी पसंद.

स्वस्थ जीवन व्यतीत करें, ऐसी कामना हम करते हैं। और यहाँ पर मादलपेयर से अनीता जी ने हमें मैसेज किया है, कह रहे कि आज उनके भतीजे की सालगिरह है, कविश हरंगी। और कविश जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अनीता जी की ओर से, साथ में आपकी पत्नी है जानिष्ठा, और आप इटली में रहते हैं, और जो है सभी रामदीन परिवार, सभी हितू परिवार, सभी गोगा परिवार की ओर से आपको बधाई। और ये अगला तराना आपके नाम हम करते हैं, और उन सभी के नाम जिनका भी आज जन्मदिन है।

और चलिए यही गाना जो है हम करते हैं बेटी वालेना के नाम, जिनका आज जन्मदिन है, जो यूके में है, और ये खूबसूरत सा जन्मदिन का तराना आपके नाम जाता है अनीता जी की ओर से, जो फिल्कॉफ्लक से आपको जन्मदिन की बधाई।

0: की पसंद।
1: यकीनन आना जाना तो जीवन में लगा रहता है, ना आना हमारे बस में होता है ना जाना हमारे बस में होता है, बस अच्छे काम करना हमारे बस में होता है, तो वह हमें करते रहना चाहिए। यहाँ पर अगला गाना सूरज जी आपके नाम हम करते हैं सभी सजादा फैमिलीज़ के लिए, बेटा है निशाल और आपके पूरे फैमिली के लिए जो इस समय ट्रियोले से हमें सुन रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी समय कथकोको से संगीता जी बड़े ही प्यार से हमारे साथ जुड़ी हुई है और यह खूबसूरत सा गाना संगीत जी आपके पति विजय के नाम हम करते हैं। आपने कहा कौन सा गाना आपको पता नहीं, तो ये जो अगला गाना है आपके लिए हम चलाते हैं। उम्मीद करते हैं गाना आपको पसंद आएगा। और गाना जाता है यशवीर के नाम, इश्नेशा के नाम, काजल है उनके पति है मिथुन, अविशी आरुषि सभी पातौ परिवार सभी रिगा परिवार के नाम और कथकोको से जितने भी हमारे लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ये गाना आप सभी के लिए भी।

0: की पसंद।
1: चलिए अकेले तो आप यहाँ पर नहीं हैं, हम यहाँ पर हैं जो आपका साथ देने वाले हैं 4 बजे तक। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए यहाँ पर अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। क्रोम्बुआ से विजय जी हमें सुन रहे हैं और अगला गाना इनकी ओर से इनकी पत्नी कविता के नाम, साथ में इनके पूरे परिवार के लिए, अश्विन है, माधवी है, वर्षा, अनुषा, इलियाना, अमायरा, शेन, सभी तिलक फैमिलीज के लिए जो इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और यही गाना विजय जी की ओर से क्रोम्बुआ के सीनियर सिटीजन्स के सभी सदस्यों के नाम। अपने फिल्म का ये टाइटल ट्रैक जाता है यहाँ पर आप सभी के नाम।

0: आपकी पसंद।
1: यकीनन अपने तो अपने होते हैं और अपनों के बिना जिंदगी अधूरी होती है। चलिए अभी के अगले गाने की ओर हम बढ़ेंगे। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये जो तराना है, रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ वो जाएगा। यकीनन हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए ज़िंदगी में, हालात चाहे जैसे भी हो। गाना जाता है सुदेवी जी आपके नाम, कह रही है एंजॉइंग योर प्रोग्राम। अगला गाना उनकी दीदी लालिता के नाम, कुशल फैमिलीज के लिए, दीदी सुनीता, देवीना, चंदा, वंश, वैभव है, वीर है, निया है, मालिंगा से सभी परिवार हमें सुन रहे हैं, रामरतन परिवार है, राम गुलाम परिवार है, सभी कुवारू फैमिलीज के नाम इस गाने को हम करते हैं। और यही गाना जाता है सभी बंधु फैमिली के नाम जो इस समय त्रियोले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस प्यार भरे साथ के लिए। और मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये जो गाना है, उन सभी के नाम भी करते हैं जिन्हें ये गाना पसंद है।

0: की पसंद।
1: चलिए, कुछ गाने ऐसे होते हैं जो हमारे दिलों में बसे हुए होते हैं, और यकीनन मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये जो गाना अभी आपने सुना, ये कुछ ऐसा ही है। बहुत से लोगों को ये गाना सुनना पसंद है। और चलिए अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, और यहाँ पर जो है माया जी मोताई ब्लॉन्श से हमारा साथ दे रही है, उनकी बेटी जो फ्रांस में है सुनीता, उनका जन्मदिन है। तो सुनीता जी, आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ आपकी मामा माया की ओर से, और सभी परिवार की ओर से ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद आया है सुनीता जी आपके नाम। और युवराज भी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, युवराज जो आज 10 साल के हो रहे हैं। युवराज, आपको हैप्पी बर्थडे मामा नीलम की ओर से, पापा अमर की ओर से, साथ में बड़ी नानी है मीला लिवग्रोव से, बड़े नाना है, फिर बड़ी नानी है कृष्णावती, नानी साधना, नाना राज, मामू कृष्णा, सभी सी सौंका परिवार और सभी जोलिम परिवारों की ओर से युवराज आपको भी जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और एक बार फिर जितने हमारे लिसनर्स, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फ्रेंड्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, ये गाना आप सभी के नाम।

0: qui passonne.
1: चलिए यहाँ पर आपकी पसंदीदा प्रोग्राम है और बारी है इस अगले गाने की। हर एक आज की चूड़िया फिल्म का ये जो तराना है जाता है यहाँ पर। गीता जी आपके लिए, आपकी ओर से आपके पति रोहित के नाम, सभी बेटे सभी बहुओं के लिए यही गाना, आदित्य आरव तनिष जानवी और आपके सभी परिवार के नाम।

0: की पसंद।
1: चलिए अभी के लिए तो ये जो वक्त है ये उड़ रहा है क्योंकि काफ़ी कम समय रह गया है और फरमाइशें इतनी सारी हैं। तो चलिए ऐसे में अगला गाने की ओर हम बढ़ते हैं। गंगा जमुना सरस्वती फिल्म का ये जो गाना है, लता जी की आवाज़ में, साजन मेरा उस पार है, मिलने को दिल बेकरार है। ये गाना आरती जी की ओर से उनके पति सुरेंद्रा के नाम हम करते हैं।

0: और चलिए यहाँ पर खूबसूरत गानों के बीच इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं। और यहाँ पर अगला गाना जो है सलामी फिल्म का तराना है, और मिले तुमसे बिछड़ के हम मेरे साजन दुआ करना। यकीनन मिलना बिछड़ना तो दस्तूर है ज़िंदगी का। ऐसे में इस अगले गाने की ओर हम बढ़ते हैं, और अगला गाना जाता है विश्वानी जी आपके नाम, सभी दुमन फैमिलीज़ के लिए, और यही गाना आपकी बहन इंदिरा के लिए, शारदा के लिए, नीला के लिए, प्रतिभा के लिए, गीता गजादर के लिए, सभी दुमन फैमिलीज के लिए। ग्रंगुप की सुनीता जी हमेशा साथ देती हैं, कहती हैं कि बस किसी भी गाने में मेरा नाम जोड़ दीजिए। तो चलिए सुनीता जी, इस गाने को हम आपके नाम भी करते हैं। और यहाँ पर माला जी बड़े ही प्यार से हमारा साथ दे रही है, तो माला जी आपको भी हम नहीं भूले हैं। और यहाँ पर यही गाना जाता है, ज्योति जी आपके नाम यूनियन पार्क से हमारा साथ दे रही है। नेक्स्ट सॉन्ग प्रीति के नाम आपके नाम, मयूर के लिए, आदर्श के लिए, वेदना के लिए, विमला के लिए, यूनियन पार्क से आपके पूरे परिवार के नाम जो इस समय सभी मिलकर जो है हमें सुन रहे हैं। और यहाँ पर शारदा जी आपका भी साथ हमें मिल रहा है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए यहाँ पर ढेर सारे मैसेजेस हमें अभी भी आ रहे हैं, लेकिन समय बहुत कम है। ये जो अगला गाना है हम प्रकाशवती जी आपके नाम भी करते हैं, बेल्जियम से हमारा साथ दे रही है, हमेशा साथ देती है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार भरे साथ के लिए जो हमेशा हमें यहाँ पर मिलता है रेडियो मॉरिशस पर।
1: आपकी पसंद

और चलिए इसी के साथ आपकी पसंदीदा प्रोग्राम ख़त्म होने को चला। जितने भी लोगों ने साथ दिया बहुत बहुत शुक्रिया। मैसेजेस तो हमें अभी भी मिल रहे हैं, तो बस आपका साथ हमें यूं ही मिलता रहे। इसी गाने के साथ आपकी पसंदीदा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। 4 बजे से भक्ति सागर इस कार्यक्रम की शुरुआत होगी, तो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस
1: घड़ी मिला लीजिए, सपेर के 4 बज रहे हैं। आइए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की ओर से 2 विज्ञप्ति सुन लीजिए। त्रुदुदुस के रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, त्रुदुदुस के खास कर सित क्वाजे, मौसल मपुनित, बो रिवाज, होटल चिसरोक, इलोसेफ, मौसल मो दालाइस, देबा का देया, पात्यूरो, शेमे रोबिलॉड, बाचिमो चॉय टूर्स, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर कल शुक्रवार 8 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही त्रुदुदुस के ही रहने वाले ग्राहकों को सूचित किया जाता है, त्रुदुदुस के खासकर सित क्वाजे, मौसल मपुनित, यहाँ पर और आसपास रहने वाले ग्राहकों को बताया जाता है कि यहाँ पर शनिवार 9 मई को सुबह के 8:30 बजे से शाम के 5 बजे के बीच यहाँ पर भी बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। तो इन सभी जगहों पर ज़रूरी मरम्मत कार्यों की वजह से बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी और कार्य संपन्न होते ही बिना पूर्व सूचना दिए बिजली की सप्लाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। इन सभी असुविधाओं के लिए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अपने ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी है। तो ये थी 2 विज्ञप्तियां सीईबी की ओर से।
0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस।

घड़ी मिला लीजिए, सपहर के 4 बज चुके हैं, आज है गुरुवार। घड़ी मिला लीजिए, सपहर के 4 बज चुके हैं, आज है गुरुवार। 7 मई, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन। आप सबका स्वागत हम करते हैं रेडियो मॉरिशस पर। भक्ति सागर इस कार्यक्रम को लेकर हम एक बार फिर आपके साथ जुड़ चुके हैं। अभी से लेकर शाम के 5 बजे तक आपका साथ हम देने वाले हैं। तो जहाँ कहीं से भी आप हमारा साथ दे रहे हैं, आप सभी का धन्यवाद। भक्ति गीतों का यह कार्यक्रम है, आपको बता दें, इसी कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन पाएंगे कार्यक्रम पीयूष धारा भी डॉक्टर शांति महावीर जी से। तो अभी के लिए भगवान गणेश और साईं जी की आराधना के साथ आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं।

चर्चिले भगवान गणेश और साई जी के नाम से कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ है और कहीं ना कहीं हमें अपने आप को ईश्वर को सौंप ही देना चाहिए, क्योंकि वही निर्णय करेंगे कि हमारे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और जैसे भी हो रहा है उसके पीछे कारण क्या है। क्योंकि कभी कभार हम बहुत सारी चीज़ों में वजह ढूँढने लगते हैं, उसका कारण ढूँढने लगते हैं, लेकिन जीवन में कभी कभार जो हो रहा होता है उस पर प्रश्न नहीं करना चाहिए, उसे ईश्वर की मर्जी समझकर अपना लेना चाहिए।

0: श्रोता भक्ति सागर, इस कार्यक्रम के अंतर्गत आइए अब समय हुआ है कि हम बढ़े कार्यक्रम पीयूष धारा की ओर, जिसे हम सुनेंगे डॉक्टर शांति महावीर जी से।
1: आइए सुनते हैं कार्यक्रम पीयूष धारा डॉक्टर शांति महावीर के साथ।
2: प्रिय श्रोता भाई बहनों, पीयूष धारा कार्यक्रम में मैं आप सभी का सादर अभिवादन और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। श्रोताओं, श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। रामायण महाकाव्य में श्री राम की कथा का प्रारंभ करते हुए महर्षि वाल्मीकि अयोध्या नगरी को बसाने वाले मनुष्यों में श्रेष्ठ महाराज मनु का स्मरण करते हैं। कवियों में उत्तम वाल्मीकि मुनि अपने प्रमुख पात्र श्रीराम के चरित्र का उद्घाटन करने से पहले वे उनकी जन्मभूमि अयोध्या की अद्वितीय सुंदरता और पवित्रता का विस्तार से वर्णन करते हैं। अयोध्या के विशद वर्णन के बाद आदि कवि महर्षि वाल्मीकि श्री राम के पिता महाराज दशरथ के विषय में बताते हैं कि दशरथो महातेजा वसन जगत पालयत, यानी कि श्री राम के पिता श्री दशरथ जी महाराज महातेजस्वी प्रजा पालक थे। उनकी प्रजा वेद के सभी अंगों को जानने वाली सुशिक्षित व्रतधारी दानी समृद्धशाली दीर्घ आयु वाली धार्मिक प्रातः सायं यज्ञ करने वाली प्रजा थी। उनकी प्रजा इसलिए सुखी थी क्योंकि महाराज दशरथ स्वयं एक आदर्श राजा थे, एक दक्ष शासक थे। नीति शास्त्र के अनुसार बताए गए राजा के समस्त गुण राजा दशरथ में विद्यमान थे। श्रोताओं, मनुजी महाराज एक निपुण राजा के 8 गुण बताते हुए लिखते हैं कि इंद्र अनिलय मार्काणा मग्नेश्च वरुणस्य च चंद्र वितेश योश्चैव मात्रा निररित्य शाश्वती। इस श्लोक के माध्यम से स्मृतिकार कहते हैं कि देश की बागडोर संभालने वाले राजा में इंद्र वायु यम सूर्य अग्नि वरुण चंद्र और धरती के लक्षण होने चाहिए। जिस शासक में ये 8 गुण होते हैं वही अपनी प्रजा को सुखी रख सकते हैं। और श्रोताओं, अयोध्या की प्रजा तृप्त थी, संतुष्ट थी, सुखी थी क्योंकि राजा दशरथ 8 गुणों के स्वामी थे। पहले के कार्यक्रमों में राजा दशरथ के इंद्र वायु यम सूर्य और अग्नि रूप का बखान कर दिया गया है। आज के कार्यक्रम में हम उनके चंद्र वरुण और धरती रूप का वर्णन करेंगे। कथा को आगे बढ़ाने से पहले आइए हम एक गीत सुनते हैं।

श्रोताओं, श्री राम की कथा को आगे बढ़ाते हुए महर्षि वाल्मीकि इक्ष्वाकु कुल में उत्पन्न हुए महाप्रतापी और महायशस्वी प्रवीण शासक श्री दशरथ के गुणों का बखान करते हैं। वे बताते हैं कि राजा दशरथ महाराज अजा के सुपुत्र थे। महाराज अजा एक कुशल व्यवस्थापक और प्रशासक थे और इसीलिए राजा दशरथ में जहाँ इंद्र वायु यम सूर्य और अग्नि के गुण थे, वहाँ उनमें वरुण चंद्र और पृथ्वी के लक्षण भी उपस्थित थे। राजा के वरुण रूप को रेखांकित करते हुए मनु

स्मृतिकार कहते हैं कि वरुणेन यथा पाशैर्बध एवा भी दृश्यते तथा पापानि गृही याद व्रतमेतधि वारुणम। मतलब कि जिस प्रकार समुद्र अपनी लहरों के चक्रों में अपने जल के भंवरों के बंधनों में मनुष्य को जकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार एक अच्छा राजा भी अपराधी को दंडित करता है, उसे अपराध करने के लिए स्वतंत्र नहीं छोड़ता है। पापियों को जेल में डालने से पहले एक अच्छा राजा उन्हें सुधरने का मौका अवश्य देता है। इसके लिए वह साम दाम और भेद नीति को अपनाता है, परंतु साम दाम और भेद से जब राजा अपराधी को अपने वश में करके सुधार नहीं कर पाता है, तब उसे अपराधी को दंड देना पड़ता है और तब वह उस अपराधी को बंदी गृह में डालकर उसे इस प्रकार से जकड़ कर रखता है कि अपराधी कोई और अपराध कर ही नहीं पाता है। इसीलिए शास्त्र कहता है कि राजा में वरुण देव के लक्षण होने चाहिए। वरुण व्रत का पालन करने वाला राजा ही अपराधियों से अपनी प्रजा की रक्षा कर पाता है। महर्षि वेदव्यास इस विचार का समर्थन करते हुए महाभारत में लिखते हैं कि दंडे त्रिवर्गः सततम् सुप्रणीते प्रवर्तते दैवम् हि परमो दंडो रूपतो अग्नि रीवोत्थितः। अर्थात जो राजा वरुण देव की भांति दंड का ठीक ठीक प्रयोग करना जानता है, वह दंड देवता का आशीर्वाद पाता है और अपनी प्रजा को सुरक्षित रख पाता है। राजा को चाहिए कि धर्म में स्थिर न रहने वाले को, अपने कर्तव्य का पालन न करने वाले को दंडित करे, फिर चाहे वह माता पिता भाई पत्नी या पुरोहित ही क्यों न हो। श्रोताओं, वरुण व्रत के साथ साथ राजा को चंद्र व्रत का भी पालन करना चाहिए। स्मृतिकार कहते हैं कि परिपूर्ण यथा चंद्रम दृष्ट्वा ऋष्यन्ति मानवाः तथा प्रकृतयो यस्मिन् स चांद्र व्रतिको नृपः। यानी कि जिस प्रकार पूर्णिमा के चांद को देखकर हृदय प्रसन्न होता है और मन को शीतलता मिलती है, उसी प्रकार राजा को देखकर प्रजा को शांति और आनंद का अनुभव होना चाहिए। प्रजा को सदा हर्ष का अनुभव कराने का गुण राजा में होना चाहिए। इसे कहते हैं राजा का चंद्रव्रती होना। मनुजी महाराज कहते हैं कि एक आदर्श राजा में कुबेर और पृथ्वी दोनों के लक्षण होने चाहिए। जिस प्रकार समस्त धन के स्वामी परमात्मा और धरती माता सब प्राणियों को समान भाव से पालन पोषण करते हैं, वैसे ही राजा को भी पक्षपात रहित होकर समान भाव से अपनी प्रजा का पालन करना चाहिए। ऐसा करके एक योग्य राजा अपने पार्थिव व्रत का पालन करता है। श्रोताओं, आज का वक्तव्य महान शासक महाराज दशरथ के गुणों पर आधारित रहा। हमने देखा कि प्रजा की सुरक्षा के लिए राजा को दंड नीति का उचित रूप से व्यवहार करना चाहिए। राजनीति के महानायक भीष्म पितामह युधिष्ठिर महाराज को दंड नीति के सामने नतमस्तक होने का परामर्श देते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अगर तुम धरती पर सतयुग का आरंभ करना चाहते हो तो दंड नीति को देवता मानकर उसकी पूजा करो, उसे अपनाओ और उसका पालन करो। और अगर तुम दंड नीति का त्याग कर दोगे

तुम्हारे राज्य में कलयुग का प्रारंभ निश्चित रूप से हो जाएगा। तुम प्रजा के हित के लिए निर्भय होकर दंड नीति का पालन करो और एक आदर्श शासक बनो। श्रोता भाई बहनों, महर्षि वाल्मीकि प्रणीत रामायण हम अवश्य पढ़ें, पढ़ावें और अपने और दूसरों के जीवन का उत्कर्ष करें। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कथा को अगले कार्यक्रम में हम जारी रखेंगे। तब तक के लिए श्री कुमार रामा और मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद और नमस्ते।

तो श्रोताओं, अभी हम डॉक्टर शांति महावीर जी की प्रस्तुति में सुन रहे थे कार्यक्रम पीयूष तारा। इस कार्यक्रम के लिए उनको हम धन्यवाद देते हैं। जी हाँ, ओ पालनहारे, इनके बिना तो हमारा कोई नहीं है, ये है तो हम हैं। कहते हैं ना कि धरती का एक पत्ता भी इनकी मर्जी के बिना, इनकी इच्छा के बिना हिलता नहीं। इसलिए जीवन में जो है, कभी कभार हम जो है बहुत निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, ये सोच करके ना हमें समझने वाला कोई है, ना हमारा साथ देने वाला कोई है, ना हमें पूछने वाला कोई है। यदि हम इच्छा रखेंगे, यदि हम लोगों के प्रति ये रखेंगे कि कोई हमारे लिए कुछ करेगा, तब सदैव हम निराश होंगे। इसलिए जो भी इच्छा है, जो भी मन की बातें हैं, वो अगर हम ईश्वर से कहेंगे तो हम कभी निराश नहीं होंगे, क्योंकि ईश्वर जो है सदैव हमारा मार्गदर्शन करते हैं, हमें रास्ता दिखाते हैं। कभी कभार हम अपने अपनों से बहुत सारी जो है उम्मीदें रखते हैं, तो उम्मीदें जो है, आशाएं जो है, कभी ना कभार टूटती है और तब दुख होता है। तो इसलिए अगर आशा रखनी है, अगर विश्वास रखना है, अगर आस्था रखनी है, तो क्यों ना उस परमपिता परमेश्वर से रखें।

0: सागर।
1: कहते हैं कभी कभार हमारे जीवन में ऐसे व्यक्ति भी होते हैं कि कोई भी दुख, कोई भी परेशानी आए तो सबसे पहले ईश्वर से पहले उनका ध्यान हमें आता है, क्योंकि हमें लगता है कि वो ऐसे व्यक्ति होते हैं जो हमें किसी भी परिस्थिति में हमारा साथ देते हैं, किसी भी परिस्थिति में हमारे अच्छे बुरा होने पर हमें जो है आँकते नहीं हैं, हम में कमियों को नहीं देखते हैं, वो हमारी अच्छाई को देखते हैं, हमारे हृदय की सच्चाई को देखते हैं। और कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति ईश्वर से कम नहीं होते हैं।

हरि नारायण हरि ओम। तो इसी के साथ श्रोताओं, हमारी ये अंतिम प्रस्तुति, इस अंतिम आरती के साथ आज का हमारा जो कार्यक्रम है ये भी संपन्न होने को चला। कहते हैं ना, जिसका आरंभ होता है उसका अंत भी निश्चित होता है। तो भगवान के नाम से हमने कार्यक्रम का आरंभ किया और ईश्वर की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं। जहाँ कहीं से भी साथ जुड़े हैं, ईश्वर की अपार कृपा दृष्टि आप पर सदा रहे। इन्हीं कामनाओं के साथ हमें दीजिए अनुमति, 5 बजे जो है आप सदाबहार गीतों का प्रोग्राम सुन पाएंगे। पूनम की प्रस्तुति में हमारी आपकी मुलाकात जल्द होगी। तब तक के लिए हमारी ओर से नमस्कार आप सभी को।

0: On the hour, every hour. Radio Marches.
1: Radio Mauritius.
2: 819 kilohertz पर ये है Radio Mauritius.
1: Radio Mauritius.
2: Radio Mauritius.
3: 819 kilohertz ये है Radio Mauritius. Radio Mauritius.
4: टाइम चेक शाम के 5 बज रहे हैं.
2: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर जिंदगी के अनमोल लम्हे.

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। आप सुन रहे हैं रेडियो मॉरिशस। कभी कभी दिन कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, पर एक प्यारा सा जो गाना होता है ना, सब कुछ हल्का सा कर देता है और सब कुछ आसपास भी इतना ऐसा प्यारा प्यारा सा लगने लगता है कि ऐसा लगता है कि कोई टेंशन ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़िंदगी ऐसी बिल्कुल कूल चली जाती है। तो अगर आपको भी कोई मैसेज करना है तो आप मैसेज कर सकते हैं आपके अपने फेवरेट सॉन्ग के लिए जो सुनना चाहते हैं, या कई टाइम से आपने वो गाना नहीं सुना जो आपके दिमाग में आ रहा और आप सोच रहे हो अरे ये सुनना चाहिए। 5251705 पर आप अपना मैसेज भेज सकते हैं। मैं हूं आपके साथ पूनम, और एंजॉय कीजिए आपके ये सदाबहार गाने।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर
1: 5:14 हो गए दोस्तों। जो लोग इस वक्त थोड़ा सा थक गए हैं, बस एक गहरी सी सांस लीजिए और इन गीतों को खुद में हल्का होने दीजिए। ये गाने जो है ना, आपकी ज़िंदगी को बहुत ही हल्का और प्यारा सा बना देते हैं, क्योंकि आपको अभी भी पूरे दिन का काम करना है, कल की तैयारी करनी है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड के लिए कुछ प्रिपेयर करना है, पूरे वीक के बारे में हम सोच रहे होते हैं लेडीज़, और जो जेंट्स होते हैं उनके पास भी बहुत सारे काम होते हैं। तो आपको बस थोड़ा सा टाइम सिर्फ अपने लिए देना है, अपने दिमाग को रेस्ट देना है, इंजॉय करना है। ये गाने जो है ना, आपको उस रास्ते पे ले जाते हैं, उस जगह पे ले जाते हैं, उन यादों में ले जाते हैं जहाँ कोई नहीं जा पाता। ये गाने आपको उस जगह पहुँचा देते हैं। तो इंजॉय कीजिए ये आप सबका गाना, और जिस जिसके भी मैसेजेस आ रहे हैं हम उनका एक एक करके गाना अब उसके बाद लेना शुरू करेंगे।
2: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: दोस्तों, पुराने गीतों की खूबसूरती ही यही होती है, इनको कितनी बार भी सुन लो ऐसा हमेशा लगता है कि जैसे नया सा एहसास देखे और ज़िंदगी बहुत ही ठंडी और प्यारी सी लगने लगती है, क्योंकि ये गाने हमने इतनी बार हज़ारों बार सुने हैं और फिर भी कभी ये पुराने होते नहीं। कहने को ये पुराने गाने होते हैं, पर ज़िंदगी में हमेशा ऐसे लाते हैं जैसे हमेशा से एक नई खुशी से लेकर आते हैं। तो चलिए भाई, हमारे साथ जुड़ी हुई हैं माया जी और उन्हें बहुत ही प्रोग्राम पसंद आ रहा है, तो बस इन्जॉय कीजिए ये आपके गाने। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सरिता जी कथबोन से, और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रही हैं। बिल्कुल, हम चलाने वाले हैं आपकी फरमाइश के गाने। उसके साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं हमारी एक और प्यारी सी दोस्त साधना जी। साधना जी कह रही हैं कि प्लीज़ गाने ज़रूर चलाइएगा, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। साथ में हमारे साथ विश्वानी धुमन जी भी जुड़ी हुई हैं और एक प्यारा सा गाने की फरमाइश कर रही हैं। चलिए भाई, एक एक करके हम आपके सभी की पसंद के गाने चलाते हैं। ये है आपका टाइम और इन्जॉय कीजिए अपने टाइम को।
2: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: 5:26 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके प्रोग्राम के साथ सदाबहार गीतों के साथ। तो चलिए भाई बात करते हैं, बहुत सारे प्यारे से मैसेजेस आ रहे हैं, टेलीफोन भी आ रहे हैं, उसमें से एक ही प्यारी सी बच्ची ने कॉल किया, उसका नाम है शवीना और वो कहती है कल मेरी मम्मा का बर्थडे है तो प्लीज़ हम उनको विश करना चाहते हैं और इतना सिर्फ कहना चाहते हैं हमारा पूरा परिवार, मेरी बहनें, उनकी पोती और उनके सारे जितने भी दोस्त हैं उनको सिर्फ इतना कहना चाहते हैं आप हो हमारी ज़िंदगी में तो हमें सारी खुशियाँ मिल गई हैं, हमें और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। यू आर द बेस्ट मदर। आप अपनी तरह से कहते हैं कि बहुत ही प्यारी बहन भी हैं, माँ भी हैं, वाइफ भी हैं, आपने सब कुछ दिया है तो थैंक यू। और आपको बर्थडे की हम बहुत सारी विशेज़ देना चाहते हैं और आपके लिए कल हम स्पेशल बर्थडे के लिए कुछ बनाना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो यही बात होती है कि जब आपको प्यार होता है अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में और आपको ज़िंदगी में ये खुशियाँ मिली होती हैं तो आप उनके साथ इंजॉय भी करते हैं और उनके साथ इंजॉय करने का दिल भी करता है। तो चलिए भाई थैंक यू और हम भी यही कहेंगे हैप्पी बर्थडे शोभा जी, चलो एडवांस में ही सही और कल भी हम आपका मैसेज ज़रूर पढ़ेंगे। साथ में हमारे साथ जुड़ी हुई हैं सईदा जी, इरफान और जोहान और वो भी एक प्यारे से गाने की फरमाइश कर रहे हैं। उसके साथ में ललित जी जुड़े हुए हैं यूएसए से, हरविंदर जी जुड़े हुए हैं इंडिया से। ये गाने आप सबके नाम, इन्जॉय कीजिए आपके गाने।

0: सदाबहार की रेडियो मॉरिशस पर।
1: आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भला करने वाले भलाई किए जा। ये सच बात है कि ज़िंदगी में जो लोग भला करने के लिए सोचते रहते हैं और करते रहते हैं उनकी ज़िंदगी में सुकून बहुत होता है, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ज़िंदगी में और कुछ होता ही नहीं। कई लोग इस समय खाना बना रहे हैं, कई लोग इस समय घर वापस आ रहे हैं, शाम का समय है, कईयों को बहुत पूरे दिन बहुत सारी चीज़ों की टेंशन रही होगी, तो टेंशनों को निकाल के फेंक दीजिए क्योंकि घर वापस आ रहे हैं। घर वापस जब आते हैं ना तो मुस्कुराते और हंसते घर वापस आइए। खाना बना रहे हैं तो मुस्कुराते और हंसते हुए खाना बनाइए। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, कई बच्चे जिनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं वो पढ़ाई की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बस हंसते मुस्कुराते पढ़ाई करिए। आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पेरेंट्स ने सब कुछ आपके लिए तैयार किया हुआ है। और ये ज़िंदगी थोड़ी सी चैलेंजेस वाली होनी चाहिए, क्योंकि जब चैलेंज होते हैं तो ज़िंदगी ना बहुत खूबसूरत लगती है। एक ही जैसी ज़िंदगी इतनी भी अच्छी नहीं होती। तो चलिए चलिए, ये प्यारा सा गाना आपका हम हिंदुस्तानी मूवी से मुकेश की आवाज़ में, रात निखरी हुई।

0: सदाबहार गीत रेडियो मॉरिशस पर।
1: दोस्तों 5:45 हो रहे हैं और आपका साथ मिलता है चाहे कॉल के थ्रू चाहे मैसेजेस के थ्रू, तो हमें अच्छा लगता है। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तब हो जाता है जब आप अपना दिल हल्का करते हैं, आप अपने दिल की बात कहते हैं। ऐसे आज 2-3 मैसेजेस और कॉल्स ऐसे आए जिसमें वो रो पड़े और मुझे भी एहसास होता है कि सच में किसी को मोहम्मद रफ़ी से या चाहे मुकेश जी से, लता जी से कितनी मोहब्बत थी। और आप सबका जो भी मैसेज होता है सर आँखों पर होता है, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, गाने आप ही की पसंद के होते हैं और इस प्रोग्राम में हम आप ही की मोहब्बत को चलाते हैं। इसमें गाने तो होते ही नहीं, ये आपकी मोहब्बत है, प्यार है जो आप अपने मैसेजेस के थ्रू भेजते हैं और अपने गाने सुनने की पसंद फरमाइश जाहिर करते हैं। तो इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं निर्मला जी, कविता जी, और वो भी बहुत ही पसंद कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। सूरज शर्मा, साजदा जी भी हमारा साथ दे रहे हैं, ममा कुमारी जी, जानू फैमिली भी हमारा साथ दे रही है, और धानी जी आपके जो आंसू हैं ना, मैं तो इतना ही कहूँगी कि बस आप एंजॉय कीजिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा खुश रहिए। ये गाने आप सबके नाम।
2: 7 days a week, 24 hours a day. My, this is Radio Marxist.

तो दोस्तों मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सदाबहार गीतों के साथ जुड़े रहिए। मैं थी आपके साथ पूनम, अब मुझे दीजिए इजाजत, 6 बजे सुन पाएंगे आप विस्तार से समाचार।

0: सभी को मेरा नमस्कार। समाचारों में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज की सुर्खियां। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। मॉरिशस में अमरीका के कार्यवाहक तथा समिट के आयोजक और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरी अलीज ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। और आज दोपहर को फ्लोरी अलीज ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामलाल के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की। कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ के अनुसार यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित होगा। विक्टोरिया अस्पताल का रेडियोथेरेपी विभाग बंद कर दिया गया है। सरकार की रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर अथॉरिटी ने इस सुविधा को तत्काल रूप से बंद करने का प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया है। अब कैंसर के मरीजों को सोल्फेरिनो के नेशनल कैंसर सेंटर में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। विदेश में बिहार में नई कैबिनेट का गठन। प्रधानमंत्री मोदी और नीतीश कुमार के सामने 32 नेताओं ने ली शपथ। मॉरिशस देश की सबसे बड़ी आर्थिक बैठकों में से एक की मेजबानी की तैयारी में है। जुलाई महीने में लगने वाले यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 में निवेशक, बहुराष्ट्रीय कंपनी, अफ्रीकी नेता और अमरीकी अधिकारी एकत्र हो रहे हैं। ये देश के लिए नए साझेदार ढूंढना और अफ्रीका की ओर व्यापार मंच के रूप में अपनी भूमिका को मजबूत करने का एक अवसर है। इसकी तैयारियां तेजी से चल रही हैं। मॉरिशस में अमरीका के कार्यवाहक तथा समिट के आयोजक और कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरी अलीज ने कल फ्लोरियाल में इस शिखर सम्मेलन से जुड़े कई आर्थिक प्रतिनिधियों से मुलाकात की। क्लोदेट जेओफा की रिपोर्ट पर पेश है ये विवरण।
1: 3000 अफ्रीकी एवं अमेरिकी प्रतिनिधि, कंपनी प्रमुख, निवेशक और उच्चाधिकारी अगले 26-29 जुलाई को मॉरिशस में एकत्र होने वाले हैं। 4 दिनों तक मॉरिशस वाशिंगटन और अफ्रीका के बीच आर्थिक आदान प्रदान का एक केंद्र बन जाएगा। शार्जिदा फेयर क्रेग हेम्बेलमेयर ने कहा, मॉरिशस के चयन से अफ्रीकी महाद्वीप की ओर मॉरिशस को प्रवेश द्वार की तरफ पेश करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय निवेश एवं व्यवसाय को एक अहम कॉरिडोर पर अपनी स्थिति मजबूत करते हुए अफ्रीका और अमेरिका के बीच परस्पर संबंधों को सुदृढ़ करने की देश की कटिबद्धता की झलक मिलती है। अगुआ का भविष्य, जुलाई की ये शिखर बैठक एक केंद्रीय चुनौती की तरह प्रतीत, लेकिन इसके अलावा ऊर्जा ट्रांजिशन, ब्लू इकोनॉमी और नई टेक्नोलॉजियों पर भी बातचीत की जाएगी। कॉरपोरेट ऑन अफ्रीका की अध्यक्ष एवं सीईओ फ्लोरी अलीज ने कहा,
2: कई वर्ष पहले प्रधानमंत्री के साथ पहली बार के लिए मुलाकात हुई थी, जब हम अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट अगुआ को पारित करने की कोशिश कर रहे थे। आप में बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि प्रधानमंत्री ने एक अहम भूमिका निभाई है। वे उन कम अफ्रीकी सरकारी नेताओं में थे जो अगुआ के हक में समर्थन जुटाने के लिए और मांग करने के लिए अमेरिका गए, कैपिटल गए, अमेरिकी कांग्रेस गए। इस तरह हम अगुआ और अमेरिका तथा अफ्रीका के बीच व्यवसाय की अहमियत जानते हैं, लेकिन मॉरिशस अन्य देशों के लिए एक प्रवेश मंच बना हुआ है। अतः ये शिखर बैठक मौका रहेगा सभी महत्वपूर्ण सेक्टरों की जांच करने के लिए, जिनसे अमेरिका और अफ्रीका की आर्थिक वृद्धि को गति मिलती है, चाहे ऊर्जा हो, हरित ट्रांजिशन हो, स्वास्थ्य हो, आईसीटी हो, डिजिटल हो, फाइनेंस हो, मूल ढांचा हो या फिर कृषि उद्योग हो। ये शिखर बैठक मॉरिशस के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शोकेस की तरह है। देश अपनी राजनीतिक स्थिरता, आधुनिक मूल ढांचा और अफ्रीका तथा एशिया के बीच एक रणनीतिक स्थिति दर्शाना चाहता है। मंत्री आदिल आमिया मिया ने कहा, मॉरिशस के पास स्पष्ट उपलब्धियां हैं। हम स्थिर हैं, यहाँ पर मजबूत संस्थाएं हैं, एक सम्मानित

0: न्यायिक प्रणाली, साथ में योग्य एवं द्विभाषी श्रम शक्ति भी। हम कमिसा सादेक और अफ्रीकी मुक्त आदान प्रदान के माध्यम से अफ्रीका के साथ जुड़े हुए हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बदल रही है, व्यावसायिक नीतियां बदल गई हैं, सप्लाई चेन भी बदल गई है और इस परिप्रेक्ष्य में इस तरह के मंच तथा सीए जैसे संगठनों से और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मॉरिशस 18वीं अमेरिकी अफ्रीकी शिखर बैठक के आयोजन के लिए तैयार है। यहाँ स्थल है, टीम है, सरकार है, कटिबद्धता है, लीडरशिप है और आवश्यक निजी सेक्टर की तैनाती भी है ताकि जुलाई की इस गतिविधि को खास रूप से कामयाबी मिले। 2025 की यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट के अंतर्गत 4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की लागत की परियोजनाएं एवं संधियां साकार हुई, लेकिन आर्थिक सूचनाओं से ये शिखर बैठक मॉरिशस में अफ्रीकी देशों के लिए एक ऐसा मौका प्रदान करेगा जिसके दौरान वे वाशिंगटन के लिए अपने व्यावसायिक हितों का बचाव कर सकेंगे एक ऐसे वैश्विक परिप्रेक्ष्य में जहाँ जियोपॉलिटिकल तनाव है और ताकतवर देशों के बीच होड़ बढ़ता जा रहा है।
1: विवरण रजनी बिकर का रहा और आज दोपहर को फ्लोरी लीजर ने प्रधानमंत्री डॉक्टर नवीन रामगुलाम के साथ उनके कार्यालय में मुलाकात की। कॉरपोरेट काउंसिल ऑन अफ्रीका की सीईओ फ्लोरी लीजर के अनुसार यूएस अफ्रीका बिजनेस समिट मुख्य रूप से वित्तीय सेवाओं पर केंद्रित होगा। उन्होंने ये भी कहा कि वे अगुआ के विस्तार के लिए 10 साल की अवधि की वकालत कर रही है। कैविंटा पेसा, गीता सुनाराइन।
2: अमेरिका अफ्रीका बिजनेस समिट 2026 मॉरिशस में लगेगा और ये वित्तीय सेवाओं पर आधारित रहेगा। ये मॉरिशस को अफ्रीका और अमेरिका के बीच निवेश के एक मंच के रूप में स्थापित करने का अवसर रहेगा। प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अफ्रीका के लिए कॉर्पोरेट काउंसिल की सीईओ और अध्यक्षा ने अफ्रीका ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी एक्ट बढ़ाने का पक्ष लेने और इस संधि की वैधता की रक्षा करने के लिए लड़ने की कटिबद्धता ली।
3: What we want is 10 years. That's what we want. Whether we'll get 10 years, we don't know, but we're going to ask for it and we're going to push for it and we hope that Congress and the administration will support that because we do believe that AGOA is not just beneficial to African countries, it's also beneficial to the United States. U.S. companies that source from Africa, their workers, and also all of the people who are the customers and buy African products.
2: अफ्रीकी उच्च अधिकारियों और राष्ट्र नेताओं के अलावा इस शिखर बैठक में अमेरिका का एक महत्वपूर्ण प्रतिनिधि मंडल भाग लेगा जिसमें सरकारी और व्यवसाय जगत के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
1: समाचारों को हम जारी रखते हैं। प्रधानमंत्री ने आज मॉरिशस सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन के नए कार्यकारिणी मंडल से भी ट्रेजरी बिल्डिंग में भेंट की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबिन द्वारा की गई मांगों पर भी गौर किया, विशेषकर चार धाम तीर्थ यात्रा को लेकर। ठेकेदार महिलाओं के समर्थन और लिंग समानता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता नई उप प्रधानमंत्री आर्यन नावामारी ने आज दो प्रतीकात्मक औपचारिक कार्यक्रमों में भाग लिया। सबसे पहले वुमन एंटरप्रेन्योर अवार्ड 2026 में और फिर जेंडर पर आधारित सातवें हाई लेवल पॉलिसी डायलॉग में जो यूरोपीय संघ के साझेदारी के साथ आयोजित किया गया। पहली मई से इनर्जी एफिशिएंसी एक्ट के तहत नए नियमों के लागू होने के बाद अधिकारियों ने बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है। त्रिबेका मॉल में एक जांच अभियान चलाया गया जो देश के सबसे बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक है। एक चेतावनी जारी की गई जहां तुरंत इसके प्रभाव दिखने लगे। अधिकारियों की निगरानी में सार्वजनिक इमारतें भी शामिल हैं जिनमें नगर पालिका भी है।
0: रात की 7:15 बजे त्रिबेका मॉल के पार्किंग स्थल पर कुछ खास लोगों का दौरा। इनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के ये अफसर हैं। ये लोग शॉपिंग तो करने नहीं आए हैं, इस बार तो नहीं। कैमरे से बचते बचाते एक सिक्योरिटी एजेंट की मौजूदगी में त्रिबेका मॉल के एक अधिकारी को एक नोटिस प्राप्त हुआ। वजह यही, बिजली की बर्बादी। इनर्जी एफिशिएंसी मैनेजमेंट ऑफिस के टेक्निकल ऑफिसर लुडोविक आगात ने कहा, हम सभी लोगों

0: से मांग कर रही है कि वे अपना उपभोग कम करें। ऐसा नहीं हो सकता कि घर पर सभी लोग कोशिश कर रहे हैं तो बाहर देखें कि हद से ज़्यादा बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे में कानून लागू। आखिर त्रिबेका क्यों? क्योंकि ये कमर्शियल सेंटर देश के बड़े बिजली उपभोक्ताओं में से एक हैं। बिलबोर्ड्स और चमकीली बोर्ड्स कई किलोमीटर की दूरी से ही ये दिख जाते हैं, जैसे कि जहाज़ों को गाइड करने वाले हेडलाइट्स। बिजली का बिल एक महीने के लिए करीब 17 मिलियन रुपए तक पहुंच गया। मैनेजमेंट को मांगों का अनुपालन करने के लिए 5 दिनों का समय, नहीं तो उसके विरुद्ध कदम उठाए जाएंगे। लुडोविक आगात ने आगे बताया, कानून के प्रावधानों के अंतर्गत कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। अगर उसे अपराधी पाया गया तो 2 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2 वर्षों तक की जेल की सजा भी हो सकती है। 1 मई से एनर्जी एफिशिएंसी एक्ट के नए नियमों के अंतर्गत ये कार्रवाई चलाई जा रही है। इस कानून के तहत तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में बिजली की बर्बादी का पता लगाया जाएगा। अभी के लिए खास एवं अहम सेवाएं संबंधित नहीं, जैसे कि अस्पताल या क्लिनिक, लेकिन बिजली बर्बादी का पता लगाने की कार्रवाई अन्य इलाकों में भी चालू, जैसे दिन के उजाले में स्ट्रीट लैंप जलाना, रात में सरकारी इमारतों में अनावश्यक प्रकाश व्यवस्थाएं, खाली फुटबॉल मैदान लेकिन जो रोशनी से भरपूर हो। लुडोविक आगात ने यह भी बताया कि कानून सरकारी या निजी इमारतों के बीच अंतर नहीं करेगा। जिस भी इमारत को कंट्रावेंशन मिले उसे नोटिस दिया जाएगा। जिला परिषदों और नगर पालिकाओं पर भी नजर। प्रमाण कर्रा रुख कैट्रोबोन की तरफ। नगर पालिका के आंगन में एक दिन पहले क्रिसमस ट्री की तरह चमकने के बजाय रात के अंधेरे में डूबा हुआ। क्या उन्हें सचेत किया गया कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात तो तय है, कल रात ज्यादा अंधेरा था मानो किसी डरावनी फिल्म में कोई बंदराज हो। उधर त्रिबेका मॉल में क्या चमकीले बोर्ड्स दिन के दौरान कार्यरत? आज सुबह त्रिबेका मॉल के बिल बोर्ड्स एवं बोर्ड्स ऑफ थे, अतः संदेश मिलने की पुष्टि होती है।
1: नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ाई आज भी प्राथमिकता बनी हुई है, इस बात का जिक्र पुलिस आयुक्त ने आज पोर्टलिस में किया। वे मॉरिशस रूनियन संपर्क समूह की आंतरिक सुरक्षा उप समिति की कार्यवाही के उद्घाटन के दौरान बोल रहे थे। इस सहयोग की बदौलत रूनियन और मॉरिशस की कानून एजेंसियां अब अवैध लेन देन के बारे में वास्तविक समय में जानकारी साझा करने में सक्षम है। मीगान पुना पनाइकेन, गीता सुनारायण।
2: ये रिपोर्ट पिछले 24 अप्रैल को फ्रेंच समाचार बुलेटिन में चलाई गई थी, जब मॉरिशस और रूनियन के बीच सहयोग की बदौलत ड्रग्स जब्त किए गए थे। 1 महीना पहले ये रिपोर्ट चलाई गई थी, जब समुद्र में ये ड्रग्स जब्त किए गए थे। ड्रग तस्करी के खिलाफ संघर्ष में रूनियन और मॉरिशस के बीच सहयोग को ये दर्शाता है। अंदरूनी सुरक्षा पर एक सब कमेटी की बदौलत दोनों देश जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। इससे समुद्र में संदिग्ध गतिविधियां पाए जाने पर संसाधनों को एकजुट किया जाता है। अंदरूनी मामलों की सचिव फोंग वेंग पुरन कहती हैं, हर सब कमेटी में एक मुख्य मुद्दा होता है, रूनियन का, मॉरिशस का, और हम वास्तविक समय में जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। यही नयापन है। मॉरिशस और रूनियन के बीच कई जानकारियां बांटने से ये नतीजे सामने आते हैं। इस गुरुवार को मॉरिशस और रूनियन के बीच कॉन्टैक्ट ग्रुप के सदस्यों ने लैंड बराक्स में एक बैठक लगाई, जिसमें ड्रग तस्करी और मनी लॉन्डरिंग के खिलाफ संघर्ष का फॉलोअप किया गया। जांच में जटिलता के चलते सहयोग जरूरी है। पुलिस कमिश्नर रामप्रसाद सुरजपाली कहते हैं, आपराधिक गिरोह प्रणाली की कमियों का फायदा उठाते हैं, इसलिए हमें वैश्विक एकाग्रता और संचालित तरीके से काम करना चाहिए।
3: Que notre réponse doit être globale, intégrée et cohérente.
2: ये कॉन्टैक्ट ग्रुप 2011 में गठित किया गया था। इसमें 3 सब कमेटियां हैं, अंदरूनी सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा और न्याय विभाग। रूनियन की ओर से नागरिक सुरक्षा पर एक सब कमेटी कायम करने का प्रस्ताव रखा गया है। रूनियन प्रीफेक्ट के कैबिनेट डायरेक्टर बेनोर लाफोकिया कहते हैं, हमारे समान खतरे हैं, जैसे तूफान, जंगलों में आग लगने के। हमारे पास योग्य सेवाएं हैं, मॉरिशस, रूनियन और फ्रांस में साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सुरक्षा का विकास हो। दोनों टापुओं के बीच सहयोग की एक अन्य पहलू सड़क सुरक्षा पर आधारित

0: हैं। कॉन्ट्रैक्ट ग्रुप की अगली बैठक सितंबर में लगेगी।
1: और कुछ समय पहले हम इसकी चर्चा कर रहे थे, प्रधानमंत्री ने आज मौर्य सनातन धर्म टेम्पल्स फेडरेशन की नई कार्यकारिणी मंडल से भी ट्रेजरी बिल्डिंग में भेंट की। डॉक्टर नवीन रामगुलाम ने फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबेन द्वारा की गई मांगों पर गौर किया। चलिए मौर्य सनातन धर्म फेडरेशन के अध्यक्ष भोजराज गुरबेन को सुनते हैं।
2: चार धाम et que le Premier ministre y répond positivement, là, nous nous faisons une demande pour nous capables de gagner un subside, le ticket d'avion. Nous envie, nous, toute la famille hindoue, à least une fois, nous allons à Chardham. Et aussi, nous nous faisons une demande s'il est capable, cause avec le gouvernement indien, que nous sommes capables de faire nos bandes grands, bandes senior citizens, s'il est capable de gagner un hélicoptère pour prendre depuis que nous sommes pour nous aller à Kedarnath. Comment nous tous connaissons, Sanatan nous prenons une place de Gangatalao. Alors, nous faisons une demande et un bâtiment là-bas, Sugar Insurance Labor Welfare Fund, qui est 2 mètres. Et si besoin fait une réparation, nous l'avons fait aller à Ottawa. On cause, nous gagnons sa place là quand nous avons des enfants capables de venir là-bas, faire méditation, faire gurukul, nous expliquons. C'est une des plus places sacrées que la communauté hindoue a, c'est à Gangatalao. Nous demandons ça, nous avons aussi accepté positivement.
1: सुर्खियों में हम इसकी चर्चा कर रहे थे। विक्टोरिया अस्पताल का रेडियोथेरेपी विभाग बंद कर दिया गया है। सरकार की रेडिएशन सेफ्टी एंड न्यूक्लियर अथॉरिटी ने इस सुविधा को तत्काल रूप से बंद करने का प्रोहिबिशन ऑर्डर जारी किया है। निरीक्षण रिपोर्ट में बताया गया है कि रेडियो एक्टिव उपचार से जुड़े अपर्याप्त सुरक्षा कदमों के कारण लोगों और पर्यावरण के लिए गंभीर जोखिम है। अब कैंसर के मरीजों को सुल्फेरिनो के नेशनल कैंसर सेंटर में उपचार के लिए भेजा जा रहा है। ब्लू इकोनॉमी का योगदान देश की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी को दुगुना करना मॉरिशस के लिए ये चुनौती पूरी तरह से संभव है, क्योंकि उसके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में बहुत क्षमता है। इस बात की घोषणा कृषि उद्योग मंत्री डॉक्टर अरविंद बुलेल ने की। वे कुदौन स्थित डॉक्स में आयोजित ओशन वीक के दौरान बोल रहे थे। इस सत्र का मुख्य विषय ब्लू कार्बन और जलवायु वित्त पोषण था। अन्य मुद्दों में तटीय क्षेत्रों का एकीकृत प्रबंधन और समुद्री क्षेत्र से संबंधित कानून शामिल रहे। नौ मई को मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप सिंह की 486वीं वर्षगांठ मनाई जाएगी। इस अवसर पर गहलोत राजपूत महासभा की पहल पर विशेष गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। पोर्टलिस में आज एक प्रेस सम्मेलन के दौरान इस पर ज्यादा जानकारियां दी गई। याचना मिश्रा।
3: हर साल 9 मई को महाराणा प्रताप दिवस मनाया जाता है। उनकी 486वीं वर्षगांठ के अवसर पर 9 मई को बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे, जबकि औपचारिक समारोह 10 मई को लगेगा। दस मई को कारोलिन के एमकेएस हॉल में औपचारिक समारोह दोपहर 2 बजे से शुरू हो रहा है। साथ में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है। राजस्थान से महाराणा प्रताप सिंह के वंशज के एक प्रतिनिधि यहां पर इस मौके पर हमारे साथ होंगे। सभी इसमें आमंत्रित हैं। 9 मई को महाराणा प्रताप सिंह की वर्षगांठ के अवसर पर बेल विलेज में उनकी प्रतिमा पर फूल चढ़ाए जाएंगे। ये समारोह सुबह 10 बजे शुरू होगा और इसमें हमें पंडिताओं का सहयोग मिलेगा।
4: बेल विलेज पंडित
3: इस प्रेस सम्मेलन के दौरान सभा के अध्यक्ष ने 30 मार्च को भारत में राजस्थान दिवस के अवसर पर मॉरिशस के डेलीगेशन की भागीदारी पर बात करते हुए सरकार को आभार जताया, जिसकी बदौलत ये दौरा सफल रहा।
1: विदेश

में बिहार भारत में नई कैबिनेट के गठन के बाद गांधी मैदान में आज गुरुवार को एनडीए सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार का भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार में 32 मंत्री शपथ ले रहे हैं। समारोह में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई बड़े नेता मौजूद रहे।

और अब आखिर में चलिए जानते हैं स्थानीय मौसम का हाल। हमारे इलाके पर हल्की हवाएं बह रही है। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान, रात को बादल कुछ घिरे रहेंगे, कल धूप खिली रहेगी, हवा पूर्व दक्षिण पूर्व की ओर से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी। समंदर में 2 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। तापमान सेंट्रल प्लाटू पर न्यूनतम तापमान 17 से 19, अधिकतम 25 से 27, शहरी इलाकों पर न्यूनतम तापमान 21 से 23, अधिकतम तापमान 29 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। सूर्योदय कल सुबह 5:45 और सूर्यास्त कल, जी हाँ, कल सुबह सूर्योदय 6:28 पर होगा।

0: 6:23 मिनट हुए हैं। देश विदेश तथा मौसम के हाल के साथ ही ये बुलेटिन यहाँ पर समाप्त हो चला। हम तकनीकी सहायक लुडोविक को धन्यवाद देते हैं, साथ में पूरा समाचार विभाग को भी। कुछ ही समय में हम बढ़ेंगे शोक समाचारों की ओर।
1: Your news on NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.

शोक समाचार सुनिए। नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू ओम्ब्र मोगुमे, नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू ओम्ब्र मोगुमे, 74 साल के 74 years old जनाब फारूद मुसाफिर, जनाब फारूद मुसाफिर इंतकाल कर गई हैं। इनका जनाजा आज रात आठ बजे इनके मकान नंबर सी 11 NHDC एवेन्यू ओम्ब्र मोगू से उठाकर दफनाने के लिए बुआ मौशों का कब्रिस्तान ले जाया जाएगा। फ्यूनरल टुनाइट एट 8 PM। मोसलमान साजिटेयर गोल्फ राउंड अबाउट मोशवाजी में, मोसलमान साजिटेयर गोल्फ राउंड अबाउट मोशवाजी में 62 साल के 62 years old श्री सत्यदेव धनुकधारी जिन्हें लोग दानिश नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई हैं। वे पहले SMF कॉर्पोरल थे और दर्श कैकारी दर्श के मालिक भी। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनकी पत्नी आशा देवी दनुकधारी के मकान मोसलमा साजिटेयर गोल्फ राउंड अबाउट मोशवाजी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए काहो आकाशिया कुतेज की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। महादुलेन न्यूग्रोव में 67 साल की 67 years old कुमारी गीताबाई महादू जिन्हें लोग लीला नाम से जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनके भाई राजेश बाल्मीक महादू के मकान महादू लेन न्यूग्रोव से उठाकर मारी जाने की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। मिशन क्रॉस रोड घों बाफू लाल माटी में 63 साल के 63 years old श्री जगदीश रामदने जिन्हें लोग संजय नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल सुबह 10 बजे इनकी पत्नी सती

विठी रामदानी के मकान मिशन क्रॉस रोड घोंबा फोन लालमाटी से उठाकर लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। सेनेक रोड रिवरवॉक लेन प्लेंडिरोश में 58 साल की 58 years old श्रीमती संगीता रामनियाल, श्रीमती संगीता रामनियाल पैदाशी नाम इंदर नारायण और जिन्हें लोग सुनीता नाम से भी जानते थे की मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी कल दिन के 11 बजे इनके मकान सेनेक रोड रिवरवॉक लेन प्लेंडिरोश से उठाकर पीतो की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 11 AM। कॉकारोल केनिया प्लेन मायों में 80 साल की 80 years old श्रीमती मती गणेश, श्रीमती मती गणेश पैदाशी नाम कुनू और जिन्हें लोग सती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। वे पहले बोनेस्पोर रोड रिविया दे क्रेओल की रहने वाली थी। इनकी अर्थी कल सुबह दस बजे इनकी बेटी छाया मोहरुलाई के मकान कॉकारोल केनिया प्लेन मायों से उठाकर वहीं की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन टुमोरो एट 10 AM। जानकी स्ट्रीट पुत्रदो विलाज में 79 साल की 79 years old श्रीमती बिदवंती मधु पैदाशी नाम सोहन और जिन्हें लोग वंती नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनके अर्थी शनिवार को सुबह 10 बजे इनके बेटे संजय मधु के मकान जानकी स्ट्रीट पुत्रदो विलाज से उठाकर बेलमो पुत्रदो विलाज की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 10 AM। और पाल्मा रोड कैट्रोबोन में 77 साल की 77 years old श्रीमती पुष्पा माला भूटन पैदाशी नाम राम और जिन्हें लोग मिला नाम से जानते थे कि मृत्यु हो गई है। इनकी अर्थी शनिवार को दिन के सवा एक बजे इनके मकान पाल्मा रोड का ट्रिबोन से उठाकर गांधी पाल्मा की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमेशन ऑन सैटरडे एट 1:15 PM। शोकग्रस्त परिवारों के प्रति हमारी सहानुभूति है।

0: सीबी की तरफ से विज्ञप्तियां सीबी फ्लोरियल रेजिडेंस मोगालकॉन गोविंदन लेन एस्पिटालियर नोएल स्ट्रीट नेल्सन स्ट्रीट बालजाक स्ट्रीट फ्लोरियल रोड और विदेशी लेन के एक भाग को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई को सुबह के 8:30 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। साथ ही सीबी रू कुस्तल रू कासगुन ला पॉइंट लग्जरी लिमिटेड फाज 2 पॉइंट ओ कानूनी के आसपास के रहने वालों को सूचित किया जाता है कि रविवार 10 मई को सुबह के 8 बजे से लेकर सपहर के 3 बजे तक मरम्मत कार्यों के कारण बिजली की सप्लाई में कटौती लाई जाएगी। सीबी अपने सभी ग्राहकों के प्रति क्षमा प्रार्थी हैं।
1: रेडियो मॉरिशस 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो

听众朋友，今天的音乐节目就到这里，现在跟您告别，下次节目再会。

తిట్టండి రా.

सादर नमन श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आपका अपना प्रिय कार्यक्रम भजले प्रभु का नाम। मैं हूं दीविना। आज की इस पावन रात्रि में लेकर आई हूं भक्ति, शांति तथा आत्मिक आनंद से भरा ये प्रसारण। गुरुवार की यह रात्रि समर्पित है गुरु की महिमा, ईश्वर के स्मरण तथा आत्मा की शुद्धि को। तो आइए मन के सारे द्वार खोलकर इस भक्ति रस में डूब जाए। गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।

जहाँ श्रोताओं, जीवन के इस भागदौर में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सच्चा सुख कहाँ है। ना धन है, ना वैभव में, बल्कि प्रभु के नाम में ही सच्ची शांति है। हरि नाम अमृत तुल्य है, जो पिए सो तृप्य हो जाए। जब भी मन व्याकुल हो श्रोताओ, बस एक बार सच्चे मन से प्रभु का स्मरण कर लीजिए। आप पाएंगे कि सारी चिंताएं स्वतः ही दूर होने लगेगी। अब प्रस्तुत है ये अगला मधुर भजन।

नाम जपो तो जीवन सवरे मिट जाए सब क्लेश, प्रभु कृपा जब साथ हो क्या कर सकता है शेष। श्रोताओं एक कथा सुनिए। एक बार एक भक्त ने प्रभु से कहा, बल्कि पूछा, हे प्रभु मैं आपको कैसे पा सकता हूँ। प्रभु ने मुस्कुरा कर कहा, जब तुम्हें मेरे बिना कुछ भी अच्छा न लगे तब समझना कि तुमने मुझे पा लिया। श्रोताओं यही है सच्ची भक्ति, जहाँ मन हर क्षण प्रभु में ही रमा रहे।

गुरुवार का दिन विशेष रूप से गुरु तथा बृहस्पति देव को समर्पित करते हैं। गुरु ही हमें अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाते हैं। गुरु बिना ज्ञान नहीं, ज्ञान बिना मुक्ति नहीं। इसलिए अपने गुरु का सम्मान करें, उनके बताए मार्ग पर चलें, यही सच्ची भक्ति है। दीपक बनकर जो जलता है वही जग को रोशन करता है। गुरु का ज्ञान जो पाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है।

तो श्रोताओं, आज की इस पावन रात्रि में हमने जाना कि प्रभु का नाम ही जीवन का आधार है। हर पल हर क्षण बस एक ही मंत्र भज ले प्रभु का नाम। जो प्रभु का नाम जपते हैं वो कभी अकेले नहीं होते, उनके जीवन में सदा खुशियों के मेले होते हैं। श्रोताओं, इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन प्रभु की कृपा से सदैव उज्ज्वल रहे, मैं लेती हूँ आपसे अनुमति। फिर मिलते हैं इसी चैनल पर एक और प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए शुभ रात्रि, सादर नमन।

0: रेडियो मॉरिशस
1: 800 किलो हर्ट्ज पर ये है रेडियो मॉरिशस।
0: रेडियो मॉरिशस,
1: रेडियो मॉरिशस।
2: औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मज़ी सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज की उर्दू नशियात महफिल शब में समीर आप तमाम सामीन का खैर मकदम खुलूस।

से कल्ब से करता है। उम्मीद है कि आप तमाम सामीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल व करम से खैर व आफियत से हैं। आइए महफिल शब की इब्तिदा इस हमद से करते हैं।

हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, महरम न सिला हुआ कपड़ा पहने, न खुशबू लगाए और न सर ढाँपे, यानी मर्द के लिए। अहराम की हालत में कुछ चीज़ें हराम हो जाती हैं, जैसे खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना मर्दों के लिए और सर ढाँपना। इन पाबंदियों का मकसद आजजी और सादगी पैदा करना है। अगर कोई शख्स इन अहकाम के खिलाफ वर्जी करता है तो उसे दम या कफ़ारा देना पड़ता है, इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है।

0: गया।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

आए हो? बड़ी दुख बेटा नटलक नहीं हो तब बहु मर्रत नहीं हो।

ए दादा कहाँ जाल बेटी घरे का भाई हो बड़ी बेज बेटा डटला नहीं हो तब बहू मरला नहीं हो।